आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि। तदनुसार 31 मई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम्स के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में चंद्रसेन विराट की रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए शर्मा बंधु के स्वर में ये शब्द रचना।

एमएस सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए विदुषी गिरिजा देवी के स्वर में नामदेव की रचना।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी रायपुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है धर्म ग्रंथों से पाठ। इसमें सुनिए भर्तृहरि के नीति शतक से पाठ।
1: केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते खीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। बाजूबंद और चंद्रमा के समान उज्जवल मोतियों की माला, स्नान, चंदन का लेप, फूलों का श्रृंगार और संवारे हुए केश, ये सब मनुष्यों को इतना सुशोभित नहीं करते जितनी व्याकरण युक्त शुद्ध वाणी मनुष्य को शोभा बढ़ाती है। क्योंकि भूषण तो नष्ट हो सकते हैं पर वाणी रूपी भूषण सदैव जगमगाता रहता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजिता नहि धनं विद्या विहीनः पशुः। विद्या मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाला और प्रच्छन्न धन है, छिपा हुआ धन है। विद्या ही भोग यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। परदेश में विद्या ही बंधु होती है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। ख्यांतिश्चेद कवचेन किम अरिभिक्रोधोस्ति चेद देहिनाम ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्योषधै किम फलम किम सर्पैर यदि दुर्जना किमुधनैर विद्या न विद्या यदि व्रीडा चेत किम भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो उसे कवच की कोई जरूरत नहीं। यदि क्रोध है तो उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं। यदि जाति बांधव है तो अग्नि उसके पास स्वतः विद्यमान है। यदि मित्र हैं तो उत्तम औषधियों से उसे कोई लाभ नहीं, उत्तम औषधि उसके पास विद्यमान है। यदि दुर्जन है तो सर्प का क्या काम। निर्दोष विद्या हो तो धन की कोई जरूरत नहीं। और अगर मनुष्य में शांति हो तो गहनों से कोई लाभ नहीं। और सुंदर कविता हो तो राज्य की प्राप्ति से भी कोई लाभ नहीं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। सज्जन लोगों की संगति अनेक लाभों को देने वाली है। मूर्खता को समाप्त करती है, वचन में सत्यता लाती है, प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है और चित्त को प्रसन्न करती है। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। इस प्रकार सज्जनों की संगति से क्या क्या लाभ नहीं मिलता, अर्थात सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।
0: धर्म ग्रंथों से पाठ में भर्तृहरि के नीति शतक से पाठ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें। कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था और आकाशवाणी की इस संगीतमयी प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम कृषि चर्चा में हरी खाद से फायदा, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती गोपिका गभेल।
1: किसान भाई हो, राम राम। आप मन जानत हो छत्तीसगढ़ हर हमर धान के कटोरा है और खरीफ सीजन आगे है, तो आज हमन आप मन ला हरी खाद के उपयोग कैसे करना है ओकर बारे में आज हमन चर्चा करबो। हरी खाद हर मिट्टी के उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाला एक प्राकृतिक और सस्ता तरीका वाला खाद है, जो ढेंचा सनई मूंग जैसे फसल हमन लगा के 30 से 40 दिन में फूल आए के पहली रोटावेटर के माध्यम से खेत में जोत के मिला देथन। ये जो हरी खाद से खेत के मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ और कई प्रकार के पोषक तत्व के मात्रा मिलते, एकर से जो हमर जमीन के उपजाऊ क्षमता बढ़ते और जमीन हर भुरभुरा होते। हरी खाद हर हमर मिट्टी में कम से कम 20 से 25 किलोग्राम एकड़ पीछे नाइट्रोजन देते, एकर अलावा कई प्रकार कार्बनिक खाद के भी पूर्ति करते। एकर से मिट्टी के जो चना सुधरते, पानी सोखे के क्षमता हर बाढ़ते। हरी खाद के उपयोग करे में रासायनिक खाद के कम जरूरत पड़ते और उपज में 10 से 15% तक के बढ़वार होते। एकर अलावा हरी खाद के उपयोग करे में मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव के संख्या हर बाढ़ते और उत्पादन क्षमता हर बढ़ते। हमार जो क्षारीय या लवणीय जो मिट्टी होते ओकर जो सुधार हरी खाद से भी होते। साथ ही हरी खाद हर प्राकृतिक हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर छोड़ते, एकर से पौधा मन के बढ़वार हर तेज होते। तो हरी खाद हर जो धान के रोपा लगाए के कम से कम 45 दिन पहली हरी खाद के बीज ला ढेंचा और मूंग ला मिला के या सनई ला 15 जून के आसपास रोपा लगाए के 45 दिन पहली एकर बोनी करे जाते। तो अभी जो आने वाला समय है मई, जे किसान भाई मन करा सिंचाई के अच्छा साधन है, तेमन जुताई करके और एक पानी दे के सनई या ढेंचा और मूंग उड़द मिक्स करके खेत में छिड़का या कतार बोनी के माध्यम से बोनी कर दें और उमा जो है लगभग 40-45 दिन बाद फूल आए के अवस्था में जब पौधा हर 2 से 3 फीट हो जाही तो रोटावेटर या कल्टीवेटर के सहायता से एला मिट्टी में अच्छे से मिला दें और लगभग 7 से 10 दिन बाद एमा फिर रोपा लगाएं। 7 से 10 दिन में जो हरी खाद हर सड़ के मिट्टी में मिल जाही और एकर पोषक तत्व हर धीरे धीरे करके धान के फसल ला मिलही। एकर जो मात्रा है बीज के, अगर ढेंचा लगा था तो 8 किलो प्रति एकड़, ओकर संग में 4 किलोग्राम मूंग ला प्रति एकड़ मिला के बोनी करना चाहिए और अगर सनई बो था तो 10 किलो प्रति एकड़ सन के उपयोग करना चाहिए। दलहनी फसल जो होते ये ढेंचा मूंग उड़द लोबिया, एमन के जड़ में गठान पाए जाते और ढेंचा के जो तना में भी गठान होते, एमा नाइट्रोजन देने वाला बैक्टीरिया रहते और ये हवा से सीधा नाइट्रोजन खेत में करते। एकर से धान के फसल मला नाइट्रोजन के मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ मिलते। जे किसान भाई मन मान लो जेकर कर सिंचाई के साधन नहीं है तो जो मानसून के पहली बारिश आते वो समय भी अगर खेत ला जोत के सनई ढेंचा या मूंग उड़द लगा दे तो करीब 1 महीना समय अगर मिल गए या 15-20 दिन भी समय मिल गए तो थोड़ा बहुत हरी खाद मल्ला अवश्य मिल जाते। एकर अलावा जे किसान भाई मन मूंग उड़द गर्मी के फसल लगाए हैं तो ओकर जो अनाज ला निकाले के बाद जो फसल अवशेष बाचते ओहुला भी खेत के मिट्टी में मिला के हरी खाद के रूप में उपयोग कर सकत हैं। ओकर से जमीन में पोषक तत्व के अच्छा मात्रा मिल जाते। एकर अलावा जो कतार बोनी जो किसान भाई मन करत हैं धान के, तो कतार बोनी वाला मा साथ में सनई या ढेंचा के भी बीज ला मिला के ओमा बोनी कर सकत हैं और शुरुआती अवस्था में हरी खाद के फसल हर बाढ़ी और धान के बढ़वार कम रही, फिर जैसे ही ओला धान के जो बियासी करे के समय है सनई और ढेंचा के पौधा ला उखाड़ के मिट्टी में मिला दो, फिर 2,4-D निंदनाशक पुथे ओकर छिड़काव कर देले जो हरी खाद के जो फसल बाढ़े है तेहर भूरा होके मिट्टी में मिलके सड़ जाही और धान के पौधा ला कोई नुकसान नहीं होए। वो निंदनाशक 2,4-D है, धान के फसल ला नुकसान नहीं करे और केवल चौड़ी पत्ता वाला ला मारते, तो जो हरी खाद के फसल है वो हर भूरा होके धीरे धीरे करके मिट्टी में मिल जाही और पोषक तत्व प्राप्त होही। तो एला जो है भूरा खाद कथे, एकर से आपके मिट्टी के सुधार होही और धान के बढ़वार हर 8-15 दिन बाद गति पकड़। पकड़ ली। तो किसान भाई मन, आज आप मन जाने हो कि खेत में हरी खाद से का फायदा है और एकर कैसे उपयोग करना चाहिए। राम राम।
0: कृषि चर्चा में हरी खाद से फायदा, इस विषय पर जानकारी दे रही थी श्रीमती गोपिका गभेल। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:50

आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन सुनिएगा दिन के 11 बजे। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में सुनिएगा ए येराईह का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन और स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद सुनिएगा दिन के 11:30 पर और इसका पुनः प्रसारण होगा रात 8 बजे। सुबह 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर और देश की वाणी आकाशवाणी में सुबह 7:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के पूर्व उपनिदेशक कार्यक्रम श्री लखन लाल भौर्य से ली गई भेंट वार्ता, प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। बच्चों के कार्यक्रम किसले में सुबह 8:30 पर आज बच्चों की डायरी का विषय होगा मौसम परिवर्तन और हमारा स्वास्थ्य और साथ ही आप सुनेंगे बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल संसार, इसमें भारतीय ओलंपिक वेट लिफ्टिंग ऑफिसर श्रीमती गुरमीत कौर धनी से होगी भेंट वार्ता, प्रस्तुतकर्ता होंगे धर्मदीप डोंगरे। सुबह 10:00 समय होगा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश का, आप मन के गीत दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, साथ ही आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी और कुछ टिप्स। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आजकल का विषय होगा कठिन रास्ते ही आसान जिंदगी बनाते हैं और तंबाकू निषेध दिवस पर होगा विशेष कार्यक्रम, साथ ही होंगे युगल गीत। जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी, आलेख होगा संजय मानिकपुरी का। शाम 6:30 पर कानून की बात में घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता विषय पर जानकारी देंगे असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री मयंक सिंह ठाकुर। प्रस्तुति आकाशवाणी रायपुर की होगी। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा प्रमाणित बीज का उत्पादन भविष्य के आय का साधन, साथ ही आज की सलाह में लागत और श्रम बचाने के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाए, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर आर के नायक।

और श्रोताओं, चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे और रात 9:15 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं नमस्कार, नमस्कार रायपुर सुन रहे हमारे तमाम श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। और आज नमस्कार रायपुर के सफर में मैं हूं आपकी हमसफर दीपा।

श्रोताओं, एक नई सुबह, एक नया दिन। हमें कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है और इसे कैसे बिताना है, ये हम पर निर्भर करता है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: तो श्रोताओं, आज रविवार है और कार्यक्रम सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में हम सभी को इंतज़ार होता है देश की वाणी आकाशवाणी का। तो बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतज़ार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी के पूर्व उपनिदेशक

0: आवाज का ये सफर ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ 8 जून 1936 को, जो अपने 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। 9 दशकों की इस लंबी सृजन यात्रा में आकाशवाणी से कितने ही नाम जुड़े, कुछ मशहूर हुए, कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो गए, मगर आकाशवाणी के लिए समर्पित ऐसे कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं के अलावा कुछ ऐसे भी नाम रहे हैं जिनके कांधों पर केंद्र की संपूर्ण जिम्मेदारियां भी रही हैं। देश की वाणी आकाशवाणी में आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से। आप हैं सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आकाशवाणी के पूर्व उपनिदेशक कार्यक्रम श्री लखनलाल भौर्य। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीपक जी, और नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
0: भौर्य साहब, आपका नाम आकाशवाणी बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर के श्रोता विगत कई वर्षों तक सुनते रहे हैं। अगर आकाशवाणी से आपकी यात्रा की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत किस सन में कहां से हुई थी?
1: मैं 10 जून 1991 आकाशवाणी सूरतगढ़ राजस्थान से जुड़ा
0: जी,
1: और उस समय शुरुआती जो पोस्टिंग है कार्यक्रम अधिशासी के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा डायरेक्ट भर्ती अभियान में हुआ था, और करीबन वहां पर 2-3 साल बिताया, और आकाशवाणी सूरतगढ़ में जो कार्य अनुभव प्रारंभिक दौर में हुआ वो मेरे लिए एक आधार बना और आगे वही काम आया।
0: वरे साहब, उसके बाद फिर सूरतगढ़ के बाद आपकी शख्सियत का कारवां कौन से आकाशवाणी केंद्र तक पहुंचा?
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ के बाद 1993 में आया आकाशवाणी बिलासपुर
0: जी,
1: और वो आकाशवाणी बिलासपुर में लगभग 14 साल वहाँ पर कार्यकाल रहा, और 14 साल में हमने सभी तरह के कार्यक्रमों, चाहे वो स्टूडियो के अंदर हो चाहे बाहर हो, बाह्य ध्वन्यांकन के आधार पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम वहाँ 14 साल के अंतर्गत किया। और उसके बाद 2007 में आकाशवाणी अंबिकापुर स्थानांतरित होकर के गया, और आकाशवाणी अंबिकापुर में लगभग 11 साल, और आकाशवाणी अंबिकापुर का थोड़ा से अलग ही लोक संगीत और अलग आदिवासी संगीत का माहौल रहा, तो वहाँ अलग तरीके से जानने समझने सुनने का अवसर मिला। लोगों के बीच जाता था, लोक कलाकारों को जोड़ने का काफ़ी वहाँ पर प्रयास भी किया। बहुत से ऐसे कलाकार थे जो कहते थे कि आप आए हैं, आप अपने स्थानीय स्तर के हैं, तो ऐसे सुनने में लगता था कि अरे बड़े अच्छी बात है, मैं आप ही लोगों के लिए आया हूँ। तो ऐसे तरह से वहाँ आकाशवाणी अंबिकापुर में 11 साल का कार्यकाल रहा।
0: मौर्य साहब, आकाशवाणी बिलासपुर, अंबिकापुर और उसके बाद फिर रायपुर, इन तीन केंद्रों में आपके जीवन के बहुत लंबे समय को आपने गुजारा है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो जिस वक्त, जैसा कि 1997 के आसपास आपने बताया कि आप आकाशवाणी बिलासपुर गए, तो उस वक्त तो बिलासपुर केंद्र की शुरुआत हुई थी ना?
1: हाँ, 1991 में
0: जी,
1: जितने LRS केंद्र खुले थे लगभग 10-12, उसमें आकाशवाणी बिलासपुर भी रहा
0: जी,
1: और आकाशवाणी बिलासपुर जो स्थानीय केंद्र है वो पूरे भारत में 12वें जो केंद्रों में से एक रहा, और वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम शुरू किया गया जो सही मायने में कहा गया कि वो प्राइमरी जो केंद्र होते हैं उससे अलग भिन्न कार्यक्रम हो, लेकिन बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते थे लगभग लगभग बड़े स्तरीय होते थे।

0: में आपकी हुई थी,
1: सूरतगढ़। हाँ,
0: तो राजस्थान से जब आप अपने अंचल में छत्तीसगढ़ में आ गए, उस समय तो हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे जब आप बिलासपुर आए, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की माटी की जो सौंधी खुशबू है वो तो आकाशवाणी अंबिकापुर, रायपुर और बिलासपुर, इन तीनों केंद्रों से उस वक्त भी आती थी। तो छत्तीसगढ़ी संगीत को लेकर बिलासपुर में किस तरह का कार्य आपने किया?
1: बहुत बढ़िया आपका ये सवाल। मैं वहाँ जब रहता जरूर था सूरतगढ़ में, लेकिन जब चूंकि यहाँ मैं बहुत पहले से जुड़ा था, आकाशवाणी रायपुर आता जाता था, नाटकों से जुड़ा था, तो आना जाना हुआ था, होता था। जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज के विद्यार्थी था, तो आना जाना आकाशवाणी रायपुर में होता था, तो गीत संगीत वगैरह सुनता था। लेकिन जब सूरतगढ़ में था तो यहाँ के आकाशवाणी का अनुभव होने लगा। मैं अगर जाता तो यहाँ पर जो लोक संगीत है और दूसरे संगीत, कला, साहित्य जो मैं समझता हूँ, जानता हूँ, उसमें मैं कितना सहयोग कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं आया आकाशवाणी बिलासपुर, तो लगा कि मैं अपना मायके आ गया हूँ।
0: जी,
1: और आदमी जब अपना मायके आता है और मायके का अनुभव करता है तो एक निसंकोच, मतलब उसमें एक भाव आता है कि ये तो मेरा जाना पहचाना है, ये लोग अपने हैं, और यहाँ पर जो मैं करूँगा मुझे सहयोग मिलेगा। और ये होता भी गया। बिलासपुर के जो बहुत से गांव सुने होंगे, पंडरिया, मस्तूरी, मुंगेली
0: जी,
1: और उधर कोरबा भी बिलासपुर के अंतर्गत आता था। ये सब क्षेत्र जो है कलाकारों का गढ़ रहा।
0: भरिया साहब, जब कोई आकाशवाणी केंद्र नया शुरू होता है,
1: हाँ हाँ,
0: तो उसकी शुरुआत के साथ साथ प्रसारण की विभिन्न विधाओं से जुड़े लोगों को वहां आमंत्रित करना, एकत्रित करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि एक नई शुरुआत उस अंचल में हो रही होती है। तो बिलासपुर की शुरुआत के बाद में अलग अलग विषयों के टॉकर्स भी आपने ढूंढे होंगे, वार्ताकारों को भी आपने ढूंढा होगा। किस तरह का उस समय माहौल?
1: बिल्कुल दीपक जी, सही बात है, और ये होना भी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, वहाँ पर वार्ताकार भी, चाहे वो विज्ञान क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और अलग अलग प्रतिभा, चाहे वो बाल कलाकार हो, युवा कलाकार हो, और यहाँ तक कि कुछ कुछ ऐसा कलाकार भी होते थे जिनको मौका नहीं मिलता था दूर होने के कारण, क्योंकि रायपुर और बिलासपुर अभी तो नज़दीक महसूस करते हैं, लेकिन उस दरमियान दूर महसूस करते, दूरी महसूस करते थे। तो बहुत से उधर के कलाकार इधर आने में, क्योंकि लोग अपना पहचान, अपना जान ढूंढते हैं जहाँ पर हम अपनी बात रख सकें, तो उस आधार पे तो हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा। काफ़ी हम कॉलेज, स्कूल जाते थे, एक कार्यक्रम भी किए थे महाविद्यालय प्रांगण से, तो कॉलेजेस में जाते थे, महाविद्यालयों में जाते थे, वहाँ पर सभी विधाओं के, चाहे वो खेल हो, साहित्य हो, क्योंकि युवा जो होता है कॉलेज में परिपक्वता के मंच पर आ गया होता है और जानने, समझने और सीखने के उस स्तर में आता है, तो हम आधे घंटे का जो महाविद्यालय प्रांगण से करते थे उसमें विविध कार्यक्रम करते थे। तो उसमें जो आप कह रहे हैं, वार्ताकार भी मिलते थे, कवि भी मिलते थे, और कलाकार जो कला साहित्य वो सब मिलते थे। तो हम लिस्ट बना के, सूची बना के लाते थे अलग अलग युवाओं के कार्यक्रम में, इनसे मिलिए वगैरह में उनको मौका देते थे। तो इस तरह से काफ़ी जुड़ते चले गए।
0: मौर्य साहब, बिलासपुर से फिर आपकी सृजन की यात्रा अंबिकापुर की ओर आगे बढ़ी।
1: हाँ,
0: और अंबिकापुर हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का एक जिला है, और वहाँ पर सरगुजा क्षेत्र की अपनी एक बोली भी अलग तरह की होती है, वहाँ का संगीत भी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी से अलग तरह का होता है। तो वहाँ जाने के बाद में किस किस तरह के कार्यक्रम आपने करवाए, और ख़ासकर संगीत की अगर हम बात करें तो?
1: जैसे गया वहाँ पर तो लोक संगीत मैं ही देखने लग गया
0: जी,
1: और लोक संगीत किसी भी केंद्र का एक जान होता है, क्योंकि जान इस लिहाज से क्योंकि गांव हमारा आकाशवाणी का एक बड़ा आधार है। ग्रामीण जो जो श्रोता हैं, गांव के जो कलाकार हैं, आकाशवाणी का मूल आधार होता है। और इस तरह से जब मैं वहां देखा गीत संगीत का अच्छा माहौल है, लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए भी हैं, बहुत से ऐसे गीत संगीत को मैं समझता भी था, क्योंकि छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया ज़्यादा अंतर नहीं है, छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया में लहजे का है एक

0: का अंतर है, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैं जल्दी से समझने लग गया। और जब उन लोगों के लोक संगीत के कुछ लिख के लाते थे, उसको देखता था, पढ़ता था, तो मैं टोक भी देता था, ये ऐसा गीत नहीं है, इसको ऐसा करो, ये नहीं बनेगा इसमें ऐसा, तो इस तरह से वो भी समझने लगे। और हम जब कहते थे कि ऐसा करो, तो वैसा करने भी लगे। तो सरगुजिया लोकगीत जो है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के आसपास होने की वजह से, वहाँ के कर्मा, ददरिया और बायर, भिनसरिहा, अधरतिया, ये सब जो है बहुत लोकप्रिय रहा। तो वो सब कलाकारों के हमने मौका दिया, और वो जो कलाकार हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी गए। एक दो कलाकार ऐसे हुए जो लगातार आते थे और कहते थे कि हमको सर बाहर भेजिए और हम जाना चाहते हैं, तो उनको हमको बताना पड़ता था कि आप बी हाई होंगे, ए ग्रेड होंगे, तो तभी आपको मौका मिलेगा। तो परीक्षा भी देते थे, पास होते चले गए, तो इनको हम मौका भी देते गए। और जब मौका मिलता गया तो लोग आगे बढ़ते गए। बहुत से ऐसे कलाकार वहाँ हुए हैं, अभी भी हैं, जो भोपाल, दिल्ली और बड़े मंचों पर प्रस्तुति दे रहे हैं, और बहुत से अवसरों पे आकाशवाणी के द्वारा भी लोक संगीत संध्या में उनको अवसर देते हैं मंच के माध्यम से। और वहाँ के जो लोक संगीत है, पूरे, मैं तो भारत कहूँ क्या कहूँ, पूरे विश्व में अलग किस्म का है, क्योंकि वाद्य यंत्र वहाँ पर जो विविधता लिए हुए हैं, वो वाद्य यंत्र अद्भुत होता है। जो मांदर में और एक सिंगोटी बाजा जो कहते हैं, निशान बाजा जो कहते हैं, उसमें अलग किस्म के उपकरण लगा के जो बजाते हैं और डांस करते हैं, तो उनका जो रिदम बनता है वो बहुत आकर्षक और दर्शनीय होता है मंचों पर। और गाते हैं तो अच्छा ही लगता है, सुर उनका बहुत बढ़िया होता है।
1: बौरिया साहब, अंबिकापुर से फिर आपकी शख्सियत का कारवां आकाशवाणी रायपुर में आया, और रायपुर में रहते हुए आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते?
0: यहाँ पर चूंकि जैसे आया, बहुत से कार्यक्रम तो स्थापित रहा, और आकाशवाणी से चूंकि हमेशा जुड़ा रहा, चाहे श्रोता के रूप में हो और एक पदेन उसका के रूप में कार्य जिम्मेदारी की बात हो, तो दोनों दृष्टिकोण से आकाशवाणी रायपुर शुरू से जैसे मैं होश संभाला और समझने लगा कि आकाशवाणी से बहुत से कार्यक्रम होते हैं, तो आकाशवाणी रायपुर को मैं शुरू से सुनता रहा हूँ। और बहुत से कार्यक्रम यहाँ स्थापित कार्यक्रम रहा है, और मैं तो आया ही हूँ आकाशवाणी रायपुर सुन करके। आकाशवाणी के युवानी कार्यक्रम में रोजगार सूचना जो देते थे, तो उस रोजगार सूचना में रोजगार संबंधी जानकारी देते थे, तो वही सुन के मैंने आवेदन दिल्ली से, यूपीएससी से, संघ लोक सेवा आयोग से मंगवाया, भरा, और भराने के बाद परीक्षा दिया और यहाँ आ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया। तो इस तरह से आकाशवाणी रायपुर में बहुत से कार्यक्रम स्थापित रहा। जब मध्य प्रदेश में रहा तो सवाल जनसाधारण के, जवाब मुख्यमंत्री के जैसे कार्यक्रम, तो उसमें भी हमारे गांव से एकजुट होकर के मैं सहयोग करता था, तो चिट्ठी पत्र भेजते थे, चाहे भोपाल हो, यहाँ हो, यहाँ शायद भेजते थे, यहाँ से वहाँ भेजते थे, तो वो भी मेरे को ध्यान में आ रहा है। तो ऐसा आकाशवाणी रायपुर का काफ़ी श्रोता रहा हूँ, और यहाँ जुड़ कर के अलग पता चला है। तो यहाँ जैसे आया तो बहुत से कार्यक्रम तो पहले से चल ही रहा था, कुछ कुछ हमने आप सब के सहयोग से, पंकज जी भी यहाँ पर जब रहे तो भी कार्यक्रम से जुड़ करके बहुत से ऐसे, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो और विज्ञान संबंधी हो, साहित्यिक हो, तो उसको हमने एक नए रूप में, अभी भी स्वास्थ्य जानकारी के डॉक्टर्स वगैरह का होता है, तो वो हमने आगे बढ़ाया। और लगभग लगभग मेरे को लगता है साल दो साल ये चल रहा है, अभी भी जारी
1: लगातार
0: है, लगातार चल रहा है
1: डॉक्टर की सलाह,
0: तो डॉक्टर की सलाह। और मुझे विशेष रूप से इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अभाव रहा है
1: जी,
0: और ग्रामीण अंचल में सब तरह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होने से लोग जागरूक भी होते हैं स्वास्थ्य के बारे में, और अपने इस स्तर पर जितना क्या किया जा सकता है कर भी सकते हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया।

0: या मिलजुल करके चौपाल कार्यक्रम जो उस समय आया, जिसके अंतर्गत फिर बाद में किसान वाणी का भी रूप दिया गया कि और चौपाल के अंतर्गत ही किसान वाणी को शुरू किया गया। तो किसान वाणी में बहुत से क्षेत्रों में जहाँ जहाँ नहीं जा पा रहे थे वहाँ भी मैं भी जाने लगा। कोरोना काल में भी किसान वाणी चौपाल देख रहे थे, मैं कहा जाएंगे और किसानों को इसमें जोड़े रखें, क्योंकि इस समय कोरोना काल में किसानी तो बंद होना नहीं है, तो किसानी को इसमें जोड़ करके उनको श्रोताओं को बता सकते हैं। तो ये भी हमने किया और जितने कृषि महाविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उस दरमियान गए, तो ये भी एक अलग किस्म का था। जो कार्य उस दरमियान नहीं होने थे, मतलब हो सकते थे, वो भी जाके हमने किया।
1: भौरे साहब, हमने सुना है कि आप खुद भी एक कलाकार हैं।
0: हाँ, मैं शुरू से मंची कलाकार रहा और प्राइमरी स्कूल से नाटकों के माध्यम से जुड़ा। मंची कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमको एक नट नटी टाइप का जोकर टाइप का उपयोग करते थे, तो उसमें भाग लेता था। उस तरह से प्राइमरी स्कूल, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, और कॉलेज में गया तो फिर भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़ गया।
1: अच्छा।
0: तो बड़े मंच मुझे मिला, तो कुछ कुछ हम गाना गाते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो बहुत से अवसरों पे गाना मुझे कभी कभी याद भी आ जाता।
1: कोई गाना याद होगा?
0: हाँ, वो है, चल खल्लारी जाबो संगी मोर, चल खल्लारी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिल के खल्लारी जाबो, चल खल्लारी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिल के खल्लारी जाबो, उहाँ लेबो मुर्रा यौ खाबो उत्ता धुर्रा, उहाँ लेबो मुर्रा यौ खाबो उत्ता धुर्रा, चल खल्लारी जाबो, चल खल्लारी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिल के खल्लारी जाबो।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो भौरिया साहब, आप चूंकि कॉलेज के समय, स्कूल के समय गाते भी थे, नाटक भी किया करते थे, तो आकाशवाणी में आने के बाद किसी रेडियो नाटक में भी काम किया क्या आप?
0: रेडियो नाटक में सूरतगढ़ में किया था।
1: अच्छा।
0: पीहर के नौकर उसमें।
1: हाँ,
0: अब इधर आता गया, चूंकि बिलासपुर में नाटकों का ऐसा रहा नहीं, नाटक निर्देशन वगैरह भी नहीं रहा, और अंबिकापुर में गया तो वहाँ हुआ, लेकिन अब खुद ही ऐसा और खुद ही ले लें तो ऐसा कुछ आपत्ति ना हो, ये दूसरे के मौका को या अपना, ऐसा करके मेरे में थोड़ा एक झिझक भी आया, मैं महसूस भी करने लगा आपत्ति ना हो जाए, तो ऐसे ऐसे करके तो वहाँ सूरतगढ़ में पीहर के नौकर वगैरह एक दो ऐसे नाटकों में ढाई तीन साल में जुड़ा रहा।
1: भौरे साहब, सेवानिवृत्ति के बाद अभी आपका समय कैसा कट रहा है?
0: दीपक जी, बहुत अच्छा कट रहा है। क्या है, नौकरी में एक टाइम टेबल में आना, टाइम टेबल में काम करना, टाइम टेबल तक रहना, मतलब समय में प्रतिबंधन रहा है और ज़रूरी है। कार्य के दौरान बहुत से कार्य होते हैं जिसको संपादित करना है, तो समय में करना है, समय में रहना है। तो उसके बाद देखा स्वतंत्र हो गया हूँ तो बढ़िया, मेरा दिनचर्या मेरे मुताबिक होता है, ज़्यादा मैं अंतर नहीं किया हूँ। सवेरे उठ जाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ, फिर मेरा थोड़ा से योगासन भी होता है, और सामने सड़क वगैरह है अपने कॉलोनी में, उसमें भी दो चार राउंड लेके उसमें घूमते रहता हूँ। बहुत से घरेलू कार्य मैं अपने से करता हूँ।
1: तो भौरिया साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कि आपके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई दे रही है ये यूं ही बरकरार रहे, आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। इस कार्यक्रम के लिए आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

देश की वाणी आकाशवाणी, इसमें अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व उपनिदेशक कार्यक्रम श्री लखनलाल भौरे से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार। ये आकाशवाणी रायपुर है, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण होगा। तो श्रोताओं नमस्कार, रायपुर में आइए अब सुने ये गीत।

0: श्रोताओं, नशा भले ही शान और लत के लिए किया जाता हो, पर यह जिंदगी में आने वाली बेवक्त शाम का भी मुख्य कारण है, जो कब जीवन में अंधेरा कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रोताओं, तंबाकू और धूम्रपान के दुष्परिणामों को देखते हुए WHO द्वारा 1987 से तंबाकू के इस्तेमाल को नियंत्रण करने के उद्देश्य से हर साल 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। श्रोताओं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या गुटखा जैसी चीजें इंसान को शुरुआत में अस्थायी आनंद या राहत का एहसास कराती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत एक जानलेवा जाल बन जाता है। तंबाकू के सेवन से होने वाले कई प्रकार के कैंसर हैं, जैसे फेफड़े, स्वरयंत्र, मुंह, ग्रास नली, गला, अग्नाशय और गर्भाशय ग्रीवा के साथ ही हृदय संबंधी और सांस की बीमारी समेत कई गंभीर बीमारियां इसमें शामिल हैं। तंबाकू के सेवन से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है। आमतौर पर धूम्रपान करने वालों के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धूम्रपान करने के घंटों बाद भी वातावरण में उसके अवशेष रह जाते हैं, जिसमें 250 से भी ज्यादा जानलेवा रसायन होते हैं। श्रोताओं, मजबूत इरादों के साथ तंबाकू का सेवन छोड़ें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने का एक कदम उठाता है तो उसका जीवन हजारों कदम खुशहाली की ओर बढ़ता है।
1: पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा।

0: शादी शेख चिल्ली का ये ख्वाब, अरे एक जर्रे की ये जुर्रत छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।
0: कम्बा

0: बूढ़े को कहे बाप तो मैं बाप कहूंगा, गधे को कहे बाप तो मैं बाप कहूंगा, फिर आपको भी आप नहीं बाप कहूंगा।
1: What?
0: ये जो

0: मोहब्बत का जनाब।
1: अबे उल्लू, उल्लू रे, अबे उल्लू, तू मरने को ले आ पानी भर चुल्लू, मुझे अपनी बेटी के लिए लगाम चाहिए, ना के कोई चोरू का गुलाम चाहिए।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं नमस्कार रायपुर।

ये जानदार जादू भरी आवाज। श्रोताओं, फिल्म संगीत में पार्श्व गायन के क्षेत्र में अनेक प्रतिभाओं ने अपना योगदान दिया। उन्हीं में से एक नाम है कृष्ण कुमार कुन्नथ उर्फ के, जिनकी आज पुण्यतिथि है। के एक बड़े ही ओजस्वी गायक थे, जिनके स्वर में बेहतरीन रेंज और पिच थी। उन्होंने बेहद उम्दा गाने गाए। गायकी की शुरुआत में उन्होंने कई जिंगल्स गाए। उन्होंने लगभग 3,500 से भी अधिक जिंगल्स में अपनी आवाज़ दी। बाद में भारतीय फिल्म संगीत में प्रवेश किया और इस दौर में अनेक गीत मशहूर गीत गाए।

बहुत ही सरल स्वभाव के जिन्होंने हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमिया और गुजराती भाषाओं की फिल्मों में गाने गाए और अपनी आवाज़ को संगीत के हर रंग में रंगा।

श्रोताओं, गायक के को फिल्म हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार और फिल्म बचना ए हसीनों के खुदा जाने गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष स्क्रीन अवार्ड के साथ ही कई पुरस्कारों से नवाजा गया।

श्रोताओं, केके के गानों की लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी होगी। उनमें से कुछ है, छोड़ आए हम वो गलियां, यारो पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, दस बहाने, इंडिया वाले, तू जो मिला, तू ही मेरी शब है, जैसे तमाम खूबसूरत गानों के साथ ही अपने पूरे करियर में उन्होंने 700 से भी अधिक गीत गाए।

श्रोताओं, एक लाइव कंसर्ट के बाद मशहूर गायक के हार्ट अटैक के कारण हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए। उनकी जोशीली आवाज हमेशा हमारे कानों में घुलती रहेगी। आइए उन्हें याद करें और सुने उनका गाया ये गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, गर्मियों का मौसम है, दिन ब दिन तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन इस मौसम में एक चीज का हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है रसीला मीठा फलों का राजा आम। आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और इसकी मिठास के बिना गर्मियों का मजा भी अधूरा सा लगता है। श्रोताओं, भारत में आम की लगभग 1500 से अधिक किस्में पाई जाती है और हर किस्म का अपना अलग रंग, स्वाद, खुशबू होती है। दशहरी, केसरी, चौसा, तोतापरी, लंगड़ा, ये सब नाम आपने जरूर सुने होंगे। दरअसल अपने स्वादिष्ट स्वाद के अलावा आम पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं, जो उन्हें प्रकृति का सच्चा उपहार बनाते हैं। आम में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और मैग्नीशियम पाया जाता है। वाकई श्रोताओं, आम को फलों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। इस स्वादिष्ट फल के हर एक भाग का उपयोग किया जा सकता है। आम का पेड़ भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और लोक कथाओं का भी अभिन्न अंग है। शुभ अवसरों पर आम के पेड़ के पत्तों को से घरों को सजाया जाता है और इसका औषधीय उपयोग भी किया जाता है। आम के छिलके और गुठली को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। आम का रस, पना, शेक, अचार, कैंडी, स्मूदी, मिठाई, सलाद, चटनी, यहाँ तक कि आम से आइसक्रीम भी बनाई जाती है। श्रोताओं, कहा भी जाता है ना, आम के आम, गुठलियों के दाम। और श्रोताओं, आम के मेले और प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती है। और श्रोताओं, आम के दीवानों के लिए खास खबर ये है कि 29 मई से 31 मई यानी आज रात 9 बजे तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आम प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुली रहेगी। तो अगली बार जब हवा में लहलहाते आम के पेड़ के पास से गुजरे या उसकी ठंडी छाँव में खड़े हो, तो आम के पेड़ के फायदों को याद करना ना भूले और धन्यवाद करे उस पर आशियाना बनाकर रह रहे जीव जंतु, तितली, गिलहरी, चींटियों और उस पर गीत गाते तोता, मैना और कौवे का।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, जो आपके लिए पेश किया आपकी रेडियो दोस्त दीपा ने। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब

0: ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देख

0: कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers

0: बच्चों जय हिंद। सभी नन्हे मुन्नों को अरुणा दीदी का ढेर सारा प्यार। कहिए बच्चों, कैसे बीत रही है गर्मी की छुट्टियां? एक और गर्मी का हाहाकार तो दूसरी ओर गर्मी में आइसक्रीम और बर्फ के गोले खाने का मजा, है ना? और फिर भाई इस चिचराती धूप में कभी कभार वर्षा की बूंदें भी आती है जो हमें राहत दे जाती है ना। और इस गर्मी में आपको खूब सावधानी बरतनी है बच्चों, क्योंकि बदलते मौसम के अनुरूप हमें अपने सेहत को भी संभाल कर रखना होता है, है ना। माना कि गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता चाहिए कि निकल पड़े भरी धूप में बाहर। अरे भाई, बाहर घूमने जाना है तो बिल्कुल ये, मगर 12 बजे से 4 बजे के बीच तो बिल्कुल भी धूप में नहीं निकलना है बच्चों। हम जानते हैं कि आप नन्हे मुन्नों को जब घूमना होता है तो धूप बिल्कुल नहीं लगती है ना, परंतु बच्चों ये धूप शरीर पर लग जाती है और इसका बुरा असर होता है। और बच्चों साथ ही इन दिनों खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना है आपको, यानी तली भुनी चीज़ें जो होती, तली हुई चीज़ें और जंक फूड, इन्हें तो बिल्कुल टाटा बाय बाय ही कर लीजिए। ताज़ा और सादा खाना खाइए बच्चों, और पेय पदार्थ भी बहुत लीजिए, जैसे कि नींबू पानी, आम पना, छाछ, मठा, और हाँ ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है। और बच्चों गर्मी के इन दिनों में ना आप जो कपड़े पहनते हैं उसके चयन में भी बड़ी समझदारी दिखाना है आपको। ढीले सूती वस्त्र, हल्के रंग के कपड़े जो है वो आपको बहुत आराम देते हैं। और फिर इन दिनों छुट्टी है तो घूमने भी तो जाते हो ना, रेलगाड़ी में मज़ा लेते हो कि नहीं? तो इन सब चीज़ों का वहाँ भी ध्यान रखना है। जब आप बाहर जाते हैं तो खाना थोड़ा कम खाए, वरना पेट में गड़बड़ हो सकता है। और ऐसा ना हो कि रेलगाड़ी का मजा ही किरकिरा हो जाए भाई। ना ना ना ना, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बड़े समझदार हैं और हमारी बातों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल भी करेंगे। तो चलिए लेते हैं रेलगाड़ी का मजा।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेल गाड़ी रेल गाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम, ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, शोतनूर कोतनूर शोतनूर कोतनूर, चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

मजा आ रहा था ना बच्चों, रेलगाड़ी की यात्रा में हमारे साथ। और अब आइए मुखातिब होते हैं नन्हे दोस्तों से और सुनते हैं बच्चों के मुख से उनकी जो भी उन्होंने लाया है सुनाने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं।

0: नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते दीदी।
0: तो नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है आज के इस किसले कार्यक्रम में। और हमारे सभी नन्हे श्रोताओं को हम बता दें कि भाई आज हम कम बोलेंगे और आपके नन्हे दोस्त ज्यादा बोलेंगे। तो गर्मी की छुट्टियों का आनंद सभी ले रहे हो कि नहीं बच्चों?
1: हाँ दीदी।
0: कैसे, क्या कर रहे हो?
2: मैं स्कूल की
3: तैयारी कर रहे हैं।
2: मैं स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ।
4: अरे अपना बैग जमा रहा हूँ।
0: और चिड़िया रानी को पानी पिलाने का काम कौन कर रहा है?
5: मैं
0: कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है।
6: तो मुझे आम खाना भी पसंद है और चिड़िया को पानी पिलाना भी।
0: बहुत अच्छी बात है भाई। तो ऐसे ही आप करिए। और अपने घर के पेड़ों में भी पानी डालते हो ना?
1: यस मैम।
0: हाँ, तो भाई जिस तरह पेड़ हरे भरे, वैसे ही आज हमारी किसले की बगिया भी एकदम हरी भरी है। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं और आपके नन्हे दोस्त क्या क्या सुनाने जा रहे हैं अभी बच्चों आप सुनेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले अन्वय वंजारी आपके पास है। तो अन्वय, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं?
2: सुप्रभात, मैं हूँ अन्वय। मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। और आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मैं मतवाला मस्त पवन सा। मैं मतवाला मस्त पवन सा, निर्मल जल सा छू जाता हूँ। कभी छाव सा प्यार देता, कभी धूप सा खिल जाता हूँ। नहीं किसी का गम धोता, खुशियाँ हर दम फैलाता हूँ। हर पल जीवन जीने का फलसफा बतलाता हूँ। मैं मतवाला मस्त पवन सा, बारिश की बूंदों सा चमकीला, हर जगह हरियाली लाता हूँ। सुंदर फूलों की बगीचा सा, सुगंध मुस्कान सा बिखर जाता हूँ। मैं मतवाला मस्त पवन सा, बातों बातों में कुछ राम तो कुछ प्यार सबक दे जाता हूँ। परिवार का केंद्र बिंदु सा, जोड़े रहने का संदेश दे जाता हूँ। मैं मतवाला मस्त पवन सा, निर्मल जल सा छू जाता हूँ। कभी छाव सा प्यार देता, कभी धूप सा खिल जाता हूँ। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी कविता। तो तुम बहुत साहसी हो, हिम्मत नहीं। वाह भाई, बहुत अच्छी कविता थी आपकी, मैं मतवाला मस्त पवन सा। बहुत बढ़िया। और अब किसकी बारी है? अर्णव, है ना?
7: सुप्रभात, मेरा नाम अर्णव वंजारी है। मैं PMC केंद्रीय विद्यालय कुरुत के कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं लाल रंग के विषय पर दो बातों की चर्चा करने जा रहा हूँ।
0: लाल रंग पर, यानी कि आपको लाल रंग बहुत पसंद है?
7: हाँ, मेरा मन पसंदीदा रंगों में से एक है।
0: बहुत बढ़िया भाई। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पसंद के रंग पर कुछ बोल रहे हो। चलिए बताइए क्या जानकारी दे रहे हैं आप।
7: आप सबने देखा होगा कि बैल लाल कपड़े पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बैल असलियत में लाल रंग को देख कर झपटते नहीं है। सच ये है कि बैलों को कोई रंग दिखता नहीं है, वो कपड़े की हिलाने पर हमला कर देते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि आप काला या सफ़ेद कपड़ा भी उनको दिखाएंगे और हिलाएंगे तो बैल उस पर भी हमला कर सकते हैं। दूसरा, सबको पता है कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि हमारे रक्त का लाल रंग क्यों है। रक्त का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल हीम कहलाता है। हीम में अधिक मात्रा में आयरन होता है। जब अधिक ऑक्सीजन होता है तब वह चमकीला लाल हो जाता है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तब वह गहरा लाल हो जाता है। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी बात है। तुम भाई बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और ऐसी जानकारी है तो बिल्कुल इकट्ठा करके रखनी ही चाहिए। तो बहुत अच्छा अर्णव। और अब आपके सामने एक और नन्ना सा दोस्त है, अपना नाम बताइए।
8: नमस्कार, मेरा नाम आकर्ष कश्यप है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है कभी नहीं हिम्मत हारो। कितनी ही बाधाएं आए, कभी नहीं हिम्मत हारो। देखो कोमल गलियां भी तूफान को सह लेती है, दीपक की बाटी जल जल कर घना अंधेरा हरती है। कितनी ही विपदाएं आए, कभी नहीं हिम्मत हारो। हिम्मत के कारण ही चीटी हाथी से लड़ जाती है, बार बार गिर गिर कर मकड़ी छज्जे पर चढ़ जाती है। शत्रु भले ही आंख दिखाए कभी नहीं हिम्मत हारो, साहसी साथी होता है सीमा के सेनानी का, रोक नहीं सकती चट्टाने पत नदियों के पानी का, चाहे दुर्दिन गाज गिराए कभी नहीं हिम्मत हारो, कभी नहीं हिम्मत हारो।
0: बहुत अच्छी कविता। तो तुम और अब आपके सामने अनन्य भगाड़े बांसुरी वादन प्रस्तुत करने जा रहे।
5: सुप्रभात, मेरा नाम अनन्य भगाड़े है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ।
0: अच्छा, आप बांसुरी सुनाने जा रहे हो?
5: जी
0: अनन्य, हाँ ये बताइए कि बांसुरी आप कब से बजा रहे हो?
5: मुझे 3 साल हो गए।
0: अच्छा, तो क्या क्या सीख लिया आपने बांसुरी वादन में?
5: अभी राग होते हैं बहुत सारे उसमें। अच्छा। मतलब ताल होते हैं, खेमटा। हाँ। ताल।
0: अच्छा,
5: और राग और ताल सीखे अभी बस।
0: अच्छा, तो अभी आप अपने नन्हे दोस्तों को क्या सुनाने जा रहे हो?
5: जब हम योगा करते हैं तब एक धुन बजाई जाती है रिलैक्सिंग टोन करके।
0: अच्छा,
5: वो धुन है।
0: वो धुन बजाओगे? हाँ, तो बच्चों आप सब तैयार हो ना बांसुरी वादन सुनने के लिए?
1: जी मैम।
0: हाँ तो चलो सुनाओ।

0: अनन्य भगाड़े, आपने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई और बड़े ध्यान से हम देख रहे थे और सारे बच्चे देख रहे थे आपकी कैसी उंगलियां चल रही है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई जोरदार तालियां हो जाए अनन्य के लिए। और अब आपके एक और नन्हे मुन्ने दोस्त आपके सामने हाजिर है।
1: नमस्कार, मेरा नाम तन्मय बोरा है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मातृभूमि है।
0: अरे वाह भाई, मातृभूमि पर कविता, क्या बात है, चलिए सुनाइए।
1: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, यह पुण्य भूमि मेरी, यह स्वर्ण भूमि मेरी, यह जन्म भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हुमस्त झाड़ियों में, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी कविता भाई, सब ताली बजाए, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है। आपके एक और नन्हे दोस्त यहाँ पर हाजिर है, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम श्रीयम तिवारी है।
0: और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो?
2: मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, और श्रीयम आप तो क्या कुछ पूछने जा रहे हो कि सुनाने जा रहे हो?
2: पूछने, आज मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ।
0: अच्छा, यानी जरूर पहेली पूछने जा रहे हो, है ना? तो बच्चों तैयार रहे पहेली का जवाब देने के लिए। हाँ चलिए पूछिए।
2: मैं बिना पैरों के चलता हूँ, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, पेड़ों को झुलाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ।
0: पेड़ों को झुलाता हूँ, बहुत अच्छा भाई। तो बच्चे सुना आपने, किसी को पता है इसका क्या जवाब है?
3: हवा।
0: हवा ठीक है श्रीयम?
3: हाँ,
0: बहुत अच्छा। तो भाई इनके जवाब के लिए भी तालियां और पहली पूछने वाले के लिए भी तालियां। अब आप बताइए, क्या नाम है आपका?
4: सुप्रभात, मेरा नाम नव्या तिवारी है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।
0: तो नव्या, आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाने जा रही हो?
4: आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक सच्चे साथी है।
0: सच्चे साथी, तो भाई सच्चे साथी होना तो बहुत जरूरी है, है ना? तो हाँ। तुम्हारे है ना सच्चे साथी?
4: हाँ, मेरे सच्चे साथी।
0: अच्छा, इसीलिए कविता भी वही बोल रही हो?
4: हाँ।
0: चलो सुनाओ कविता।
4: पेड़ हमें छाया देते, मीठे मीठे फल भी देते, पक्षी इनमें घर बनाते, सबको जीना यह सिखलाते, ठंडी हवा संग मुस्काते, बरसातों को पास बुलाते, धरती को हरियाली देते, सबके मन में खुशियां भर देते, नन्हे पौधे जब लहराते, सारे बच्चे खुश हो जाते, पेड़ हमारे सच्चे साथी, सच्ची धरती माता इनसे धन्यवाद।
0: तालियां हो जाए भाई। सचमुच पेड़, अभी जो धूप पड़ रही है उसमें पेड़ हमें कितनी ठंडक देती है ना, न सिर्फ ठंडक, छाया भी देती है, हवा भी देते हैं पेड़, है ना? तो पेड़ की रखवाली करना तो हमारा कर्तव्य है भाई। और आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है। और इसके बाद नन्हे मुन्नो, आपकी और एक छोटी सी आपकी मित्र आई हुई है, क्या नाम है सुनाइए, आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम सनाया है।
0: हाँ सनाया, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
5: मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, तो आप दूसरी कक्षा में पढ़ती है, बहुत अच्छी बात है। आज आप क्या लेकर आए हो?
5: आज और, मैं हाँ अपने दोस्तों को हाँ, मेरे साथ हुई एक बात बताना चाहती हूँ।
0: अच्छा बताइए, क्या बात है?
5: मैं शाम को कोचिंग क्लास के लिए तैयार हो रही थी।
0: अच्छा,
5: तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और लाइट गोल हो गई। मैं जैसे तैसे तैयार हुई, मम्मी के साथ घर से बाहर निकलने वाली थी तभी तेज पानी गिरने लगा।
0: अच्छा,
5: मैंने मम्मी से कहा, ओह मम्मी आज ही पानी गिरना था, आज मेरी जरूरी क्लास है। मम्मी मुस्कुराई और बोली, चलो कोशिश करते हैं। हम लोग मोबाइल के लाइट में रेनकोट ढूंढे और पहनकर फिर निकले। रास्ते में तेज हवा के कारण मम्मी को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। मैंने बोला, मम्मी आज क्लास नहीं जा पाएंगे। मम्मी फिर बोली, कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर में रोड जाम हो गया। मैंने फिर कहा, आज क्लास नहीं जाते। मम्मी ने फिर कहा हमें कोशिश करना चाहिए। और आखिर हम रोड जाम, तेज हवा और बरसात से होते हुए क्लास पहुंच ही गए। मैं बहुत खुश हुई। तभी मम्मी हंस के बोली, देखा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लास से घर आने के बाद मम्मी ने मुझे कविता पढ़ाई जिसे सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है।
0: अच्छा।
5: जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।
0: चलो सुनाओ भी।
5: इसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: अच्छा चलो सुनाओ।
5: लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।
0: भाई बहुत अच्छी कविता सुनाया। और एक और बहुत अच्छी बात यह है कि आपने अपनी माँ के साथ मिलकर खूब कोशिश की है ना, तो कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती, बात बिल्कुल सही है। और नन्हे मुन्नो आप सब भी हर चीज़ में जब भी कुछ काम करते हो और अगर नहीं होता है तो आपको हमेशा कोशिश करते रहना है। और आज सभी नन्हे मुन्ने जो यहाँ आए हैं हम उन सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर सबके लिए जोरदार तालियां।

तो सुना ना बच्चों के मुख से, आपके नन्हे मुन्ने दोस्तों ने कितनी प्यारी प्यारी बातें की है ना। और अब एक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए गीत के साथ।

बच्चों कैसे लगी गाते गाते ये कहानी आपको? मज़ा आया ना? आप थिरक भी रहे थे भाई, हम जानते हैं। और वैसे बच्चों, आप सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर छिपा होता है ना? अक्सर आप अपने दोस्तों को कविता, कहानी, चुटकुले, गीत सुनाते रहते हो, है ना भाई? सुनाते हो कि नहीं? तो आपके अंदर का जो हुनर है ना, उसे आकाशवाणी से प्रसारित बच्चों के कार्यक्रम किसले के माध्यम से तराशे जाने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र में 5 जून 2026 को सुबह 9:15 पर और सुनाए अपनी कविता, गीत, कुछ नई जानकारियां, पर्यावरण, जल संरक्षण पर अपने कुछ विचार, और आपने जो कुछ भी प्रयास किए हैं वो भी आप बता सकते हो। इसके अलावा कुछ बच्चे इन सब से अलग कुछ और भी काम करते, किसी विशेष क्षेत्र में सक्रिय है, तो वो भी अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो नन्हे मुन्ने देर मत कीजिए, आइए आकाशवाणी रायपुर के किसले प्रभाग में आप सबका स्वागत करेंगे हम, और अपने साथ अपने जो भी आप सुनाने वाले वो जरूर लेकर के आइए। इसके अलावा कुछ बच्चे सोचेंगे कि दीदी हम तो दूर रहते, हम कैसे आएंगे गर्मी में? कोई बात नहीं, आप अगर दूर रहते और नहीं आ पा रहे हैं तो आप कार्यक्रम से संबंधित या फिर अपनी कविता, कहानी, चुटकुले वगैरह हमें पत्र में लिख कर भेज सकती है। पता है किसले कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर 4920001। और अब घड़ी कर रही इशारा, तो चलते हैं। सभी नन्हे मुन्नों को अरुणा दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों जय हिंद।

बच्चों का कार्यक्रम किसलय अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल संसार। इसमें सुनिए भारतीय ओलंपिक वेटलिफ्टिंग ऑफिसर श्री गुरमीत कौर से कौर धनई से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है धर्मदीप डोंगरे।

0: श्रोताओं नमस्कार। खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारतीय ओलंपिक वेटलिफ्टिंग ऑफिसर श्रीमती गुरमीत कौर धनई जी। तो मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: मैडम। हम जानना चाहते हैं कि आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं।
1: मैं जितने स्पोर्ट्स वाली बेटियां हैं छत्तीसगढ़ की, उन बेटियों के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, मान लीजिए खेल में संघ की तरफ से उनके फाइनेंशियली, उनके एकेडमिक, उनको स्पोर्ट्स में कहीं कोच या उनके साथ किसी भी तरह की कोई ऐसी खाने की, न्यूट्रिशन की, मैदान की और इवन जिम की, तो उन सारे मामलों को मैं खुद पर्सनली देखती हूँ। ये एकेडमी की तरफ से नियुक्ति नहीं होती है, क्योंकि हमने जो खेल खेला है उस समय का आयोजन और आज का जो आयोजन है उसमें बहुत सारे एकेडमिक और फेरबदल हुए हैं।
0: जी जी मैडम, आपके खेल जीवन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताइए।
1: मेरी मदर राष्ट्रपति विजेता है, वो शिक्षिका रही है और अभी रिटायरमेंट हो गई है, 83 एज में है राइट नाउ। वो स्पोर्ट्स की थी, उनका शौक था, वो अपनी तरह से छक्का दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक, इन सब चीजों में आफ्टर मैरिज आफ्टर चाइल्ड वो कर रही थी अपने एजुकेशन सोसाइटी में। उनका सबसे बड़ा इवेंट होता था स्काउट एंड गाइड ट्रेनिंग, जिसकी वो ट्रेनर रही। तो उनको हमने जब देखा तो डिसिप्लिन वगैरह के कारण उन्होंने मुझे पर्सनली खेल में डाला, और हमारे पंजाबी कल्चर है हमारा अपना खुद का, तो एक ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक छोटा सा जज्बा रहता है कि हम कुछ करें अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए। तो नेचुरली वो मेरी मदर की देन है, उन्होंने मुझे 8 एमपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी में डाला कॉलेज आने से पहले ही। और उसके पहले तो भाला फेंक, रिले रेस, दौड़, उस समय ओलंपिक को हम जानते भी नहीं था, हमारे नॉलेज का नहीं था। धमतरी तहसील था 84 तक, जब मैं 11th का एग्जाम दी, तो उसके पहले तक तो हम खेल रहे थे, तो वो स्कूल के स्पोर्ट्स खेल रहे थे, कहीं गणेश मैदान में कर रहे थे तो वहां तक कर रहे थे बस।
0: जी मैडम, आपने वेटलिफ्टिंग को जो अपना करियर बनाया है उसके लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली थी?
1: डेफिनेटली फिर आगे आती हूं कि भाला फेंक, गोला फेंक एक वेट से ही कनेक्टेड है, और हमारी जो शरीर की बनावट है उसके नाते हमारे को कहीं ना कहीं हम अपने अंदर वुमन होते हुए भी मेंस पावर से साथ में कनेक्टेड रहे। हमको कोएड में पढ़ने का मौका मिला, हमें बच्चों में भाई बहनों के बीच में भाइयों के साथ सानिध्य बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। घर में मदर जो हमारी पिता तुल्य, क्योंकि पिताजी हमारे 4 साल की थी तभी डेथ हो गई थी, हमारी माता ने पिता का रोल भी अदा करके हमको बड़ा किया। तो नेचुरली हमने जो देखा कि मेंस पावर इज नॉट अ डिफरेंट पावर, इट्स अ बेसिकली पावर इज अ पावर फॉर ह्यूमन, ह्यूमन मतलब इंसान, तो इंसान औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है। उस नाते मुझे मौका मिला कि मेरी माँ से वो बल मिला, शादी के बाद मेरे हस्बैंड से वो मुझे कोऑर्डिनेट में मिला। मेरे हस्बैंड बेसिकली इंजीनियर और उनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे सपोर्ट में उन्होंने जब मेरे को स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट बनाया, छत्तीसगढ़ की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ वेटलिफ्टिंग की, मार्शल आर्ट की और पीसीसी चेयरमैन ऑल्सो, तो मैंने जो फाउंडर तीन चेयरमैनशिप जब मेरे को मिली, तो नेचुरली जब मुझे मिला है एक ओहदा, तो उस ओहदे में मुझे कुछ कार्य करना है। ओहदा इसलिए नहीं मिलता कि सिर्फ आप उसको सिम्बोलिक रूप में, तो मैंने उस पर काम किया और वेटलिफ्टिंग की, वेटलिफ्टिंग में एक अडॉप्ट की। सुनील दत्त जी खेल मंत्री थे, उनसे एक बच्ची मेरे को अडॉप्ट हुई, छत्तीसगढ़ में उतारा 2005 से बाद 2006 में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम जाने का गवर्नमेंट ने मौका दिया कि आप जाएंगी क्योंकि आप अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे मौका मिला।
0: जी जी मैडम, जैसे आपने बताई दिया है अभी, तो परिवार में आप पर खेल जीवन में कितना सहयोग रहा?
1: डेफिनेटली बहुत सहयोग। मेरी दो खुद की बेटियां हैं, दोनों बेटियां इंटरनेशनल प्लेयर हैं, छोटी मेरी किकबॉक्सर है, इंटरनेशनल किकबॉक्सर है, बड़ी मेरी इंडियन ओलंपिक ऑफिसर एथलेटिक में है, और मेरी मदर ऑल्सो स्काउट एंड गाइड है। तो पहले तो हम अपनी माँ से आ जाएं, वहां से भी मिला, उसके बाद जो बच्चियों ने भी अपने स्पोर्ट्स को वो बना दिया एम्बिशन, एंड माई सेल्फ तो मेरी दुनिया ही घरेलू हो जाती अगर मैं एम्बिशन में नहीं आती, तो ऑटोमेटिक वो मेरा शौक, मेरा पैशन, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज ने मुझे कोऑपरेट किया, तो आज मैं अपने वजूद को कायम
0: यहां तक पहुंचे हैं। जी जी मैडम, ओलंपिक तक पहुंचने का आपका जो अनुभव रहा कैसा रहा, और साथ ही आप अंतर्राष्ट्रीय मैच में यादगार पल हो उसके बारे में बताइए मैडम।
1: बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है, बिकॉज हमारे इंडिया में हम बहुत सारी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, जबकि देश हमारा है, देश हित में हम सबको एक एक कदम रखना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल मीटिंग में जाते हैं तो हम जो थूकना और रैपर फेंकना, चॉकलेट खा रहे हैं तो रैपर रोड में फेंकना जो हम देखते हैं करते हैं यहाँ इंडिया में, बहुत हमारी इंडिया गवर्नमेंट उस पर फाइन नहीं लगाती। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम पहुंचे थे
0: जी, कौन से ईयर में पहुंचे थे?
1: 2006 में
0: जी।
1: तो जब हम थे वहां पे एक महीना थे, तो मैं नवजोत सिंह सिद्धू हम दोनों एक साथ चल रहे थे, नाश्ता करके बाहर निकले थे होटल से, चॉकलेट हाथ में जेब में डाल लिया और एक चॉकलेट खोला, रैपर मुंह में डाला और रैपर फेंका। पीछे से जो फॉरेनर्स थे वो नॉट ऑस्ट्रेलियन, नॉट गवर्नमेंट, इट्स पब्लिक, उसमें से एक आती है, हेलो एक्सक्यूज मी इंडियन, ही डजंट नो हु इज यू, उनको नॉलेज में नहीं कि आप कौन है, बट आप इंडियन है बिकॉज आपने ब्लेजर इंडिया का, तो ब्लेजर हमारी पहचान है, हमारी जान है, उस जान और पहचान की हमने तोहमत इज्जत खराब की अगर हमने रैपर फेंका। ये

0: उस दिन से स्ट्राइक किया
1: जी
0: कि डस्टबिन बना है, नहीं तो आप एक पॉलीथिन अपने साथ
1: साथ में रखिए।
0: तो ये एक बहुत बड़ा स्टॉक था मेरे लिए दिमाग में कि हमने अपने इंडिया में कितने गुनाह किए हैं
1: जी जी,
0: और हम अपने देश के हित के लिए नहीं करते। ये मेरे जिंदगी का सेकंड अंत था कि अब नहीं, मुझे कभी ऐसा करना है, थूकना फेंकना ये सब नहीं करना है।
1: जी, जी, जी।
0: और इन संघर्ष में फायदा ये हुआ कि आज मेरे बच्चे जब दुबई में हैं तो वो ये चीज को बोलते हैं, देखो इंडिया में कितना लोग माफ कर देते, आइए आप दुबई में करके दिखाइए। तो अब समझ में आता है कि वो हमारे बच्चे भी समझ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल मैडम, एक खिलाड़ी के जीवन में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताइए।
0: बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे उठ के हमको क्रॉस कंट्री दौड़ना पड़ता है, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे आपको कितना अनइजी फील हो रहा हो, चाहे आपको कितनी थकावट लग रही हो, बट 5 बजे उठ के आपको वेल टू डू बाल बांधना है, तेल लगा हो न लगा हो, शैम्पू किया हो न, फैशन गया तेल लेने, आपको एक ही सब्जेक्ट क्लियर होना है कि आपका फिजिक आपके लिए आपके हिसाब से टाइम से तैयार होना चाहिए। और उस समय जब 5 बजे से 7:30 बजे तक हम क्रॉस कंट्री दौड़ते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, थाइज में पेन होना लगता था, पंजों में पेन होने लगता, लेकिन हमें रुकना अलाउड नहीं था।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये डिसिप्लिन, और उसके बाद बड़ों का आदर, गुरुओं का आदर
1: जी,
0: वो डिसिप्लिन भी साथ में था। थर्ड था न्यूट्रिशन, एनी टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, एनी टाइप ऑफ फालतू बाजार का सामान आपको नहीं खाना है, तो ये डिसिप्लिन हमारे फूड में भी आया।
1: जी जी मैडम, आपका दैनिक अभ्यास और फिटनेस रूटीन कैसा रहता था उस टाइम पर?
0: आज भी है, सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, और अगर घर में है तो योगा करना है
1: जी,
0: बिल्कुल। आप बाहर हैं तो जिम भी जाइए, आप दौड़िए, साइकिल चलाइए, पर करिए कुछ तो करिए, दिन भर में आपको 1 घंटा अपने लिए देना है।
1: जी बिल्कुल। मैडम मैच से पहले जब आप जाते थे उसमें, तो मानसिक दबाव को संभालने के लिए आप क्या करते थे?
0: मेडिटेशन है एक्चुअली। क्या है कि जब अपन वहां स्पोर्ट्स के दुनिया में खड़े होते हैं तो सारे लोग अपने अपने देश के लिए खड़े हैं, वहां देश खड़े होते हैं, वहां आदमी नहीं खड़ा होता है। तो हमको हमारे फ्लैग के लिए क्या करना है, तो हम लड़ के नहीं, हम अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा के और उनके डिसिप्लिन के हिसाब से उन सामने रेफरी और कोच और मैनेजर, टीम मैनेजर के सामने अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम करते हैं, कि हम वो हमारे पर दबाव रहता है कि हम अपने उस रिंग से बाहर ना जाएं
1: जी।
0: वो रिंग बना हुआ है हमारा डिसिप्लिन का, उस रिंग से बाहर ना जाएं। एक नंबर कम होता है तो एक्सक्यूज करने की भी क्षमता कर, शर्मिंदा हो रहे हैं तो पूरी तरह से शर्मिंदा हो और हाथ जोड़ के माफी मांगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कल्चर है कि आप वहीं से डिसिप्लिन को जो सीखते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग पूरी जिंदगी, होल जिंदगी के फायदेमंद के लिए है
1: जी। मैडम आज भारतीय जो वेटलिफ्टिंग है उसको आप कैसे देखती है?
0: बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगी कि वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन पूरे इंडिया का अगर स्थापित है
1: जी,
0: तो सिर्फ महिलाओं के कारण
1: जी,
0: सिर्फ महिलाएं उसको हैंडल कर रही हैं। कुंजुरानी, कर्णम मल्लेश्वरी, गीता देवी, सिंपल कौर, ये सारी महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने पहला पदक लेके देश का नाम हर जगह पे पहले नंबर पे रखा। अगर आप एसोसिएशन वाइज देखेंगे तो सारे गेम अच्छे हैं, सारे गेम में चैलेंज है, सारे गेम में प्लेयर्स अच्छे हैं, बट जब आता है नाम तो आप ओलंपिक में देखिए तो कुंजू रानी फर्स्ट नाम अनाउंस हुआ था, मेडल फर्स्ट
1: जी।
0: तो जब लड़कियों को हम देखते हैं वेटलिफ्टिंग में, तो जितना लड़कियों के अंदर सौष्ठव प्रतियोगिता में अपने बैच पे अपने वेट कैटेगरी एज कैटेगरी में वो आगे आती है मेडल लेके, तो हमारा देश का नाम सर्वप्रथम लाने वाले वेटलिफ्टिंग में महिलाएं हैं
1: जी। बिल्कुल। मैडम आपके जीवन का सबसे यादगार मैच कौन सा रहा और हार और जीत में आपने क्या सीखा इसके बारे में बताइए।
0: मैंने हर बार एक ही बात कहती हूँ, और हारने के बाद नेचुरली हम डोमिनेट होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, फिजिकली होते हैं, मेंटली होते हैं, डोमिनेट, बट वो डोमिनेट के पीछे हमको एक अंदर से भावना लानी पड़ेगी कि आज का दिन तो हमारा नहीं था
1: जी,
0: पर आने वाला दिन हमारा होगा, उसके लिए हम डबल मेहनत करके डबल स्पीड से आगे आएंगे। जो फर्स्ट वाला है हो सकता है वो शिथिल पड़ सकता है कि मैं तो फर्स्ट आ गया हूं, पर परमानेंट फर्स्ट नहीं है वो
1: जी।
0: ये इस भावना से हर लड़की को, हर लड़के को, हर इंसान को, चाहे वो किसी भी काम में हो, खिलाड़ी ही नहीं, हर किसी काम में पीछे हो गए हैं, इस भावना को पकड़ के नहीं बैठना है। ये ज्यादा देर का लॉन्ग लास्टिंग गेम नहीं है, ये पार्ट ऑफ गेम है
1: जी। मैडम आपके अनुसार एक सफल खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान क्या हो?
0: सबसे बड़ी पहचान उसकी खुद का जज्बा, उसके खुद का व्यक्तित्व, उसकी खुद की परिभाषा, उसका खुद का अनुशासन, उसका खुद का गुरु के प्रति समर्पण
1: जी, ये है
0: बिल्कुल।
1: आने वाले समय में मैडम आपके क्या लक्ष्य हैं?
0: मेरा लक्ष्य है कि मैं कुछ

0: बच्चों को, बेटियों को, खासकर बच्चियां तो आजकल सभी बराबर हैं, बच्चे भी लड़के भी बराबर हैं। मैं लड़कों के लिए भी अभी रुस्तम सारंग की नौकरी के लिए भी मानदेय के लिए डीजीपी साहब से बोल के उसके मानदेय बढ़वाई हूं। मैं महिला पुरुष नहीं समझती, मैं समझती हूं कि इंसान, और मेरे पास सभी लोग कैटेगरी के लोग बात करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। मेरा पर्सनल व्यू है कि अब जो मेरा जो समय है, बिकॉज राइट नाउ आई एम सीनियर सिटीजन, एक साल बाद हो जाएंगे हम, तो हमारी मेरी मंशा यह है कि मेरे जीते जी मैं 5 लड़कियां या 5 लड़के जो भी हों गोद लूं।
1: अच्छा,
0: और गोद लेके उन बच्चों को सिंबॉलिक रूप में, मेरी कल्पना तो इंटरनेशनल की है, डेफिनेटली मेरा सपना तो इंटरनेशनल ही रहेगा, लेकिन अगर मैं देश का झंडा बनाने में कामयाब हो जाऊं उन 5 को,
1: जी
0: वो को 5 कौन है मैं नहीं जानती, अभी अननोन हूं मैं। मैं गवर्नमेंट से बात करके, कलेक्टर से बात करके, सीएम से बात करके उन 5 जिलों के 5 बच्चों को गोद लेके उनको अपने घरों में रख के
1: जी
0: अपने भरण पोषण पे अपने हिसाब से, तो उसमें एज ए मदर, एज ए कोच मैनेजर जो भी बोलो मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊं ताकि वो खेल की तरफ जाएं।
1: जी बिल्कुल। मैडम, खेल ने आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव लाए इसके बारे में बताइए।
0: मुझे बहुत फक्र से कहना में मजा आता है कि माई सेल्फ गुरमीत धनई, इंडियन ओलंपिक ऑफिसर।
1: जी,
0: ये मेरी पहचान है।
1: जी, बहुत बढ़िया। मैडम, अगर आप खिलाड़ी नहीं होती तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहती।
0: मेरा आर्ट में बड़ा ध्यान है, पेंटिंग, डांस, क्लासिकल डांस, सिंगिंग, और ये सब लिखना, शेर व शायरी लिखना।
1: जी,
0: जैसे हम आप आज, जैसे आपने आज हमें बुलाया है, तो मैंने जिंदगी में सारे मंच देखे, आकाशवाणी का मंच आज पहली बार मैं आई हूं, तो खेल की ही दुनिया में आई हूं, ये मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिविटी है। एंड इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहती हूं जो मैं लिखती हूं, मेरा लिखने का शौक है।
1: जी,
0: तो मैं लिखती हूं, लम्हा लम्हा कर रहे थे जिस लम्हे का इंतजार, लम्हा लम्हा कर रहे थे जिस लम्हे का इंतजार, कम वक्त वो लम्हा आया भी तो सिर्फ एक लम्हे के लिए।
1: अच्छा,
0: ये मेरे लिए, आपके लिए।
1: मैडम, अंत में युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए और हमारे जो रेडियो श्रोता है उनके लिए आपका विशेष संदेश क्या है उसके बारे में बताइए।
0: पहली बात तो खेल को भावना से खेलें, सद्भावना से खेलें, आपसी प्रेम से खेलें, और एक पॉजिटिविटी लेके कि हमें जीतना है उसके लिए खेलें। हारते तो हार जीत तो एक की होनी है, एक जीतेगा तो एक हारेगा, लेकिन इस हम हार गए हैं ये सोच के युवा अपने आप को एक दिन प्रैक्टिस करके दूसरे दिन वापस घर ना जाए, पहले तो वो लॉन्ग लास्टिंग गेम खेले। ये एक घंटे का कोई जुआ नहीं है कि आपने अभी फेंका ताश के पत्ते और आप जीत गए, ये लॉन्ग लास्टिंग चीजें हैं, पर इसकी इज्जत और सम्मान जो है वो मरते दम तक है, मरने के बाद भी है, आंकड़ों में। जब जब आंकड़ों में आएगा छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर, तो गुरमीत कौर धनई पहली ऑफिसर जिसने छत्तीसगढ़ का नाम 2006 में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में कॉमनवेल्थ गेम में दिया है, मेरे मरने के बाद भी वो विश्व पटल पे रहेगा। ये होनारी एक गांव से, धमतरी से पैदा हुई लड़की के मन में आ सकती है, तो जो जितने गांव में या सिटीज में रह रहे हैं वो ये ना सोचें कि हम गांव शहर में रह रहे हैं, बस ये भावना से युवाओं को आगे आना पड़ेगा।
1: जी जी। तो मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां जो श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: श्रोताओं, आज का अंक यही तक, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम खेल संसार में अभी आप सुन रहे थे भारतीय ओलंपिक वेट लिफ्टिंग ऑफिसर श्रीमती गुरमीत कौर धनई से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुतकर्ता थे धर्मदीप डोंगरे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। पहले ये संदेश।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म चोर मचाए शोर से किशोर कुमार की आवाज में, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: बंधू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: SD बर्मन की आवाज में आइए अब सुने शैलेंद्र की रचना। संगीत SD बर्मन का है, फिल्म है गाइड।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में बेमिसाल फिल्म का गीत। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।

0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
1: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
2: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम के आखिर में सुने एसडी बर्मन की आवाज में आनंद बख्शी की रचना। इस गीत की धुन तैयार की है एसडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है आराधना।

आराधना फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं गिरिवरदास मानिकपुरी और साथी। आइए कार्यक्रम में पहले सुनते हैं गिरिवरदास मानिकपुरी और साथियों के स्वर में श्रम गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए ये विवाह गीत, स्वर मालती कुंतीबाई और साथियों के हैं।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे गिरिवरदास मानिकपुरी और साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इन चुनावों के लिए शनिवार रात 12 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 से 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है। शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मत पेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज ऑन AIR वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण न्यूज ऑन AIR, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए से व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों में सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तंबाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना चाहिए। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज अंतिम दिन है। इस महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। महोत्सव में बस्तर संभाग के जंगलों में मिलने वाले करीब 150 दुर्लभ किस्मों के आमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये आम आदिवासी अंचल के स्थानीय हाट बाजार में उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चांपा स्टेशन में चौथी रेल लाइन को जोड़ने के लिए बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से 7 से 19 जून के बीच रद्द की गई सभी ट्रेनें अब बहाल कर दी गई हैं और वे अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी अधिकृत पूछताछ सेवाओं तथा वेबसाइट से जरूर कर लें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: यह आकाशवाणी रायपुर है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है प्रवीणा त्रिपाठी।

धरती के गर्भ से गायब होती जल की धारा, धरा से उजड़ती हरियाली, कटते वन और भूख, गर्मी और पानी की कमी से जूझता मानव, बदलते विश्व की यही कहानी अब नजर आती है मित्रों। ऐसे में सुकून के चंद पल संजोकर लाता है हमारा और आपका ये कार्यक्रम फोन।

0: फरमाइश और जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं प्रवीणा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल अभिवादन, नमस्कार। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं आज का ये पहला फोन कॉल। फोन इन फरमाइश।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: धमनी राजिम से श्यामल लाल धीवर बोल रहा हूँ जी। आपके यहाँ से ना आकाशवाणी रायपुर का न्यूज पुराना श्रोता हूँ जी।
0: श्यामल लाल धीवर जी, आपका इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद जी।
0: बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करता हूँ जी।
0: कहाँ पर खेती किसानी करते हैं आप?
1: अपन गाँव में।
0: अच्छा अच्छा, तो
1: यहाँ से नहीं, आकाशवाणी रायपुर का न्यूज पुराना श्रोता हूँ जी।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, आप बहुत पुराने समय से आकाशवाणी सुन रहे हैं
1: जी। सभी फरमाइशी कार्यक्रम में मेल भेजता हूँ जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, कार्यक्रम सुनने पे सुहागा है
0: जी। जी, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो बताइए कि आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मन की आंखें, रफी की आवाज है। दिल कहे रुक जा।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, के निवी श्रोता।
0: जी जी,
1: चौक गंडई पंडरिया।
0: जी पवन कुमार जी, आपका इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: और हम आपको तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करते हैं मैडम जी।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और साथ में आकाशवाणी रायपुर का दीवाना हूँ मैडम जी। आकाशवाणी रायपुर से गहरा संबंध है मेरा, बहुत पुराना।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा जानकर। आप इतने समय से आकाशवाणी रायपुर को सुन रहे हैं लगातार, तो कैसा लगता है आपको हमारे कार्यक्रम सुनकर?
1: और क्या बताऊं मैडम जी, इसके बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, धन्यवाद देता हूं आपको
0: जी।
1: और आकाशवाणी परिवार को इतने सुंदर सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम हम श्रोताओं तक आप लोग पहुँचाते हो।
0: जी जी, तो किस तरह के कार्यक्रम आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं?
1: सबसे अच्छा तो क्या है, मेरे को मेरे जीवन में परिवर्तन लाने का मुख्य कार्यक्रम है युवाणी कार्यक्रम मैडम जी। और युवाणी कार्यक्रम से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि मेरे को छत्तीसगढ़ी लिखना नहीं आता था, बोलना भी ढंग से नहीं आता था, हिंदी भी बोलने में कभी कभी आज भी मिस्टेक हो जाया करते हैं। लेकिन युवाणी की एक देन है और साथ में आकाशवाणी का भी देन है कि आज मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और सीखते आ रहा हूँ मैडम जी।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा जानकर। तो आज के कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: आज पहली बार शायद बजेगा फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में, मेरा अंदाज है एक आप आए बाहर आए फिल्म का गीत है, और उस गीत के बोल है मैडम जी, कोयल क्यों गाए बादल क्यों छाए वाले का गीत।

अश्वनी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: काफी मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है
1: जी
0: जी, तो कैसा है वहाँ का मौसम?
1: मौसम तो गर्मी ज्यादा है मैम जी, और हवा तूफान भी चल रहा है बहुत ज्यादा।
0: तो आपके वहाँ तो काफी पहाड़ी इलाका है और हरियाली भी बहुत ज्यादा रहती है।
1: वो तो करते जाते हैं मैम जी, कोई मान नहीं रहा था, हम तो पेड़ पौधा लगाते हैं मैम जी।
0: अरे वाह वाह, तो पेड़ पौधे हमें लगाना ही चाहिए क्योंकि हमारी प्रकृति को बचाना हमारा ही धर्म है, क्योंकि प्रकृति बची रहेगी तो शायद हम भी बचे रहेंगे
1: जी।
0: तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं लड़का का नाम लेना चाहता हूँ मैम।
0: बोलिए बताइए।
1: नितिन कुमार कोरचाम, फिल्म अब आपके पसंद के सुनवाई दी मैम
0: जी। तो आपको सुनवाते हैं हम अपनी पसंद का गीत, आपको फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, फोन इन फरमाइश।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जागेश्वर देवांगन बोल रहा हूँ।
0: जागेश्वर देवांगन जी, आपका इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद मैडम।
0: तो बताइए कि आज के कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनवा दें?
1: मुकद्दर का सिकंदर सुना दो। वो मुकद्दर
0: क्या करते हैं आप?
1: मेरा किसी कार्य है। और अभी तो मूंग लगा है। इसके बाद फिर धान का थरा डालेंगे।
0: हाँ हाँ, सही बात है।
1: और अभी हम बीच में इसी हफ्ता गए थे जगन्नाथपुरी घूमने के लिए। वो भी पहली बार एरोप्लेन से वहाँ घूम कर आए और आज आपके पास फोन लगा रहे हैं।
0: अच्छा, तो जागेश्वर जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, हाँ मैडम, मैं तेजूराम यादव बोल रहा हूँ, कन्हार गांव से।
0: तेजूराम यादव जी, कहाँ से बोल रहे हो आप?
1: कन्हार गांव, जिला कोंडा गांव।
0: कन्हार गांव कहाँ पड़ता है
1: ये? जिला कोंडा गांव में पड़ रहा है मैडम।
0: अच्छा, कोंडा गांव
1: जी।
0: क्या करते हैं आप?
1: बस मैडम, खेती किसानी है।
0: अच्छा, तो

0: क्या खेती किसानी में कुछ उपज आपने लगाई है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है?
1: बस गर्मी में मक्का लगाए थे मैडम, थोड़ा सा उसका अभी थोड़ा ही चल रहा है।
0: अच्छा, तो किस तरह का कार्यक्रम आपको हमारे केंद्र से सुनना अच्छा लगता है?
1: कार्यक्रम में फोन इन फरमाइश, उसके बाद वो क्या पत्रांकन कार्यक्रम भी अच्छा लगते हैं मैडम।
0: अच्छा, तो कभी आप पत्र डालते हैं हमारे कार्यक्रमों के लिए?
1: पत्र तो नहीं डालता हूँ लेकिन सुनता हूँ।
0: अच्छा, आप सुनते हैं। सुनना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें कुछ अच्छा सीखना है तो हमें अच्छा श्रोता बनना पड़ता है।
1: जी
0: जी,
1: जी
0: तो बताइए कि तेजुराम जी, आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मुस्कान फिल्म का कोई भी गाना सुनवा देना मैडम।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार, फोन इन फरमाइश।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव से मैडम जी योगेश सारा बोल रहा हूँ।
0: आपका हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी जी जी जी जी जी
0: बताइए योगेश जी अपने बारे में।
1: बस मैं पेशे से कृषक हूँ, साथ ही साथ रामायण मंडली का संचालन करता हूँ। और चूंकि जब भी मौका होता है, कोई कार्यक्रम होता है और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, और साथ साथ मैं आकाशवाणी का बहुत ही पुराना श्रोता रहा हूँ
0: जी।
1: मैं बचपन से ही आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। किसले कार्यक्रम और बालवाटी का कार्यक्रम से पत्र लिखने का सिलसिला जो जारी है वो अब तक चले आ रहा है। मेरी दिन की शुरुआत आकाशवाणी से और अंतिम भी आकाशवाणी से होता है।
0: अच्छा,
1: और आकाशवाणी मेरी जान है। और मैं कहूँ तो मैं सब कुछ मानता हूँ, पिता मानता हूँ, अपने मित्र मानता हूँ, और जो भी रास्ता मुझे बताया जाता है आकाशवाणी के माध्यम से, समसामयिक जानकारी, शिक्षाप्रद जानकारी, वो सब ग्रहण करने के साथ साथ लोगों को रेडियो से जोड़ने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं।
0: जी जी, बड़ा अच्छा लगा जानकर। तो योगेश जी, आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं बहुत ही प्यारा सा गीत है और फिल्म झुमरू का 1961 में रिलीज हुई है, स्वर्ग कुमार साहब।

ಕನ್ನಡೇ.

Capa.

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए प्यारे का तो फराए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ, मालिक राम सिन्हा बोला तो मैडम, बोगाखला मोहला मानपुर से।
0: मालिक राम सिन्हा जी, आपका हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद मैडम
0: जी। बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हाँ बस मैडम, किसानी करते हैं, साथ में टेलर काम भी करते हैं मैडम।
0: अच्छा, तो आपके यहाँ अभी मौसम कैसा है?
1: बहुत गर्मी है मैडम अभी तो।
0: बहुत गर्मी है मोहला मानपुर में तो काफी।

0: अच्छी जंगल है, वन संपदा है।
1: है मैडम, लेकिन अब ऐसा है कि भाई तीर्थ तार में तो है रुक रहा है और गर्मी भी लगता है मैडम, वो तो घर में रहने पे।
0: सही बात है।
1: तो पेड़ पौधे के पास में जाओगे ना तो सुकून भरे सांस मिलता है मैडम।
0: हाँ हाँ सही बोला आपने। पानी आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है?
1: हाँ मैडम, ऐसे बोर का साधन है, नलकूप के जरिया है, बोरिंग है, तालाब है, बांध भी है।
0: अच्छा अच्छा
1: है हमारे गांव में से साधन।
0: जी जी, तो बताइए मालिक राम जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: फूल बने अंगारे चरखा है मैडम।
0: तो आपको सुनवा रहे हैं मालिक राम जी आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।

श्रोताओं, ये था आज का फोन इन फरमाइश, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने की 29 मई शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 तक। चलते चलते बस यही कहेंगे कि प्यासे को पानी पिलाने, गर्मी से झुलसने वालों को दम भर छाया देने और पंछियों को दाना डालने से जो सुकून मिलेगा वो किसी और काम से शायद ही मिले। तो इंसान होने का धर्म निभाते जाइए और इस भयावह गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और आज के कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रवीणा त्रिपाठी को। नमस्कार।

कार्यक्रम फोन इन फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी प्रवीणा त्रिपाठी। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 10:55 होने को है। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन दिल्ली से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका, मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
13: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
2: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
13: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
2: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
13: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
2: अनिमेश जी,
7: सर मुझे तो सारे लोग

0: बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना। एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं

इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े
और इन छुट्टियों

0: किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
3: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप मन ले जुरिया के मोला बहुते खुशी होवत हे। देश के आने आने हिस्सा मा हमर देश के लोगन मन देश हित मा, समाज हित मा ऐसन अद्भुत काम करत हैं और जब उनखर विषय में सुनथन तो हमन ला एक नवा प्रेरणा मिलते। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं

0: एथलेटिक्स में देश के ऐसने उपलब्धि लेकर हूँ। कुछे दिन पाछू झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुईस। एमे करीबन 800 एथलीट मन हिस्सा लेन देश भर ले आए रहिन। ये दौरान चार आने आने आयोजन में चार राष्ट्रीय कीर्तिमान टूटीस। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, ये संगवारी मान आने आने श्रेणी में नवा कीर्तिमान बनाइन। मैं सबले पहली तो ये सब मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, एक आयोजन जेखर देश भर में बहुते चर्चा हुआ थे वो है 100 मीटर रेस, 100 मीटर के दौड़। खाली 2 दिन के भीतरी पुरुष 100 मीटर के दौड़ में राष्ट्रीय कीर्तिमान 3 घाव टूटिस। जेन 2 जन एथलीट मन ये कमाल दिखाए हैं वो हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं सोचे ये पई मन की बात में ये दोनों खिलाड़ी मन ले गोट करे जाए। अनिमेश जी जोहार, गुरिंदर वीर आप मन लग घलो जोहार, सत श्री अकाल।
1: जोहार सर।
2: जोहार सर।
0: अच्छा भैया, आप मन ता बहुते बड़का उपलब्धि पाए हो। आप मन के जोड़ी है घलो बड़का कमाल करे है। हमन संगीत मा ता जुगलबंदी देखे रहें, फिर चुनौती मा अब जुगलबंदी होते कि एक घाव एक जन चुनौती देते, फिर दूसर उही चुनौती ला उठा लेते, फिर तीसरैया घाव कर लेते। बहुते रोचक विषय रहे हैं आप मन के। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के सुनैया मन ला पता चले कि आप मन के विषय मा वो मन ला जानकारी होए। आप मन जेन पराक्रम करे हो ओखर पता चले।
1: जोहार सर, मोर नाव अनिमेश कुजूर। मैं 200 मीटर और 400 मीटर के राष्ट्रीय कीर्तिमान धारक हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के रहैया हूँ सर, और अभी मैं उड़ीसा ले खेलता हूँ। मैं पाछू बच्चर एशियाई पदक और विश्वविद्यालय खेलकूद पदक लेके आए हूँ और मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करे हूँ। जब मैं स्कूल ले पास हो रहे हूँ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर ले पास हुए हूँ और मैं पहली फुटबॉल खेलत रहे हूँ। अब मोर दाई दादा मन कोविड के बखत मोला थोर बहुत छूट देवत रहिन कि तैं बाहर जाके दौड़ ले खेल ले। ता जब कोविड खत्म होए लगीस तब मोर फुटबॉल के दोस्त मन मोला कहिन कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होइया है, तैं घलो भाग ले। अब मैं भाग ले और मोला पता नहीं रहीस कि वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर के चयन हुआ थे। मैं वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुए और आज मैं भारत के प्रतिनिधित्व करत हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में।
0: औ गुरिंदर वीर सिंह जी का है?
2: जोहार सर, मोर नाव गुरिंदर वीर है और मैं भारतीय जल सेना मा पैटी ऑफिसर हूँ और मैं भारत के सबसे तेज धावक हूँ। अभी मैं 100 मीटर मा 10.09 के राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाए हूँ और मैं पहली भारतीय हूँ जेन 10.1 के बाधा के नीचे भागे है। और मैं प्रयास करत हूँ कि मैं ट्रैक और वर्दी में घलो अपन देश के सेवा करो। मोर दादा और बाबा दोनों खेल कूद वाला रहिन। ता हमर भारत के संस्कृति है जब भी कोनो त्योहार आते जैसे दिवाली, जैसे नवा बछर, ता हम अपन घर के सफाई करथन। ता मैं अपन दादा के ट्रॉफी और पदक मन के सफाई करत रहो ता मोला वो बहुत अच्छा लागत रहीस। मैं बहुत खुश होवत रहो। त जब मैं कोनो ट्रॉफी साफ करत रहो तब मैं पूछत रहो कि भाई ये ट्रॉफी कहाँ जीते रहो, ये पदक कहाँ जीते रहो, ये फोटो कब के है। तब फिर वो मन मोला अपन कहानी सुनावत रहिन कि भाई मैं यहाँ खेले बर गेऊ, मैं ये राष्ट्रीय पदक जीतेऊ, मैं अपन टीम ला ए में जितायो। तब फिर मैं घलो वो मन ला बोलेओ कि भाई मैं घलो कोनो खेल खेलना चाहत हो। वो बिहनिया दौड़े बर जावत रहिन तब मैं उनला बोले हो भाई मोला घलो अपन संग ले जाय करो। तब मोला ले के जाय लगिन तब वो मन अपन खेल मा जिन सीखे रहिन वो मोला सिखाए लगिन, तब मोर रुचि बने लगीस। मैं उसेन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड टूटत देखे हो, एक मनोरंजक कहानी है। मैं टीवी देखत रहो तब मोर दाई टीवी ला बंद कर दीस

0: कि बेटा अभी पढ़े के बेरा हो गए है, तय पढ़। तब मैं कहो भाई ठीक है, आप मन मोला टीवी देखेला नहीं देवत हो। एक दिन ऐसे आही आप मन मोला टीवी मा खोज हो कि देखो वो गुरिंदर दौड़त है। तब मोला घलो खुशी होते जब मोर दाई मोला टीवी मा दौड़त देखते।
1: वाह वाह वाह, बहुत शानदार बात है भाई आप मन के।
0: हाँ जी, मध्यम वर्गीय परिवार है सर। फिर मोर दादा बाली बाल खेलत रहिन, घर के समस्या के चलत वो मन अपन खेलकूद छोड़ दिन। उखर जेन सपना रही गे रहीस तब वो मन मोर भीतर वो सपना देखिन, भाई मोर बेटा वो सपना पूरा करही। तब मैं उखर ले बात करेऊ, फिर सुनत रहो मिल्खा सी अतका मेहनत करत रहिन। मैं वो मन ला कहत रहो मैं घलो एक दिन आप मन के सपना पूरा करहू। तब बोलिन सपना पूरा ऐसे नहीं हुए, एकर बर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ते, मेहनत करना पड़ते। मिल्खा सिंह जी खून के उल्टी करत रहिन, धूप माँ भागत रहिन, पूरा पूरा दिन प्रशिक्षण करत रहिन। तब वो चीज मोला प्रेरित करत रहिस, मोर दादा मोला प्रेरित करत रहिन कि मैं भागू ता अपन देश खातिर, देश खातिर पदक लावाओ जीताओ। और ये घलो रहिस कि भाई जब मैं 100 मीटर के विधा के चयन करेऊ त सबो मन कहत रहिन कि भाई 100 ला झन कर, 100 भारतीय मन के विधा नहीं है, भारतीय मन के शरीर 100 मीटर बर नहीं बने हैं। तब मैं और मोर दादा हरदम बोलत रहन कि अभी गुरिंदर ए चयन करे है, हम एकर ले पाछू नहीं हटबो। जेन मन हमन ला बोलते कि भाई हम नहीं कर सकन, हम वो मन ला करके दिखाबो और ते करके दिखाबे, मोला तोर ऊपर भरोसा है। तब वो भरोसा जब मोर दादा मोर ऊपर करीस तब मैं वो भरोसा ला अपन हिम्मत बना के चले। और आज हर भारती बोलते कि भाई भारती दौड़ाओ।
1: देखो आप दोनों जन बहुते बड़का कमाल करे हो, और खाली 2 दिन के भीतरी आप दोनों जन 3 घाव राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हो। 100 मीटर के रेस में दौड़ना जैसे गुरिंदर वीर ह कहिस कि लोगन कहते कि भारत के लोगन मन के बदन ये काम बर हैच नहीं, अत का अलकर होवत हुए घलो आप मन काम करेओ। तो ये दोनों मन ले मैं जानना चाहूँ और मन की बात के सुनैया मन घलो सुनना चाहें कि कौन से जज्बा रहीस, का जिद रहीस, का सोचे रहे हो और कैसे करत रहे हो, ये कतका मुश्किल होते।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं शुरू में जब संघर्ष करत रहे हो सर, कईयों बार संसो में रहो कि मैं सही करत हो, मैं सही चयन करे हो, काहे कि हर बारी आप मन नहीं जीतो, कभू कभू आप मन सीखता हो। जब मैं हारे हो, जब मोर सही प्रदर्शन नहीं आईस, जब चोट लग जात रहीस तब मोर घर वाला मन मोला सहारा देन कि भई कुछ नहीं, एक दिन बुरा चल दीस, एक बछर बुरा चल दीस, तो एकर ले जिंदगी खराब नहीं होए, सपना देखना नहीं छोड़न। तब मोर प्रशिक्षा का घलो मोला ये सिखाइस कि अगर तय नहीं करबे तो कोनो अऊ नहीं कर पाही। तो ऐसने जब हमर समुदाय हमर तीर तखार के लोगन मन हमला उत्साहित करते ता हमर प्रोत्साहन नहीं टूटे।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मोला तो सबो मन बोलत रहिन जब मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करेऊ, तब मोला कहिन कि देख ये नवा क्षेत्र है तय कर पाबे कि नहीं। तब मैं कहूँ कि मैं ये क्षेत्र में घुस गए हों तक करवे करूँ। मोर दादा घलो हरदम मोला बोले कि तय ये क्षेत्र में घुसे हस तो कभू पाछू मुड़ के झन देखबे, काहे कि सोचते ता सबो मन कि ये करना है वो करना है, फिर करके बहुते कम झन दिखाते। तय बस यही क्षेत्र में घुसे हस तो यही मरेबे, यही माँ आगू बढ़बे। तोला सबो सुविधा सब जिनिस सहयोग हम करबो, पारिवारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सबो चीज हमन करबो। बस तैं मेहनत कर और भारत ल देखा कि भारतीय मन घलो भाग सकते, काहे कि लोगन मन मोला घलो कहत रहिन कि भारतीय मन के जींस ऐसे नहीं हैं कि वो मन 10 के नीचे या 10.1 के नीचे माँ भाग ले सकें या तेज दौड़ सकें। फिर अब हम दोनों जन सिद्ध करे हन कि भारतीय मन घलो कर सकते, ऐसा कोनो कठिन नहीं है हमन बर, हम घलो सब कुछ कर सकत हन। तसर ये सबो मोला बहुत प्रोत्साहित करते, और जैसे जैसे हम प्रशिक्षण करत हन हम और अपन समय सीमा ला तोड़त हन, और बाकी भारतीय मन ला घलो ये दिखत है कि भारतीय मन घलो कर सकत हैं, और हम और करबो सर अभी। अउ हम दोनों झन के चयन कॉमनवेल्थ गेम खातिर घलो होए हे, त उहां अवैया प्रतियोगिता में हम अउ अच्छा प्रदर्शन करबो।
1: अच्छा देखो, मोर मन में घलो एक कौतूहल है अउ लोगन मन ला घलो होही। मैं सुने हूँ कि आप दोनों झन अच्छा दोस्त घलो हो। आप दोनों झन कुछ ठाने रहे हो का कि तय मोर रिकॉर्ड तोड़ेस तो मैं तोर रिकॉर्ड तोड़ देवाऊँ का? पहली अनिमेश बताही।
2: सर जी, पहली रिकॉर्ड 10.18 के रहीस, जेन मोरेच रहीस, और फिर एला गुरिंदर वीर भैया हा सेमीफाइनल में तोड़ देस 10.17 करके, और मैं फिर ओला दूसर सेमीफाइनल में 10.15 करके तोड़ देऊँ। तो ओ बखत जब मोर सेमीफाइनल होइस तो हम दोनों झन खुश होइन कि चलो ठीक, आज रिकॉर्ड टूटिस और चलो हम दोनों झन तोड़ेन। काहे कि वो बखत प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदिता रही थे, फिर हम दोनों झन पहली स्थान के रखे रहन। एकर ले पहली हमन प्रतियोगिता बर सऊदी अरब घलो गए रहन, वहाँ हम दोनों झन एक कमरा में रहन। त हम दोनों वहाँ गोट करन कि भारत के दौड़ ला आगू लेके जाना है, और हमरे हाथ में है वो चीज, हम जेन करबो वो आने मन ला प्रोत्साहित करही।
1: गुरिंदर वीर का कहना चाहो?
0: हम दोनों झन निर्णय करे रहन, हम दोनों झन बने दौड़बो, त सर एक दूसर ला कभू जरूरत होते ता एक दूसर संग खड़े होथन। जैसे अभी रिकॉर्ड करे ले पहली जब मैं रिकॉर्ड करेव, फिर अनिमेश करीस, त जब हम वार्म अप करत रहन त मैं अनिमेश ला बतावत रहो कि अनिमेश वो ब्लॉक सही है, ओमे जाके बैठ, उहां ले छलांग लेबे, हमन वार्म अप यहाँ करबो, यहाँ वार्म अप सही होही, त एक दूसर के मदद करथन त दूसर मा घलो सुधार होते, हमन मा घलो सुधार होते। दोस्ती घलो चाही, फिर मैदान के बाहर है सर, प्रतियोगिता के बाहर है ता हम दोस्त हन। जब हम मैदान में जाथन ता एक दूसर के प्रतियोगी बन जाथन, त ये होते कि मैं एकल ले ज्यादा तेज भागू, मैं एकल ले तेज भागू।
1: देखो, आप मन जेन स्पर्धा करे हो ना, वो देश के मान बढ़ाए खातिर करे हो, देश ल भविष्य में ये ठिया तक पहुँचाए खातिर करे हो, और एक सकारात्मक भावना ले करे हो। और मैं मानता हूँ कि आपके ये जेन खेल भावना है, खेलना घलो है, एक दूसर ला चुनौती घलो देना है, और फिर आगू निकले के प्रयास करना है, और फिर आगू जाए बर एक दूसर के सहायता करना है। ये अद्भुत काम करे हो आप मन, मोर कोती ले आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना, और आप मन देश के नाव घलो उजर करहू, मुला पूरा विश्वास है आप मन ऐसने मेहनत करत रहो, बहुत प्रगति हो ही, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना।
2: धन्यवाद सर, आप मन के धन्यवाद,
1: गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, ये बखत देश के ज्यादातर हिस्सा मा बहुत गर्मी पड़त है, तेज घाम गर्म हवा, ऐसन मौसम मा अपन ध्यान रखना बहुते जरूरी है। पानी पियत रहो, घाम मा अगर निकलना पड़े तो थोकिन संभल के निकलाओ। ये दिशा मा सरकार के आने आने विभाग मन जिन दिशा निर्देश जारी करे हैं वो घलो भुलाहू जन। संगवारी हो, हमर यहाँ गर्मी ले लड़े के तरीका कईयों बार रसोई में घलो मिलते, आप मन घलो देखे हो, जैसे जैसे गर्मी बाढ़ते वैसे वैसे घर के रसोई के स्वाद बदलत जाते, रसोई के प्रकार बदल जाते, कहूँ मटका के पानी निकलते, कहूँ दही जमे लगते, तो कहूँ कच्चा आमा उबले लगते, और फिर शुरू होते देसी पेय के दौर। देसी पेय ले आप मन घलो परिचित हो, अगर आप मन उत्तर भारत में जाहू तब बने जगह आप मन ल मिलही आम पना, कच्चा आमा के स्वाद और गर्मी ले राहत घलो। पंजाब हरियाणा जाहू त लस्सी मिल जाही, बड़का गिलास वाला लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाना के संगवारी बन जाते, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू के शरबत, ओखर तो बाते का है, पेट घलो भरे ताकत घलो देवाए। कोंकड़ और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत मा पानकम, नीरमोर, संबारम और उड़ीसा मा बेलपना। वो खाली पेय नहीं, भारत के आने आने क्षेत्र के परंपरा के हिस्सा है और एमे एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के झलक घलो मिलते। और एक ठन बात खचित ध्यान रखू, एमे ले ज्यादातर जिनिस हमार अपन रसोई ले निकले है, हमार खेत खलिहान ले निकले है, कोनो बड़ा ब्रांडिंग नहीं है, फिर पीढ़ी मन के अनुभव एमे समाये हुए है। आप मन घलो गर्मी मा देशी पेय के खूबे आनंद लेवाओ। संगवारी हो, गर्मी के आतेच एक ठन औ चर्चा हर घर मा शुरू हो जाते और वो है आमा। आमा, आम चर्चा के विषय होते। भारत मा शायदे कोनो घर हो ही जिहां गर्मी मा आमा के बात नहीं होत होवे। हर इलाका के अपन आमा, अपन स्वाद, अपन सुगंध। महाराष्ट्र और कोंकण के हापुस, अल्फांसो, गुजरात के केसर, ये ता आमरस के जान हैं। उत्तर प्रदेश के दशहरी और मोर काशी के लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम के खास बात होते, पके के बाद घलो ओखर रंग कईयों बार हरच रही थे। बिहार के जरदालू, जेखर सुगंध दूरे चले चिन्हा जाए। चौसा, मालदा हर नाव के संग लोगन मन के सुरता जुड़ियाए है। दक्षिण भारत जावो तब बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल के हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सुवर्ण रेखा। माने ठिया बदलते, आमा के रंग रूप और ओखर स्वाद घलो बदल जाते। और संगवारी हो, आमा के ये यात्रा अब गांव ले वैश्विक बाजार तक घलो पहुँचा थे। आज मन की बात के माध्यम ले मैं आमा के पैदावार ले जुड़े अपन किसान भाई बहनी मन के प्रशंसा करूँ। आप मन देश के कृषि अर्थव्यवस्था खातिर आम किसान नहीं, बहुत विशेष हो, ऐसने छाए रहो। संगवारी हो, गर्मी के ये दिन मा ऐसे ता स्कूल मन के छुट्टी होते, फिर मैं एक ऐसन वर्ग के बात करूँ जेमे आप मनला प्रवेश लेके मन कर जाही। संगवारी हो, एक स्थिति के कल्पना करो, एक ऐसन स्कूल जिहां लइका मन आते, युवा मन आते और सियान मन घलो, जिहां कोनो फीस नहीं लगे, कोनो बड़का इमारत नहीं है, कोनो कक्षा घलो नहीं है और सबले रोचक बात उहां कक्षा नदिया में लगते। संगवारी हो, ये कोनो कहनी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा मा साजी वाला शेरिल जी ऐसने एक ठन तैराकी क्लब चलावत हैं। अब तक 15,000 ले ज्यादा लोगन मन यहाँ तौरना सीख चुके हैं। साजी जी ह दिव्यांग लयिका मन ला घलो तौरना सिखोए हैं। ये प्रयास के पाछू एक पीड़ा घलो छुपे है। कुछ बछर पाछू एक नाव दुर्घटना मा कईयों छात्र मन के मौत हो गए रहिस। ये घटना हा साजी जिला भीतरी तक झकझोर देस। वो मन सोचिन, अगर लयिका मन ला तौरना आवत होतीस त शायद कईयों जान बच जातीस। बस इहे ले शुरू होइस उनखर ये अभियान। संगवारी हो, साजी वाला शेरिल जी के जिंदगी हमन ला एक ठन बहुते बड़का सीख देते। सेवा करे बर बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होए, जरूरी होते एक अच्छा इरादा और सरलक करेगे प्रयास। एखरे दम्मा हजारों लोगन मन के जिंदगी मा बदलाव लाए जा सकत है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, पहाए दिन मा मुला यूरोप के नीदरलैंड जाए के मौका मिलिस। उहां मैं कईयों ठन बैठक में सम्मिलित होए। इही दौरान एक ऐसन क्षण आइस जेन हर भारतीय ल गर्व ले भर देस। नीदरलैंड मा आयोजित एक विशेष समारोह मा चोला काल के प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत ल वापस सौंपे गईस। ये कार्यक्रम मा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री घलो उपस्थित रहिन। ये ताम्र पट्टिका मन ल लेके मुला देश विदेश ले सरलग संदेशा मिलत हे।

लोगन मन खुशी व्यक्त करत हैं, गर्व व्यक्त करत हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में घलो एला लेके विशेष उत्साह है। संगवारी हो, ये ताम्र पट्टिका मन ला लेके लोगन में बने जिज्ञासा घलो है। यही पाए के आज मैं एखर ले जुड़े कुछ बात आप मन संग साझा करना चाहत हूँ। एमे 21 बड़ा और 3 छोटे ताम्र पट्टिका है। ये मुख्य रूप ले राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला के एक ठन वचन ला पूरा करे ले जुड़े है। एमे आने मंगलम गांव के एक बौद्ध बिहार ल दान दे के उल्लेख है। ये ताम्र पट्टिका मन मा चोला वंश के उपलब्धि के वर्णन घलो मिलते। एखर ले पता चलते कि चोला साम्राज्य के समुद्री शक्ति कतका जबर रहिस। दक्षिण पूर्व एशिया के देश मन संग इनखर संबंध के जानकारी घलो एमे मिलते। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति मा हम सबो मन ला बहुत गर्व है। संगवारी हो, हमर सरकार भारत के ऐसन अमूल्य धरोहर मन के संरक्षण खातिर सरलग प्रयास करत है। यही क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में घलो एक महत्वपूर्ण खोज होए है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिका मिले हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासन काल ले जुड़े माने जाते। विशेषज्ञ मन मानते कि ये शिलालेख 6वां-7वां सदी के है, माने 1400-1500 बछर जुन्ना ये ताम्र पट्टिका मन प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाखा मा लिखाए है। एमे वो बखत के शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी मिलते। संगवारी हो, हम भारतीय मन मा खगोल विज्ञान माने एस्ट्रोनॉमी ला लेके हरदम विशेष आकर्षण रहे है। हमर देश मा आज घलो कईयों सदी जुन्ना वेधशाला विद्यमान है। यहाँ अद्भुत गणितीय खोज होए है। नवचालन हो, पंचांग हो या हमर परब तिहार, ये सब के संबंध आगास और तारा मन ले रहे है। हमर यहाँ एस्ट्रोनॉमी हर पीढ़ी मा कौतूहल जगाए है। एला अन्वेषण बर प्रेरित करे है और आज के युवा मन मा घलो एला लेके बने उछाह दिखते। आजकल आप मन घलो देखत हो, देश भर मा एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी ले लोकप्रिय होवत है। बड़ा शहर ले छोटा कस्बा तक, स्कूल ले बगीचा तक इनखर गतिविधि देखेला मिलते। मुला बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलिस। यहाँ अवलोकन सत्र आयोजित करे जाते। ये संस्था है ग्रामीण क्षेत्र मा एस्ट्रोनॉमी ला लोकप्रिय बनाए के मिशन घलो शुरू करे है। खगोल मंडल नाव के एक टीम है 30 के एक बहुते नवाचारी पाठ्यक्रम शुरू करे है। संगवारी हो, रात मा तारा मन ला निहारना अपन आप मा अद्भुत अनुभव होते। एस्ट्रो केरला नाव के एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और कार्यशाला आयोजित करते। यहाँ युवा साथी मन टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स के उपयोग करना सीखते। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब है गिर के जंगल ले कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट आयोजित करे है। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था घलो एस्ट्रोनॉमी के सबले जुन्ना संस्थान मा एक है। यहाँ अवलोकन सुविधा के संगे संग किताब पुस्तकालय और टेलीस्कोप लाइब्रेरी के सुविधा घलो है। मैं आईसेक के घलो उल्लेख करना चाहूँ। ये एक विद्यार्थी मन द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है जिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब मनला आपस में जोड़ते। संगवारी हो, अपन शौक बर बखत निकालना और सरलग कुछ नवा सीखत रहना बहुते जरूरी है। मैं युवा मन ले आग्रह करूँ कि कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब ले खचित जुड़ें
और ये छुट्टी मन मा कोनो तारा घरला घलो देखेला खचित जावें। संगवारी हो, मन की बात कार्यक्रम ला जेन लोगन मन टीवी मा देखत हैं, मैं वो मन ले कहूँ एक वीडियो खचित देखाओ। ये वीडियो पाछू दिन बहुते चर्चा मा रहिस। एमे कुछ लोगन मन बहुत धैर्य ले, बहुत सावधानी ले एक गंगा डॉल्फिन ला बचाए की कोशिश करत हैं। आप मन ल ये जान के आश्चर्य हो ही, ये जम्मो प्रयास मा करीबन 13 घंटा लगिस और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गईस। संगवारी हो, एमे बहुते बड़का भूमिका रहिस भारत के पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के। ये घटना उत्तर प्रदेश के है। उहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गए रहिस। ऐसन बखत में नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बने ये एम्बुलेंस ओखर बर उम्मीद बन के पहुंचिस। फिर बहुते सावधानी ले ओला बाहर निकाले गईस, ओखर जांच करे गईस, ओखर इलाज करे गईस और ओखर बाद ओला सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दे गईस। एक रकम ले कहन त एक जिंदगी फिर अपन घर लहूट गईस। संगवारी हो, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एला एक चलत फिरत अस्पताल कस तैयार करे गए है। एमे डॉल्फिन ला सुरक्षित रखे के व्यवस्था है, ऑक्सीजन के सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। माने अगर कोनो डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी ले कट जाए त तुरते ओखर सहायता करे जा सकत है। संगवारी हो, जब हम गंगा डॉल्फिन ला बचाथन त हम खाली एक प्रजाति ला नहीं बचावन, हम गंगा के जैव विविधता ला बचाथन, नदी के पूरा जीवन तंत्र ला बचाथन और अपन अवैया पीढ़ी खातिर प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर घलो बचाथन। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, आप मन ले बहुत अकन लोगन के नदिया तरिया या कुआं के पानी ले जुड़े सुरता खचित हो ही। कोनो ला तरिया में तौरना याद हो ही, कोनो ला संगवारी मन संग तरिया के तीर में खेलना, कोनो ला वो माटी के सुगंध के सुरता हो ही। ननपन के ऐसन याद जिंदगी भर मन में बसे रही थे। संगवारी हो, ऐसने याद मन ला बचाए के एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला ले आघू में आए है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपन गांव के मनोरमा नदी ला देख के बहुत दुखी होवत रहिन। काहे कि जे नदी ला वो मन ननपन मा साफ और जीवंत देखे रहिन, बखत के संग वो नदी मा प्लास्टिक जमा होय लगिस, गंदगी बाढ़त चले जात रहिस। श्रीमान आकाश ह तय करिन कि शिकायत नहीं करही, एक नवा शुरुआत करही। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गईस। वो मन अपन संगवारी मन ला साथ लेन खाली जाल रहीस, रापा रहीस, झुहा रहीस और सबले बड़का ताकत रहीस कुछ बदले के संकल्प। ये युवा मन नदिया मा उतरत रहिन, जल कुंभी निकालत रहिन, प्लास्टिक और कचरा बाहर लावत रहिन। कईयों बार एक दिन मा 50-60 किलो तक कचरा नदी ले निकाले गईस। धीरे धीरे मनोरमा नदी के वो हिस्सा फिर साफ दिखे लागिस। तीर तखार के लोगन मन के ध्यान घलो ये काम कोती गईस। लोगन मन मा स्वच्छता ला लेके जागरूकता बाढ़िस। संगवारी हो, ऐसने एक प्रेरक कहनी गोवा ले घलो आघू आए है। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, फिर समाज भर काम करे के उनकर उछाह आज घलो वैसने हैं। उनला मड्डी तोलाब क्षेत्र मा पानी के समस्या बहुत परेशान करत रहिस। वो मन घलो समाधान खातिर काम शुरू करिन। बालकृष्ण जी हा पाइपलाइन बिछाए के काम मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन। एखर ले कईयों घर तक पानी पहुंचिस। जिन परिवार मन ला पानी खातिर रोज संघर्ष करना पड़त रहिस उनखर बर ये बहुत बड़ा राहत बनिस। संगवारी हो, पाछू महीना मुला एक बहुते अच्छा अनुभव होइस।
एकर

0: संबंध मन की बात ले घलो जुड़े हे। इही पाए के आज मैं एखर चर्चा आप मन ले करना चाहत हूँ। तमिलनाडु के नागर कोइल मा मोर भेंट एक शिक्षक ले होइस। करीबन 3 दशक पहली घलो मैं वो मन ले मिले रहे हूँ। मैं बात करत हूँ गिरिजा अम्मा जी के। ये भेंट के दौरान कुछ युवा विद्यार्थी मन घलो उनखर संग रहिन। संगवारी हो, गिरिजा अम्मा जी करीबन 15 स्कूल चलाते। एमे चेन्नई के जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनखर देशभक्ति के भावना हर भारतवासी ल प्रेरित करने वाला है। वो मन की बात ले प्रेरणा लेके देश के अनेक सैनिक मन बर योगदान के संकल्प लिए हैं। एखर बर वो मन अपन सब्बो स्कूल के विद्यार्थी मन ल प्रेरित करिन। वो मन लैका मन ले कहिन कि वो मन वीर जवान मन बर हर दिन 1 रुपया योगदान करें। माने एक बछर मा हर विद्यार्थी कोती ले 365 रुपया जमा होइस। ये नान नान योगदान ले करीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा होइस। गिरिजा अम्मा जी हा ये पूरा राशि के चेक मोला सौंपिन। वो मन ले गोटबात के दौरान मैं महसूस करें कि माँ भारती के प्रति उनखर समर्पण कत का गहिर है। पाछू बछर चेन्नई के पहली हिंदू विद्यालय है अपन 50 बछर पूरा करे है। देश के शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव ला आगू बढ़ाए मा ये स्कूल नेटवर्क के भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं एखर ले जुड़े सब्बो लोगन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ और वो विद्यार्थी मन के घलो विशेष सराहना करत हूँ जेन मन अपन वीर सैनिक मन खातिर योगदान दिए हैं। संगवारी हो, भारत के हर गांव में हर शहर में कुछ न कुछ ऐसन होवत है जेन हमन ल प्रेरणा देते। कईयों बार ये प्रयास मन के ज़्यादा चर्चा नहीं होवे, फिर जब हम इन ल जानथन तो ये विश्वास औ मजबूत होते कि देश अपन लोगन मन के शक्ति ले आघू बढ़त है। मोर आप मन ले आग्रह है अपन तीर तखार मा ऐसने प्रयास मन ल खचित देखाओ। जिन लोगन मन समाज खातिर अच्छा काम करत हैं वो मन ल चिन्हाओ, उनखर सराहना कराओ, वो मन ले सीखाओ और हो सके तो खुद घलो कोनो अच्छा काम ले जुड़ाओ। अवैया महीना मन की बात मा कुछ औ प्रेरक गाथा मन संग मैं फिर आप मन ले जुड़ू। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर्स यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मेहदी हसन।

0: मेहदी हसन की आवाज में अब सुनिए फैज अहमद फैज की ये गजल।
1: हुआ जो थी

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे कलाकार थी मेहदी हसन। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आप मन के गीत।

संगवारी हो सबले पहली आप मन ला सुनवावत हन होरीलाल सोनकर और ओखर संगवारी मन के गाय गीत ला। ईमेल और चिट्ठी हमार ए संगवारी मन भेजे हैं पिपरियाली कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, फिंगेश्वरली राम अवतार यादव, शुभम सौरभ और चंचल, रोहासीली डगेसर साहू, घनश्याम साहू, नूतन साहू, राजिमली समीलाल थीवर, मुन्नी गोविंद, ममता कुणाल, फुलजर घटारानीली, योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी मुस्कान साहू, खमार मुराली, सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी गोस्वामी, बोइना पार लाटा बोडली, देव नारायण साहू, योगिता गीतिका चंचल रानी, बागबारा भदरसीली, पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, बगेरा दुर्गली, संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ सौर्य नामदेव, पुतकी कला कवरधाली, राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर, नयन पांडे, रानीगांव नगरीली, खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम सेजल साहू, तखतपुरली मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, लेवैली गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास रानी मानिकपुरी, दत्रेंगीले भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, भानबेड़ा मुंगवाले, भारत राम पडोटी, जयंती, हेमंत उमंग पडोटी, रिंगनीले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मेघापा चिल्फीली, राम कुशल पटेल, संतोषी दीपांशु, दिव्या पटेल, सरगांवली चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष और विनीत कुमार पटवा।

कार्यक्रम के अगला गीतला स्वर देवथे जय नारायण किशोर और खर संगवारी मन फरमाइश आप सब छन की लच्छन पुल्ली रामजी साहू जीवन लाल रिजक निम्मी शिवम रसीडाले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार संध्या रोहासीले मुकेश नंदनी मनीष मयंक बिलासपुरले मुकेश गोस्वामी आशी गोस्वामी बिलासपुरले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार बाघामुड़ाले प्रज्ञानंद देवांगन नंदनी प्रकाश देवांगन कोटनापानी डोंगरगढ़ले कैलाश कुमार मंडावी लीलेश्वरी रूपेश कुमार अवगरिमा मुंगेरीले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी कवर्धाले अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी खुशांत निशांत साहू अडार नानघाटले माखन वर्मा चांदनी गोपी भूपेश वर्मा बिलाईगढ़ले जगदीश देवांगन पुष्पांजलि जया जानवी लघान पंडरियाली उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती पोटिया कलादुर्ग ले संजय साहू सुजाता शशांक सीमा साहू भाटापराले हिमकेश्वर साहू कर्णन राहुल चंपा साहू भाटापराले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत ढेको विनय ठाकुर पथरियाली चंदूलाल सिंगरोल नारायणी नोमेश बिलाईगढ़ले खीकराम रेणु देवांगन रजनी औ प्रियंका रुद्रीले चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू भलेसर महासमुंदले बलराम सेन इंदु सेन छगन सिन्हा और द्वारिका सिन्हा

मोहिनी साहू और अखर संगवारी मन के गाए गीत सुने पर चिट्ठी और ईमेल आप सब छन भेजे हो। राजनांदगांव ले बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा ले मिलिंद कुमार प्रणय कुमार रुद्रांश देवेंद्र प्रताप लोरमी तिलकपुर ले चंद कुमार मरावी चंद्रेश मालती मयंक भीम कोजली जी एल साहू सरोज छोटी पिंकी लाहौदले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार समीर पटेल बालोदली चिंताराम यादव रवि प्रकाश यादव टिकरी पारली जागेश्वर देवांगन कचरीबाई जयश्री ऋषभ रेंगाखार कबीरधामली मनसाराम पटेल बुधियाबाई भानु प्रताप पटेल भीमकोज दरपोंगीली संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी चिरमिरी कुरासियाली इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ राम सहोदय राजनांदगांवली योगेश शर्वा आशा नीरज नीलेश रायपुर ले पवन कुमार साहू क्रांति धर सिंहवाली छेदूलाल यादव सीता अर्चना अरुणा यादव मुलमुला बेमित्राले शेखन राम साहू अमरिकाबाई लेखनी और रोशनी यही रहे नेत्राम साहू मनीराम लक्ष्मी बिंदु देवभोगले निकुंज तिवारी लाची ममता तिवारी कोर्दाले कलीराम यादव छतराम शेषराम यादव कन्नीवाड़ाले देवेंद्र कुमार सोनवानी लक्ष्मी देवी आशीष कुमार टेमरे राहुल कुमार साहू बिलाईले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ वर्मा संजय प्रधान रायपुरले राजेश अंबादे शशिकला अंबादे पूजा अंबादे

कार्यक्रम के अगला गीत ल स्वर्दी वे विमला निषाद और उखर संगवारी मन सुनना चाहत हो आप सब जन नवागढ़ कटैली नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत शारदा जीत वर्मा अही वारली पोषण बंझोर चंद्रकिरण प्रीति छाया बंझोर नवापारा समडिल्ली मुकेश गुप्ता आर्यनगर कोहका भिलाईली उत्तम सिंह जंघेल मोरस सरगुजाली जीवधन सिंह पैकरा धुरनी करिश्मा कलेशर कांकेली असाड़ू राम निषाद खिलावन ऋषभ निषाद महासमुंडली विष्णुदास नर्मदा हिरमणि दीपक लक्ष्मीदास अमरपुरली दिशा दिव्यांश श्रीवास्तव जयमा रेडियो श्रोता संघ गाता पारली गणेश्वरी साहू ओम प्रभा बिंदेश्वरी नागेश्वरी साहू बेमित्राले पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या सारथी हिंगोलीली शाहजी बोरखे नेहा हनुमान उत्तम मोपका भाटा पारली दयालु राम वर्मा तेज राम वर्मा सहदेव राम गरियाबंदे गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांति अर्चना धनंजय मिश्रा शिक्षक नगर दुर्गली राकेश वर्मा सचिन पाणी वर्मा बठेनाले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति रेखा चट्टोताली सुजान वर्मा सोहात्रा वर्मा आयुषी अवकृत वर्मा रायपुरली मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी शीतला नगर दुर्गली शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर गुरामीली पीयूष नेताम जोहत्रीबाई और कोमल नेताम

कार्यक्रम के आखिरी गीत ला सर देवे थे सुनील बनसोड़ और खर संगवारी मन ईमेल और चिट्ठी हमारे संगवारी मन भेजे हैं माठा पारा ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार झावेंद्र कुमार वर्मा सोनाडी ले सुब्रत चौधरी लच्छनपुर ले धनक्ष आरो साहू भवरपुर ले राधेश्याम चंपा जगदीश शीतलानगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर अशरफ खान अयाज अल्फीज खान बरेटोला ले नमित कुमार मुरली पीहू प्रियंका बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला प्रजापति सिंहावले मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु अंकित शनिचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन कल्पना सिया जैन सौरभ जैन सिमगाली रमेश कुमार यादव माया रिंकू सन्नी यादव खट्टीले सुभाष शर्मा छाया शर्मा प्रेमलता खुशबू खट्टीले पुष्पेंद्र मिश्रा प्रमिला कमलेश विजिता मिश्रा चनागावले कोमल सोरी सोहन यादव आशीष और नंदलाल मरकाम दरचुरा ले ददुआ साहू भूरी रेखा मोतीलाल साहू डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल कजभिये राधिका अनिष्का तन्मय कजभिये दतरंगी ले दशरथ प्रसाद मनोज कुमार साहू भाटापारा ले मिलौतास कुलदीप संतोष संदीप अजीत मगरलोड ले पुनराम साहू राज तेजस्वरी साहू राजश्री कोटा रायपुर ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा अवधनेश सेन पटपर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार ध्रुव कविता और जयंती ध्रुव रायपुर ले योगिता वर्मा रुचि खुशी ओजल वर्मा देवरी भाटापारा रे कल्लू लाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री।

0: आप मन के गीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म का गीत आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, भरत व्यास के बोल वसंत देसाई का संगीत।

वल्लाह क्या बात है। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। प्रेम धवन के बोल, रोशन का संगीत।

बेदर्द ज़माना क्या जाने। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, भरत व्यास के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात 8 बजे। अनुगूंज रात 9:30 पर रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। कलाकार होंगी ए ये राय। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर बिंदिया कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और सुनिएगा गीतों भरी कहानी हौसलों के पंख। आलेख और वाचन गीता शर्मा का, संपादन पीर भानसाहू का और प्रस्तुति होगी रमा शंकर की। युववाणी शाम 5:10 पर आजकल का विषय होगा कठिन रास्ते ही आसान जिंदगी बनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम और आप सुनेंगे युगल गीत।

जिले की चिट्ठी शाम 6:05 पर आज आप सुनेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी आलेख संजय माणिकपुरी का होगा।

शाम 6:30 पर कानून की बात में घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता इस विषय पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री मयंक सिंह ठाकुर से ली गई भेंट वार्ता आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी रायपुर की होगी।

शाम 7:21 पर चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा प्रमाणित बीज का उत्पादन भविष्य की आय का साधन। और आज की सलाह में लागत और श्रम बचाने के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाएं, इस विषय पर डॉक्टर आर के नायक प्राध्यापक कृषि मशीनरी और शक्ति अभियांत्रिकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर देंगे जानकारी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम।

5 बजे चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं, दोपहर 2 बजे 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 9:15 पर। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

बिंदिया सुन रहे मेरी प्यारी सखियों को गीता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, इन दिनों तेज धूप और गर्मी की तपिश अपने चरम बिंदु पर है, तो वहीं गन्ने का रस, छाछ, लस्सी और आम रस की ठंडी ठंडी तरावत हमें राहत भी दिला रही है। बहनों, इन दिनों सबसे ज्यादा हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और हाँ, स्वास्थ्य से ही जुड़ी एक बात और, आज यानी 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि तंबाकू सेवन के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों जैसे मुंह के कैंसर, फेफड़े के रोग से आम लोगों को सचेत करना, तंबाकू यानी टोबैको फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम करता है, इससे हृदय रोग या स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। तो बहनों, 100 बात की एक बात है, यानी स्वास्थ्य ही जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नशे से दूर स्वस्थ जीवन शैली और खान पान को अपनाएं, पौष्टिक, सुपाच्य और बलवर्धक भोजन का सेवन करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और बहनों, अब चलते हैं आज के उस क्रम की ओर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ बहनों, वो क्रम है गीतों भरी कहानी। आज इसमें सुनिए कहानी हौसलों के पंख। आलेख और वाचन स्वर है गीता शर्मा का यानी मेरा, संपादन वीरभान साहू का और प्रस्तुत करता है रमा शंकर।

कोमल नाम था उसका। हाँ, कोमल ही तो थी वो। कुछ नाम का असर था और कुछ हद से ज्यादा नाज उठाने वाले पति राघव ने तो उसे नाजुक ही बना दिया था। और जब जिंदगी खुद आगे बढ़ बढ़ कर कदम चूमे तो कोई क्यों कर भला दुनियादारी की जहमत उठाए। कोमल भी कोमल ही बनी रह गई। जिंदगी की अपनी रफ्तार थी, सांसों की अपनी रवानगी थी, हवाओं का अपना नशा था और प्यार में वक्त कैसे बीतता चला गया कोमल को पता ही नहीं चला।

समय ने सौगात के रूप में उसकी गोद में त्रिशा और कृति को डाल दिया, लेकिन जीवन में खुशी और सुख शक्कर की डली की मानिंद होती है, जो उम्र के प्याले में कभी एक सार नहीं खुलती। मीठा मीठा एक सांस में पी गई कोमल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उम्र का बचा हुआ तरल इतना तीखा भी हो सकता है। वक्त इतना भी मासूम नहीं होता जितना वो दिखता है, और एक दिन दिख ही गया उसका क्रूर चेहरा। राघव की बाइक घर लौटते समय एक ट्रक से टकरा गई और वह दूर जा गिरे। कोमल बदहवास सी घर से हॉस्पिटल भागी। हेलमेट पहनने के कारण राघव को सिर पर चोट तो नहीं आई, मगर पैरों में काफी चोटें आईं। कोमल रोती हुई कभी मासूम बेटियों को देखती तो कभी राघव को।

अब एक तरफ राघव के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तो दूसरी तरफ अपनी बेटियों के साथ एक घर का खर्च भी चलाना था उसे। कोमल, जिसने कभी कुछ ऐसा सीखा ही नहीं था जो जीवन यापन का जरिया बन सके, उसके हर नाज उठाने वाले राघव आज खुद लाचार हो गए थे। कैसे वह इतना कुछ संभाल पाएगी? हालांकि कंपनी ने राघव के इलाज के लिए मदद की, पर केवल इससे ही सारी जरूरतें तो पूरी नहीं होंगी। वह इसी सोच में डूबी थी कि अचानक पड़ोस की कांता ने उसे आवाज दी और कहा, कोमल, आज मुझे काम से आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम त्रिशा और कृति के साथ मेरे बच्चों को भी शाम तक देख लेना। दिन भर उन बच्चों को अपनी दोनों बेटियों के साथ घुमाते खिलाते कोमल मन ही मन कुछ तय कर रही थी और धीरे से वो मुस्कुरा उठी।

कांता के लौटने पर उसने कांता से कहा कि वह उसके बच्चों के साथ साथ ऐसे दूसरे बच्चों को भी बहुत ही प्यार और दुलार के साथ अपने पास रखेगी जिनके माता पिता बाहर काम में जाते हैं। बदले में जो उचित लगे वो धनराशि उसे दे दी जाए। देखते ही देखते पड़ोस के कई बच्चों को उनकी कामकाजी माओं ने कोमल के पास ही रखना तय किया। घर के सारे काम काज निपटा कर बच्चों की भी अच्छी तरह देखरेख करती कोमल को अब थोड़ा आर्थिक सहारा भी मिल गया। त्रिशा और कृति भी अब बेहद समझदार हो गई थीं। जब वह राघव को देखने हॉस्पिटल जाती तब तक दोनों बेटियां घर और उन छोटे बच्चों का पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और जिंदगी थोड़ा मुस्कुराने भी लगी।

समय को जैसे पंख लग गए, दिन और रात कैसे बीते पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने कहा कि राघव कुछ दिनों में चलने लगेंगे, तो खुशी के कारण कोमल की आंखों से झरने फूट पड़े। उसे रोता देख राघव ने कहा, मत रो कोमल, मैंने ही तो तुम्हें कभी कुछ करने नहीं दिया, और तुमने इतने कठिन समय में कैसे सब संभाला होगा। कोमल राघव को लेकर घर आ रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आज अगर वह किसी से सहारा मांगती तो लोग या रिश्तेदार जीने के लिए जरूरी सामान तो दे देते, पर वह अपने बच्चों के शौक और खुशियों को कैसे पूरा करती। आज किसी के एहसान के बोझ तले दबने की बजाय कोमल ने अपनी राह खुद चुनी और जीवन में अपने दम पर कामयाबी का रास्ता चुना।

बहनों, अभी आपने गीतों भरी कहानी सुनी, हौसलों के पंख। आलेख और वाचन था गीता शर्मा का, संपादन वीरभान साहू का और प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर। बहनों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने बात की थी ना कि स्वास्थ्य के प्रति हमें सजग रहना है और इन दिनों सबसे ज़्यादा हमें हीट वेव से बच के रहना है। हीट वेव मतलब गर्म हवाओं का दौर, और इससे खुद को बचाना है क्योंकि इसका शरीर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन दिनों 12 से 3 बजे के बीच दोपहर में अनावश्यक रूप से घर से निकलने से बचा जाए, और समय समय पर तरल पदार्थों का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होगा। साथ ही बहनों, इन दिनों नवजात शिशु की देखभाल पर भी बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। बहुत तेज गर्मी है, ये सोचकर बच्चे को अतिरिक्त पानी ना पिलाएं, बल्कि बार बार स्तनपान से ही उसका हाइड्रेशन बना रहता है। बच्चे को हल्के सूती कपड़े पहनाएं, और ये ध्यान रखें उसका कमरा ठंडा तो रहे लेकिन एसी या कूलर की सीधी हवा बच्चे के ऊपर ना पड़े। बच्चे की मालिश के लिए नारियल तेल का उपयोग करें, ये उसके शरीर को ठंडा रखता है, और उसे बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान कराएं। तो बहनों, अपना और अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखें। और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें अपने पत्रों के जरिए जरूर प्रेषित करें अपने विचार। हमारा पता है आपकी चिट्ठी, बिंदिया अनुभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर 492001। ईमेल आईडी है aiarapkichitthi11@gmail.com। तो अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर, तो मुझे दीजिए अनुमति आप सभी को अपनी सखी गीता शर्मा का प्यार भरा

बिंदिया, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत आवाज़ें अभिजीत और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ें, जतिन ललित का संगीत, गीतकार आनंद बख्शी।

आर्या पारिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें अभिजीत और साधना सरगम की, गीतकार इंदिवर, संगीत विजू शाह का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2:15 होने को है। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी,

0: खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय

0: विविधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तरकीब का गीत, आवाज़ें जगजीत सिंह और अलका याग्निक की, निदा फाजली के बोल हैं, संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जत हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: साहिबा, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रही हैं अनुराधा पौडवाल और येसुदास की आवाज में। आनंद बख्शी की बोल, शिव हरि।

अग्नि साक्षी इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। समीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे ही हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।
1: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांबरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने आज कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे एक श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 8958757335 और 82183268। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में IPL

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस फ्रीक्वेंसी पर अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 3:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो किड्स, मगर उससे पहले समय है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा तराना। फिल्म है सपनों का सौदागर, गीत को गाया मुकेश शारदा और साथियों ने।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रबानी। मेरे साथ है मेरे दोस्त
1: रूहानी,
2: तस्मिया चौधरी,
3: नबीहा चौधरी,
4: पीयू शर्मा,
5: कुहू शर्मा,
6: रिया वर्मा,
7: युविका,
8: कुसागर सिंह,
9: आशमन खुराना।
0: और आज हम आप सबके लिए लाए हैं ढेर सारी बातें, कहानियाँ, किस्से और खूब सारी मस्ती। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले क्यों ना पीहू और कुहू से एक मस्त संगीत सुना जाए। पीहू और कुहू, आज इस प्रोग्राम के लिए क्या लेके आए हो दोनों?
4: हम एक देशभक्ति गीत लाए हैं जिसका नाम है वंदे मातरम।
0: अरे वाह, सुना दो फिर।

0: Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
1: अरे वाह, पीहू और कुहू ने तो सच में बहुत ही अच्छा गाया।
2: मेरे को तो मजा आ गया,
1: बहुत सुरीला था।
3: हाँ, बहुत अच्छा था।
1: तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने पे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण एक ऐसा धरोहर है जो हमने हमारी अगली पीढ़ी से उधार पे लिया है, ना कि पिछली पीढ़ी से वसीहत में। क्यों तस्मीहा?
4: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो मैं पर्यावरण पर आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन दूं?
1: अरे हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं।
4: हमारा पर्यावरण हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। इसमें पेड़ पौधे, पानी, हवा, जानवर और मिट्टी शामिल है। अगर ये सभी चीजें साफ और सुरक्षित रहेंगी, तभी हम भी स्वच्छ और खुश रह पाएंगे। लेकिन आज हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई और पानी की बर्बादी, ये सब मिलकर पृथ्वी को बीमार बना रहा है। प्लास्टिक ऐसा कचरा है जो ना मिटता है न सड़ता है।
1: हाँ तस्मीहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। पेड़ लगाना एक बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ उतनी साफ हवा, और जितनी साफ हवा उतनी अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ काट पाएंगे। क्यों रूहानी?
3: बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आप सबको एक कविता सुनाना चाहता हूँ।
1: हाँ अश्मन, सुनाओ।
3: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, धरती को सुंदर बनाओ। फल फूल वो देते हैं, छाया भी ये देते हैं।

0: जिन पर रहते हैं सुंदर घोंसले बनाते हैं, हवा शुद्ध करते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं, बारिश भी ये लाते हैं, धरती को हरा बनाते हैं। पेड़ हमारे साथ निभाते, जीवन को खुशहाल बनाते। आओ मिलकर हम सब आज पेड़ लगाएं सबके पास, हर बच्चा एक पेड़ लगाए, धरती माँ मुस्काए जाए।
1: अरे वाह आशुमन, इस कविता से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
2: आशुमन तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई।
3: हाँ आशुमन तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अच्छा मैं भी पर्यावरण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
1: हाँ हाँ नबीहा बताओ।
3: आज जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हमें और भी अधिक जिम्मेदारी से अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इसके लिए सबसे पहला कदम है पर्यावरण को स्वच्छ बनाना। हमें अपने आसपास सफाई रखनी होगी, कूड़े को सही जगह फेंकना होगा और लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वच्छ वातावरण हमें न केवल सुंदरता देता है बल्कि बीमारियों से भी बचाता है।
1: अरे वाह बिल्कुल सही। अच्छा एक पॉइंट तो हम सब भूल ही रहे हैं, हमें रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्लास्टिक बॉटल, बॉक्सेस या टॉयज को हम दोबारा रीयूज या रिसाइकल नहीं करेंगे, तब तक वो धरती पे जंक की तरह इकट्ठे होते जाएंगे और धरती का और बुरा हाल हो जाएगा।
3: और एक बात और है, हमें प्लास्टिक के थैले भी यूज नहीं करने चाहिए, कपड़े या जूट के करने चाहिए।
1: करेक्ट। अब पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण को बचाने का एक और तरीका है साइकिल चलाना, जो कि हमारी सेहत में भी बहुत हेल्प करता है।
2: अब मैं साइकिल चलाने के कुछ फायदे बताऊं?
1: बताओ।
2: साइकिल चलाने से कार्डियो वर्कआउट होता है जो दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाता है, और रेगुलर साइकिलिंग करने से कैलोरीज बर्न भी होती हैं, और एक्सरसाइज के दौरान एंडोफ्रेंस और रिलीज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं।
4: मैं एक बात बताऊं?
1: हाँ हाँ रूहानी बताओ।
4: साइकिल चलाना हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी होता है, ना फ्यूल का खर्चा और ना ही मेंटेनेंस की टेंशन। एक बार इन्वेस्ट करो और लंबे समय तक पैसे की बचत करो।
1: अरे वाह बिल्कुल सही। साथ ही साथ मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं भी बताऊं क्या?
2: हाँ रबानी बताओ।
1: साइकिल हमें हमारे दोस्तों के साथ बहुत वक्त स्पेंड करने का टाइम देती है। कई बार दोस्तों के साथ रोज शाम को साइकिलिंग जाने से स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और साइकिल चलाते चलाते जो हवा मिलती है उससे फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस भी तो मिलती है।
2: हाँ ये बात तो तुमने बहुत सही कही।
1: अच्छा तो मुझे ये बताओ कि रोज शाम को तो अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग कौन कौन जाता है?
4: मैं जाती हूँ।
1: अच्छा रूहानी, अच्छा आसमान, अच्छा नबीहा, तो फिर एक दिन मिलके सारे रेस लगाएंगे।
3: ओके। हाँ बहुत मजा आएगा।
4: हाँ
1: अरे बहुत सारी बातें हो गई, क्यों ना अब एक गीत सुना जाए।
4: बिल्कुल।
0: हाँ, हाँ, हाँ, जरूर, बिल्कुल जरूर,
4: जरूर।

0: पहले आओ ना।
1: अरे वाह, ये गीत तो बहुत अच्छा था।
2: मेरे को तो इतना अच्छा लगा।
3: बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा
1: मन
3: था।
1: खुश कर दिया सुनने के बाद।
2: हाँ, बहुत मस्त था।
1: अच्छा, बहुत बातें हो गई, हमने साइकिल भी चला ली और गीत भी सुन लिया। अब बारी है थोड़े जीके की क्विज की। क्यों, पूछूं सबसे?
4: पूछो।
1: रूहानी, तस्मिया और नबीहा, मैं तुम तीनों को नाम लेके पूछूंगी, लेकिन उससे पहले रिया, कुशाग्र, समृद्धि और युविका, तुम चारों मुझे जवाब दोगे, क्योंकि बहुत देर से देख रही हूँ तुम सब बिल्कुल चुप चुप बैठे हो। तो चलो शुरू करते हैं। समृद्धि, तुम बताओ हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
5: मोर।
1: अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा रिया, तुम बताओ हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है?
3: कमल का फूल।
1: अरे वाह, ये भी बिल्कुल सही। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
6: मैं बताऊं।
1: अच्छा, कोई भी एक बता दो।
6: क्रिकेट।
1: अरे नहीं, क्रिकेट तो नहीं है, माना वो सबका फेवरेट है, लेकिन गलत जवाब। छुपन छुपाई भी नहीं है।
2: मैं बताऊं?
1: अच्छा रूहानी, तुम बताओ।
7: हॉकी।
1: अरे वाह, सही जवाब। अभी किसी और के पास कोई सवाल है जो मुझसे पूछे?
2: मैं पूछूं?
1: पूछो रूहानी।
2: ऐसा कौन सा पेड़ है जो हमारा इंडिया का नेशनल पेड़ माना जाता है?
7: ये मैं बताऊं?
1: हाँ नबीहा, बताओ।
7: इसका उत्तर है बैनियन ट्री।
1: अरे वाह, रूहानी बताओ।
2: करेक्ट है।
1: तुमने तो ये उत्तर बहुत ही जल्दी दे दिया, क्या बात है, पढ़ के आई थी क्या?
7: नहीं नहीं, पहले भी तो पढ़ाया जाता है ना।
1: हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दूध कौन कौन पीता है? क्योंकि मुझे ये तो समझ आ रहा है कि जीके सबका तेज है।
8: मैं पीती हूँ।
1: अरे बाप रे, दूध तो सभी पीते हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे तो बचपन में दूध पीना पसंद नहीं था, लेकिन मम्मी पिला देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पसंद आना शुरू हो गया है, तो अब दिन के 2 ग्लास तो फिक्स है
2: मेरे भी।
1: अच्छा मेरे को अब ये कौन बताएगा कि दूध क्यों पीते हैं?
6: मैं बताती हूँ।
1: अच्छा युविका बताओ।
6: हमको दूध इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जो हमारी बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं।
1: अरे वाह, बिल्कुल सही।
9: हाँ, और साथ ही साथ दूध एक संपूर्ण आहार है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। और कुछ बच्चे मुझे दूध पीने के फायदे बता सकते हैं?
1: मैं बताऊं?
9: बताओ रबानी।
1: अरे एक तो सबसे बेसिक है, दूध हमारी एनर्जी बूस्ट करता है और हमारे दिमाग को भी तेज करता है, क्योंकि अभी जो मैंने जीके ये ली ना, ये सब दूध का ही असर है। रूहानी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कुछ बताना चाह रही हो, बताओ भी।
2: दूध पीने से दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है जो हमारी नींद को इम्प्रूव करता है।
1: अरे वाह, इसका मतलब दूध पीने से नींद भी बढ़िया आएगी अब।
9: अब तो रोज दूध पीना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ,
10: मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ।
1: बताओ आसमान।
10: दूध हमें एनर्जी देती है।
3: दूध हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है।
1: अरे वाह रिया, ये तो सच में बहुत जरूरी था।
9: कब से हम बातें कर रहे हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं।
1: हाँ हाँ जरूर,
2: मेरे को तो वैसे ही बड़ा मजा आता है गाना सुनने में।

0: अरे वाह, ये गाना सुन के तो बहुत मजा आ गया।
1: हाँ, बहुत मजा आया।
2: अब तुम बताओ सौम्या, तुम क्या बताना चाहती हो?
3: क्या आपको बचपन की वो सुबह याद है जब घर में दादाजी के पुराने ट्रांजिस्टर से आती भजनों की आवाज से दिन शुरू होता था, या फिर क्रिकेट मैच की वो कमेंट्री जिस पे पूरा मोहल्ला कान लगाए बैठा रहता था। आज हम बात करने वाले हैं उसी जादू की, एक ऐसे सुपर हीरो की जिसके पास कोई चमचमाती स्क्रीन नहीं, फिर भी हमारी कल्पनाओं में रंग भर देते हैं। जी हाँ, आज की कहानी है रेडियो और हमारी अपनी आकाशवाणी की।

जब टीवी और इंटरनेट नहीं थे तब यही रेडियो दुनिया से जुड़ने का एक लौती तार थी। टीवी या मोबाइल हमें सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन रेडियो हमसे महसूस करवाते हैं। जब रेडियो पर कोई कहानी या नाटक आता है तो हमारा दिमाग खुद ही उसका सेट, उसके किरदार और उसके रंग तय करता है। इसलिए रेडियो का जादू कभी फीका नहीं पड़ता, क्योंकि असली स्क्रीन तो हमारे

स्टूडियो की शुरुआत। जब कोई आरजे या अनाउंसर रेडियो स्टेशन के माइक्रोफोन में बोलता है तो माइक उस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ट्रांसमीटर का कमाल, ये काम कैसे करता है? अब आप सोचेंगे कि बिना किसी तार के सैकड़ों मीटर दूर बैठा एक इंसान हमारे कानों में कैसे बोलता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। रेडियो का पूरा खेल तीन चीजों पर टिका है, आवाज, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो माइक उस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। आपका रेडियो, आपके घर में रखा रेडियो या आपकी कार का एक स्टीरियो एक रिसीवर है। इसका एंटीना हवा में मौजूद उन रेडियो तरंगों को पकड़ता है, उन्हें वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और स्पीकर के जरिए दोबारा आवाज बना देता है। और ये सब इतना तेजी से होता है कि दिल्ली के स्टूडियो में बोली गई बात पलक झपकते ही पटना के किसी गांव में बैठे इंसान को सुनाई दे जाती है। बिना स्क्रीन का सुपर हीरो। अब सवाल ये है कि आज इस 4K स्क्रीन और 5G इंटरनेट के जमाने में मैंने रेडियो को सुपर हीरो क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, सुपर हीरो वो होता है जो तब काम आए जब बाकी सब हार मान ले। जब भारी बारिश या तूफान में बिजली कड़क जाती है, टीवी बंद हो जाते हैं और मोबाइल के टावर गिर जाते हैं, तब बैटरी से चलने वाला एक छोटा सा रेडियो ही लोगों को मौसम की चेतावनी और राहत की खबर पहुंचाता है। जब कोई किसान अपने खेत में पसीना बहा रहा होता है तो उसके पास वीडियो देखने का समय नहीं होता, तब यही रेडियो उसको खेत के गुण सिखाता है और लोकगीत सुनाकर उसकी थकान भी मिटाता है। सरहद पर खड़े हमारे जवानों से लेकर दूर दराज के पहाड़ों पर बैठे लोगों तक, जहां कोई स्क्रीन नहीं पहुंचती, वहां आकाशवाणी की आवाज पहुंचती है।

अगली बार जब आप अपनी कार में या मोबाइल ऐप पर रेडियो चालू करें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ गाने नहीं सुन रहे, आप विज्ञान के एक ऐसे चमत्कार को सुन रहे हैं जिसने पीढ़ियों को जोड़ कर रखा है। आकाशवाणी एक ब्रॉडकास्टर नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक धड़कन है। यह था हमारा बिना स्क्रीन का सुपर हीरो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते रहिए, क्योंकि आवाज का जादू कभी खत्म नहीं होता।

लेकिन अब घड़ी दिखा रही है जाने का वक्त। अब हम जाएंगे और अगले हफ्ते वापस आएंगे ऐसी हमारी खजाने का पिटारा लेके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन अगर आप हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं @fmgradiokids@gmail.com। बाय।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इसे सुन रहे हैं और इस फ्रीक्वेंसी पर अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 4 बजे आप सुनेंगे पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 4:20 से एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार प्रसारित करेंगे। परिक्रमा का समय रहेगा 4:30 का और परिक्रमा के बाद 5 बजे एक बार फिर समाचार आप तक पहुंचाए जाएंगे पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। उसके बाद समाचारों के बाद आप 5:10 से सुन सकते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम हौसले। 5:30 पर पूर्वोत्तर डायरी प्रसारित करेंगे और हर घंटे की तरह इस बार भी हर घंटे बाद यानी ठीक 6 बजे होंगे समाचार। तो बस थोड़ा सा इंतजार और सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने आज कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इस बातचीत ने भारत अमरीका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आप तक लाया है ये प्यारा सा तराना, फिल्म असली नकली से। रोमांटिक ड्यूएट है ये, गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों

के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।

फिल्म अदालत से गीत आप सुन रहे हैं मुख्य स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के, और ठीक 4:20 पर आप तक पहुंचाएंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। सुनते रहिए एफएम।

0: भी शामिल है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.caomod.nic.in। टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी एफ, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी, चिकित्सा अधिकारी ई, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, चिकित्सा अधिकारी ई, पल्मोनरी मेडिसिन, चिकित्सा अधिकारी ई, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, चिकित्सा अधिकारी ई, यूरो ऑन्कोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी, पैथोलॉजी कैंसर साइटोजेनेटिक प्रयोगशाला, वैज्ञानिक अधिकारी डी, गुणवत्ता, प्रभारी अधिकारी डिस्पेंसरी, वैज्ञानिक अधिकारी एस बी, वैज्ञानिक अधिकारी एस बी समुदाय ऑन्कोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी एस बी सूक्ष्म जीव विज्ञान, वैज्ञानिक सहायक ग चिकित्सा ग्राफिक्स, वैज्ञानिक सहायक ग न्यूक्लियर मेडिसिन, सहायक चिकित्सा समाज सेवक, हाउसकीपर, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, वैज्ञानिक सहायक ख, वैज्ञानिक सहायक ख केंद्रीय स्टेराइल सेवा विभाग, वैज्ञानिकी सहायक ख फिजियोथेरेपी, वैज्ञानिकी सहायक ख रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, लीडिंग फायरमैन तकनीशियन ग दंत व प्रोस्थेटिक सर्जरी मैकेनिक, तकनीशियन ग आईसीयू, तकनीशियन ग लिनन और लॉन्ड्री, तकनीशियन ग नेटवर्किंग, तकनीशियन ग ऑपरेशन थिएटर, तकनीशियन ख वातानुकूलन, तकनीशियन क कारपेंटर, तकनीशियन क केंद्रीय स्टराइल सेवा विभाग और तकनीशियन क इलेक्ट्रिकल, तकनीशियन क बहुकौशल और तकनीशियन क प्लंबर। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026 को शाम 5:30 बजे तक। कश्मीर विश्वविद्यालय का जनसंख्या अनुसंधान केंद्र सह प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। एक पद उपलब्ध है और वो अनारक्षित है। विवरण, नियम और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.kashmiruniversity.net अथवा www.prcku.uok.edu.in। इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर भी आप विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं www.mohfw.gov.in। ऑनलाइन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 12 जून 2026 जबकि हार्ड प्रति जमा करने की अंतिम तारीख है 16 जून 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड।

0: परिक्रमा एंड करिश्मा ने तो ऑलरेडी बता ही दिया है क्या कुछ खास होगा आज के प्रोग्राम में. एंड सिंस टुडे वाज मन की बात करिश्मा, तो हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे ऑफ कोर्स इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स मन की बात, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट रफली हाफ एन आवर. बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस. Prime Minister Modi says government is making all efforts to preserve heritage sites of the country, highlights return of ancient Chola era copper plates to India during his recent visit to the Netherlands.
1: Akashvani se Mann ki Baat karyakram mein Pradhan Mantri ne logo se garmi ke mausam mein surakshit rehne ka aagrah kiya. Unhone paramparik Bhartiya Sheetal Pay ki prashansa ki aur swadeshi aam ki kismon ko vaishvik bazaron tak pahunchane ke liye kisanon ki sarahana ki.
0: Chief of Defence Staff, Lieutenant General N.S. Raja Subramani says, Indian Armed Forces remain committed to protecting country's sovereignty and territorial integrity.
1: Admiral Krishna Swaminathan ne Nausena Pramukh ka karyabhar sambhala.
0: U.S. President Trump says U.S. is close to reaching a nuclear agreement with Iran, warns military action remains an option if negotiations fail.
1: और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आज शाम अहमदाबाद में टाइटल मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार.
0: And now, as we had mentioned, it's time for Dateline India, और हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की आज जो मन की बात हुई उसके बारे में.
1: और श्रोताओं, सबसे पहले आपसे एक सवाल ये है कि क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक बातचीत छाछ के एक गिलास जैसी साधारण सी चीज़ से शुरू होकर किसी प्राचीन साम्राज्य की भव्यता तक पहुंच सकती है, या किसी गांव की नदी से लेकर अंतरिक्ष के अजूबों तक सफ़र तय कर सकती है. इस महीने की मन की बात ने देश के ठीक यही अनुभव कराया. भारत की परंपराओं, उपलब्धियों और प्रेरणादायक कहानियों का एक ऐसा सफ़र जो हमें इस बात पर गर्व महसूस कराता है कि हम कौन हैं.
0: That's right, करिश्मा. और आपने बात की कि आज प्राइम मिनिस्टर ने छाछ और बहुत सारी ऐसे समर ड्रिंक्स की बात की, बिकॉज वी ऑल नो दैट समर इज एट इट्स पीक राइट नाउ इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एंड द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड एवरीवन टू स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू हार्श सनलाइट एंड फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. बट व्हेन टेम्परेचर सॉ, what is India's oldest and most trusted answer to beating the heat? Well, the answer isn't found in expensive energy drinks or fancy beverages. It lies in simple recipes that have been passed down through generations, like chilled ampana, refreshing sattu, a glass of lassi after lunch, beelpanam, panakam, neermor, sambaram, kokam sharbat, and sol kadhi. These drinks may not have flashy advertisements or celebrity endorsements, yet they carry centuries of wisdom.
1: और गर्मियों की बात करें तो ऐसा कौन सा फल है जो पल भर में लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है? जाहिर सी बात है ये सवाल तो सभी को पता होगा इसका जवाब क्या है. जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं आम की. गर्मियों में कटे हुए आमों की एक प्लेट के बिना पारिवारिक मिलन अक्सर अधूरा सा लगता है.
0: इनफैक्ट करिश्मा, कटे हुए आम नहीं, जब सारा परिवार बैठ के बिना छीले बिना काटे उस आम को बस ठंडा ठंडा जो है ऐसे ही खाता है,
1: बिल्कुल
0: तब लगता है कि हाँ ये परिवार है, isn't it?
1: और यही वजह है कि बच्चे बेसब्री से आम के मौसम का इंतजार करते हैं. सड़क किनारे फल बेचने वाले गर्व से सुनहरे फलों के ढेर सजाकर रखते हैं. ये पल लगभग हर भारतीय घर परिवार के लिए जाने पहचाने से लगते हैं.
0: That's right. I think all of us, everyone in India, because the king of fruits, mango, I think that's the bestest thing that happens to us in summers. वरना हर कोई तो लू से परेशान रहता है, especially North India में. लेकिन आम से जुड़ी यादें हर किसी की होंगी, as children, as adults, because a very vivid memory which obviously many Indians would share was that my father used to dump all those mangoes in chilled water. वो बाल्टियों में डाल देते थे. And you won't believe, my mother was very hygiene conscious. लेकिन उनकी नजरों से छुप के वो कहते थे डायरेक्ट बाल्टी में से निकाल निकाल के खाएंगे. And so many people do that. And you know, it's one memory that has probably stayed. And I think many Indians would probably relate to it.
1: मुझे तो गर्मियाँ वैसे ही पसंद नहीं है, लेकिन आम के लिए मैं गर्मियों का इंतजार करती हूँ. ऐसे बहुत से लोग हैं.
0: बहुत से लोग हैं. I'm also one of them. Well, behind every mango lies the dedication of farmers, of course, so many stories, and of course the dedication of farmers who nurture orchards for years before the fruits reach our tables. The Prime Minister highlighted that mangoes from Indian villages are finding their way into the global market.
1: और आम के बागों से बात भारत के गौरवशाली अतीत की ओर मुड़ गई. क्या होता है जब इतिहास का कोई ऐसा अंश जो कभी देश से बाहर चला गया था, आखिरकार अपने घर लौट आता है। नीदरलैंड्स की अपनी हालिया यात्रा के दौरान चोल काल की प्राचीन तांबे की पट्टियां भारत को वापस सौंपी गई। ये सोचना कितना रोमांचक है कि सदियों पहले भारतीय जहाज महासागरों को पार करते हुए हमारी सीमाओं से भी कहीं दूर सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे थे।
0: Indeed, very amazing. And stories like these, Karishma, they remind us that India's global influence did not begin recently. As you had mentioned, ki itni sadiyon pehle bhi wo sampark the. The Prime Minister also spoke about another exciting discovery in Malhar in Chhattisgarh, where rare copper plates dating back to the 6th and 7th centuries were found under the Gyan Bharatam initiative.
1: और इसके बाद कार्यक्रम इतिहास से हटकर मानवीय उपलब्धियों की ओर मुड़ गया। रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में कई एथलीटों ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। उनकी ये उपलब्धियां इस बात की याद दिलाती हैं कि भारतीय खेल उत्कृष्टता के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है।
0: एंड करिश्मा, आज की मन की बात इतने सारे टॉपिक्स को टच किया था, तो जगजीत सिंह की गजल है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। सो इट रियली रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, बिकॉज बात भले ही शुरू हुई हो गर्मियों से, आम से, आम पना से, लेकिन इट वेंट टू सेंचुरीज ओल्ड कॉपर प्लेस टू स्पोर्ट्स, एंड नाउ फ्रॉम स्पोर्ट्स द डिस्कशन एक्चुअली मूव टू द स्टार्स। द प्राइम मिनिस्टर नोटेड दैट एस्ट्रोनॉमी क्लब्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अक्रॉस इंडिया, from major cities and even to small towns. Schools, parks and community spaces are turning into centers of scientific exploration, because zahir si baat hai, in fact even we took our kids to the planetarium Delhi, because itni garmi hai, bacche bahar jana chah rahe hain, chuttiyan hai, kahan le jaye, so it's better to go somewhere indoors and even gain some knowledge.
1: Ji bilkul, aur is karyakram mein sanrakshan ki ek dil chhoo lene wali safalta ko bhi ujagar kiya gaya. Uttar Pradesh ki ek nehar mein fasi ek ganga dolphin ko namami गंगे पहल के तहत भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचा लिया गया।
0: That's कितनी अच्छी बात है। Absolutely, very, very inspiring. And then the Prime Minister shared some inspiring stories of ordinary people doing extraordinary things. In Kerala, Sajeev Valasheril has taught more than 15,000 people how to swim through a free swimming club. Imagine a free swimming club. That's such a You can say एक rarity है, especially बड़े शहरों में, because we keep looking for summer clubs and swimming clubs and they are so expensive, isn't it? Think about how many lives could be saved because someone learned this essential skill and not just learned but decided to share it free of cost. In Uttar Pradesh, Akash Gupta and his friends decided not to wait for someone else to clean their village river. They rolled up their sleeves and began the work themselves.
1: और गोवा में रिटायर्ड टीचर बालकृष्ण अय्यर ने खुद को पानी से जुड़ा स्थानीय चुनौतियों को हल करने के लिए समर्पित कर दिया। इनमें से किसी भी व्यक्ति के पास कोई बड़ा पद नहीं था, किसी ने भी सही हालात का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस काम करने का फैसला किया, और अक्सर यहीं से सार्थक बदलाव की शुरुआत होती है।
2: In the Mahadi Talap area of Goa, retired teacher Balakrishna Iyer turned a community challenge into a mission of service. Troubled by the shortage of water faced by local families, he decided to act. Using his retirement savings, he first dug a well near his house and later constructed a second larger well when demand increased. The task was far from easy. Workers were hesitant to dig deeper due to collapsing soil and poor oxygen supply. Balakrishna Iyer devised an innovative solution by creating side steps and an access opening, ensuring both safety and ventilation. His efforts eventually led to a reliable water source. While speaking with Akashwani, he said,
3: पहले दिसंबर जनवरी फरवरी तक इस कुएं का ज्यादा पानी मिलता था और पांच छह घरों को मिलता था, और वो कम हुआ बाद में, और लोगों को मेरे घर के पास आकर खाने के लिए सिर्फ उनको मिलने लगा। अभी भी खाने के लिए इस कुएं का पानी 10-12 फैमिली वाले लोग ले जाते हैं, लेकिन बाकी कपड़ा धोना, नहाना, पौधों को पानी डालना, इसलिए उनको दूसरा पानी चाहिए था। मैंने इसलिए दूसरा कुआं जब खुदवाया, वहाँ बहुत पानी मिला और इन समस्याओं का भी हल करने में आसानी हुई।
2: He then laid pipelines and installed pumps, supplying water to nearly 50 homes initially and later extending the network to many more families. For over a decade, villagers depended on this community-driven water supply until government connections became available. For Parikrama, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
0: Very inspiring story indeed, Karishma. Mm-hmm. And another touching story came from Tamil Nadu. Teacher Girija Amma wanted her students to understand gratitude towards the nation's soldiers. Her idea was simple. What if every child contributed just 1 rupee a day? 1 rupee may seem insignificant, yet when thousands participate with sincerity, extraordinary things happen.
1: और वे छोटे छोटे योगदान धीरे धीरे बढ़कर लगभग 40 लाख रुपए हो गए जिन्हें सैनिकों की सहायता के लिए दान कर दिया गया। जैसे जैसे यह कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ा, एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया कि भारत की ताकत केवल उसके स्मारकों, तकनीकों या आर्थिक उपलब्धियों से ही नहीं आती, बल्कि यह उसके लोगों से भी आती है।
0: Yes, indeed, every corner of the country has stories that are worth celebrating. Perhaps the real question is this, that how many such heroes live around us without ever making headlines? And when we begin noticing them, appreciating them and learning from them, we become part of the same spirit that continues to move India forward, a spirit that makes every Indian proud to say that this is our India. एंड ये तो हम लोगों ने बात कर ली आज के मन की बात के बारे में, बट एक जल्दी से अपने सेगमेंट में बात करते हैं, बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड नो टोबैको डे करिश्मा, एंड हैव यू नोटिस दैट हाउ टोबैको प्रोडक्ट्स रेयरली इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज डेंजरस? कितने फैंसी उनके करते हैं वो, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई दैट दे हैव टू नाउ पुट दोज यू कैन से वेरी वेरी स्कैरी पिक्चर्स, अदरवाइज इट वॉज ऑलवेज यू नो अबाउट यू नो सम हीरो लाइक मैन पफिंग ऑन अ सिगरेट, इजंट इट? सो वेल दे अराइव डिफरेंटली, अ कलरफुल packet placed near a billing counter, a sleek vaping device that looks more like a gadget than an addiction, a sweet flavor with a catchy name, well, a social media post that makes it all seem trendy, harmless, yeah, even aspirational. And that raises an important question. If tobacco is known to cause serious diseases, why are millions of young people still getting drawn towards it?
1: और ये सवाल विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के केंद्र में है। इस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सशक्त विषय चुना है, आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला, क्योंकि अब असली कहानी सिर्फ सिगरेट तक ही सीमित नहीं है, यह इस बारे में भी है कि कैसे निकोटीन और तंबाकू उत्पादों को नई पीढ़ियों को आकर्षित करने के लिए नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है, उनकी पैकेजिंग बदली जा रही है और उनका प्रचार भी किया जा रहा है।
0: That's very right, Karishma. And in fact, the reality is that addiction rarely begins with a warning sign, and it often starts with curiosity. But before people realize, it becomes an addiction.
1: और यही वजह है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मकसद सिर्फ लोगों से धूम्रपान छोड़ने के लिए कहना ही नहीं है, इसका मकसद उन रणनीतियों को बेनकाब करना है जो शुरू से ही नशे को आकर्षक दिखाती हैं। लेकिन सिर्फ नीतियां ही हर समस्या का हल नहीं हो सकती, जागरूकता भी मायने रखती है, माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत भी मायने रखती है, एक दोस्त का दूसरे दोस्त को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना भी मायने रखता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और श्रोताओं अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। जल ही जीवन है, इस संदेश का जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 चलाया जा रहा है। इसके तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने, जल के प्रति आभार और जिम्मेदारी का संकल्प लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान केवल एक सरकारी पहल ही नहीं, बल्कि जल के विवेकपूर्ण उपयोग और भविष्य की सुरक्षा का सामूहिक संकल्प है। इस अभियान में शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं, बावड़ियों और जल स्रोतों की सफाई, श्रमदान, वर्षा जल संग्रहण और अन्य कार्यक्रमों में आम लोगों की उत्साह के साथ भागीदारी देखी जा रही है। वहीं किसानों को भूजल पुनर्भरण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रभात फेरी, परिंडे बांधना, महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करना और प्लास्टिक कचरे का निष्पादन करना भी शामिल है। 25 मई को गंगा दशमी पर शुरू हुए इस अभियान में 5 दिनों में ही लगभग 3 करोड़ लोगों ने जल संरक्षण के प्रति सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अब तक 7,30,000 से अधिक स्थानों पर पानी बचाने और पर्यावरण जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वहीं महिलाओं की भी अभियान में बराबर की भूमिका देखी जा रही है। 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं ने जल पूजन, कलश यात्रा और जल स्रोतों की साफ सफाई में सक्रिय सहभागिता निभाई है। हर बूंद बचाने के प्रण के साथ स्कूलों, पंचायतों और आम नागरिकों के प्रयासों से मरु प्रदेश का ये अभियान सशक्त बनकर उभरा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी जयपुर से सालेहा की रिपोर्ट।
0: And now from Jaipur.

0: We head towards the northeast. In a major technological leap for disaster management and climate resilience, Nagaland has launched Iliona, an artificial intelligence-driven supercomputer designed to strengthen early warning systems, disaster forecasting, and scientific decision-making. Let's hear more from our correspondent.
1: Iliona is a dedicated high-performance supercomputing platform designed to transform disaster risk governance in Nagaland. Powered by artificial intelligence and machine learning technologies, the system can process vast amounts of weather, satellite, terrain, and disaster-related data in real time. This enables high-resolution modeling of rainfall patterns, atmospheric conditions, hydrology, and landslide susceptibility, supporting more accurate forecasting and faster response. The advanced system was formally unveiled by MLA and advisor for NSDMA, Zed Nyutito Nyute, at the Nagaland Center for Disaster Management and Atmospheric Research in Kohima. The AI-powered platform will support a wide range of applications, including weather forecasting, flood and landslide analysis, hazard mapping, and climate risk assessment. As climate-related risks continue to grow and extreme weather events become more frequent, Iliona marks a significant step towards building a safer, more resilient Nagaland. The initiative also reflects the state's commitment to harnessing cutting-edge technology for public safety, sustainable development, and disaster-resilient governance, positioning Nagaland among the emerging leaders in AI-powered climate and disaster intelligence in the country. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
2: और श्रोताओं, अब बात गुजरात की करेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कई पहलें शुरू की गई। ऐसी एक पहल है गुजरात की मेट्रो रेल सर्विस, जो आज यात्रियों की लाइफलाइन बन गई है। एक रिपोर्ट।
3: गुजरात में शहरी ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न और सुविधाजनक बनाने के मकसद से शुरू की गई मेट्रो रेल सर्विस करोड़ों नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। अहमदाबाद और गांधीनगर में गुजरात मेट्रो का रेल नेटवर्क 68 किलोमीटर का है। अहमदाबाद मेट्रो सर्विस इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 1,60,000 हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक साल भर में 5,10,00,000 से ज्यादा यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया है। इस बारे में गुजरात मेट्रो के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गुप्ता ने कहा कि गुजरात मेट्रो विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
4: विकसित भारत 2047 के दृढ़ निश्चय एवं प्रधानमंत्री जी के विजन के अंतर्गत 28 किलोमीटर अहमदाबाद फेज 2 तथा 40 किलोमीटर सूरत की भी मेट्रो नेटवर्क की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में 68 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क अहमदाबाद एवं गांधीनगर में ऑपरेशनल है। सूरत का जो 40 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क है, उसमें से 15 किलोमीटर का ट्रायल रन भी हो चुका है।
3: मेट्रो सर्विस का विस्तार बढ़ाने के लिए गांधीनगर गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक एक्सटेंशन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सूरत शहर में बेंचमार्क मेट्रो प्रोजेक्ट का काम भी जोरों पर चल रहा है, जिसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। परिक्रमा के लिए मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात आईपीएल की। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
0: एंड इन वुमेन्स क्रिकेट, होस्ट इंग्लैंड डिफीटेड इंडिया बाय 26 रन इन द सेकंड टी20 इंटरनेशनल इन ब्रिस्टल लास्ट नाइट। द 3-match सीरीज इज नाउ टाइड एट 1-1। द 3rd एंड फाइनल टी20 इंटरनेशनल ऑफ द सीरीज विल बी प्लेड ऑन ट्यूसडे इन टॉटन।
2: और अब हम याद करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। और उससे पहले चलते हैं आजादी के सफर पर।
5: We remember freedom fighter and former chief minister of Madhya Pradesh, Dwarka Prasad Mishra, who died on the 31st of May 1988. Dwarka Prasad Mishra actively contributed to the nationalist movements and was associated with the non-cooperation movement and the Quit India movement.
6: Dwarka Prasad Mishra was born on 5th of August 1901 in Unnao district of Uttar Pradesh. In the year 1920, Dwarka Prasad Mishra jumped into the freedom struggle on the call of Mahatma Gandhi. He joined the non-cooperation movement and remained in the front line of the nationalist movements. He served prison sentences during the years 1932, 1940 and 1942. He became a minister of Central Provinces in 1937.

0: तो उनकी फिल्मों की बात करें तो रहस्य, रोमांच, सामाजिक विषयों और पारिवारिक कहानियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना उनकी विशेषता थी। उनकी फिल्मों में कहानी, अभिनय और संगीत का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। राज खोसला को हिंदी सिनेमा में सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों की परंपरा को लोकप्रिय बनाने का भी श्रेय दिया जाता है।
1: That's right, Karishma. And before we move on to the next personality, let's quickly listen to this beautiful song from the film Main Tulsi Tere Aangan Ki.

और इसके साथ ही श्रोताओं, आज भारतीय संगीत जगत के प्रतिष्ठित संगीतकार और फिल्म संगीत निर्देशक वनराज भाटिया की जयंती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ रखने वाले वनराज ने अपने विशिष्ट संगीत से भारतीय सिनेमा और टेलीविजन को नई पहचान दी। और बताया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद संगीत का गहन अध्ययन उन्होंने किया और विदेश में भी संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उन्होंने सिनेमा की अनेक चर्चित फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए थे। उनकी प्रमुख फिल्मों में अंकुर, भूमिका, निशांत और मंडी शामिल है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से ये संगीत।

0: एंड नाउ वी हैव टू रैप अप. इसी के साथ दीजिए इजाजत सायरन करिश्मा को.
1: नमस्कार. मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है. 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है. अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में. ये आकाशवाणी रायपुर है. प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ.

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरना, नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटा पानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और अर्जुनी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, फुरफुंदी, कोठारी, सरकारी कुआं, हाथी, जोगी डीपा, धौरा भाटा, कोल डीपा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण।

पहली जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अनुकुंज कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा ए यराई का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से रिले किए जाएंगे। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण सुनिएगा आज रात 8:00। जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर सुनेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। कानून की बात कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरूतियों के संबंध में कानूनी सहायता विषय पर असिस्टेंट लीगल एवं एंड डिफेंस काउंसिल श्री मयंक सिंह ठाकुर से की गई बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति होगी। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में आज होगी चर्चा कठिन रास्ते ही आसान जिंदगी बनाते हैं और सुनेंगे विशेष कार्यक्रम तंबाकू निषेध दिवस पर। किसानों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात होगी प्रमाणित बीज का उत्पादन भविष्य के आय का साधन और क्रम आज की सलाह में लागत और श्रम बचाने के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाएं विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर आर के नायक प्राध्यापक कृषि मशीनरी और शक्ति अभियांत्रिकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से रिले किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोकसुर इस कार्यक्रम का 23वां भाग प्रसारित होगा कल सुबह 8:30 पर। आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक होंगे पंकज मेश्राम। गुजरा हुआ कल चंद्रिका चौधरी की ये कहानी आप सुनेंगे कथायन में कल सुबह 9:00।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनिएगा जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग भंखार। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग परज पसंद। फोन करो छत्तीसगढ़ ही गीत सुनो, ये फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 11:05 पर। लोक रंजनी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगे परमानंद करियारी और साथी। महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में दोपहर 1:30 पर आज की बात होगी माता पिता का सम्मान पहली जिम्मेदारी। साथी होंगे क्रम आपकी चिट्ठी और एक ही फिल्म से। कलियुवाणी कार्यक्रम में शाम 5:10 पर होगी चर्चा वैश्विक अभिभावक दिवस पर और विश्व दुग्ध दिवस पर। साथी होंगे क्रम सर्जना और इंद्रधनुष।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: राहें कठिन हैं, चलना फिर भी है, हार से डर कर रुकना नहीं है, सपनों को आंखों में सजा कर रखो, हर मोड़ पर खुद से जुदा ना होना कभी।
1: ठोकरें आएंगी ये तो तय है, पर इनमें ही मंजिल का रास्ता बनता है। मेहनत की रोशनी जलाए रखो, एक दिन वहीं अंधेरा छटता है।
0: साथियों, हाजिर है हम आपके दो रेडियो दोस्त, मैं अपेक्षा शुक्ला
1: और मैं संस्कार जैन।
0: स्वीकारे हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। अपेक्षा, तुम्हें अगर किसी मंजिल तक पहुंचना है और तुम्हें उस मंजिल का रास्ता नहीं पता तो तुम क्या करोगी?
0: इतना आसान सवाल। मैं उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करूंगी और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाऊंगी।
1: इतनी आसानी से तो नहीं मिलती मंजिल अपेक्षा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
0: और वैसे भी कहते हैं ना साथियों, आसानी से मंजिल नहीं मिलती, और अगर मिल जाए तो समझिए कि ये आपकी मंजिल है ही नहीं, बस ये एक छोटा सा स्टॉप है, आपको और आगे जाना है।
1: और साथियों, आज अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ही सफल होगी।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए सफलता के रास्ते पर कठिनाइयों के आने से साथियों आप घबराएं नहीं।
0: कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उसकी चमक उतनी ही तेज होती है, इसलिए साथियों हमेशा तपने से यानी मेहनत से ना डरें, क्योंकि मेहनत समय मांगती है लेकिन सफलता भी तो देती है।
1: आज अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन हमें कठिनाइयों से डरना नहीं है, हमें कोशिश करना है कि हम उन कठिनाइयों का सामना करें और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएं।
1: हाँ, और साथियों कठिन रास्ते ही आपको मजबूत बनाते हैं। जिंदगी कभी भी पूरी तरह से आसान नहीं होती, बल्कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और दृष्टिकोण अपनाकर उसे आसान बनाना पड़ता है।
0: और साथियों कठिन परिस्थितियों से निकलने पर हमें सीख भी तो मिलती है, वही ज्ञान हमें भविष्य में सही फैसले लेने में मदद करता है।
1: हाँ, और जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करके जीत हासिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, और साथियों बिना संघर्ष के मिली सफलता में वो खुशी भी तो नहीं होती जो मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद मिलने वाली मंजिल में होती है।
1: जैसे लोहे को तपाकर और हथौड़ी की मार खाकर ही मजबूत औजार बनाया जाता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों का सामना करके निखरता है। इसलिए चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर मानना चाहिए।
0: और साथियों इंसान की लाइफ में ना सुख दुख जीत हार ये सब तो आना जाना लगा ही रहता है।
1: सच्चा और मजबूत इंसान वो है जो सारे दुख बाधाओं को पार कर आगे बढ़ता रहे।
0: और बाधाओं को पार कर ही सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलता है, एक दिन वही इंसान सुखी और सफल जरूर होता है दोस्तों।
1: और जीवन के कठिन दिनों से घबरा कर उल्टे पांव लौटने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती अपेक्षा।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में निराशा ही मन को घेरती है।
0: बिल्कुल, और साथियों इसीलिए कहते हैं ना, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये भी गलत बात है। साथियों, और आज है 31 मई यानी आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन के सेवन में होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को इस घातक लत से दूर रहने को प्रेरित करना है। और हर साल इसकी अलग अलग थीम होती है दोस्तों, और इस साल 2026 की थीम है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड तंबैको एडिक्शन। तो इसलिए आप भी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
2: वो कहा है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: साथियों आगे बढ़ते हैं विशेष कार्यक्रम की ओर, युवा भारत युवा संकल्प, जिसमें आज आप जानेंगे पैड आर्मी के बारे में।
7: विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम, मैं आपकी रेडियो दोस्त हर्षिका ध्रुव
8: और मैं ममता सोनी, और आज हमारे बीच ऐसे ही हमारे युवा साथी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा से और अपने ज्ञान से महिलाओं को

0: रायपुर से हूं और हमने जो ये एनजीओ भी चालू की थी वो रायपुर को बेस बना के ही की थी क्योंकि ये बीच में तो हम सभी जगह पहुंच पाएंगे। इसके अलावा मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है और उसके बाद से ही मैं कंटिन्यूअसली इस काम को कर रही हूँ।
1: जी ऐश्वर्या आप बताइए।
2: हाय मेरा नाम ऐश्वर्या दुगड़ है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं रह रही हूँ, यहीं काम कर रही हूँ। मैंने 10 महीना हुआ है मुझे द पैड स्टोरी ज्वाइन किए हुए। मैं वैसे तो स्टूडेंट हूँ पर साथ ही साथ मैं काम भी कर रही हूँ कुछ अच्छा करने के लिए।
3: हेलो मेरा नाम आसिफ है और मैं भिलाई से हूँ। रायपुर में रहते हुए अराउंड 3 साल हो गए बट अगर मैं करियर की बात करूँ तो मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मैंने अभी रिसेंटली एमबीए किया वो रविशंकर यूनिवर्सिटी से किया है। बट हाँ अमानत फाउंडेशन हमने करीब 8 साल पहले स्टार्ट किया था। काफी एनजीओ में हमने वॉलंटियर किया तो एक था कि फीमेल के लिए कुछ करना है तो हमने उस पर्टिकुलर नेम से हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है।
4: आस्था जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किन किन क्षेत्रों में अभी काम कर रहे हैं और जैसे कि अभी आसिफ जी ने बताया कि अमानत फाउंडेशन, तो ये कब शुरुआत किया गया और इसके विचार आपको कैसे आए?
0: वैसे मैं और आसिफ हम दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं और हम शुरू से ही समाज को लेकर हम दोनों के ख्यालात काफी मिलते थे। तो जब हम कॉलेजेस में थे हम दोनों अलग अलग कॉलेजेस में थे बट बात होती थी तो ये बहुत ज्यादा फील होता था कि जो समाज की महिलाएं हैं उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा है जितना ज्यादा पुरुषों को मिल पा रहा है। और विशेष करके अगर बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे महिलाएं कुछ करना भी चाहती हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है। तब हमने करीबन 7-8 साल पहले ये मतलब हमने सोचा, उस वक्त हमें नहीं पता था कि हमें एक एनजीओ बनानी है या हमें बहुत बड़ा काम करना है, बस हम चाहते थे कि हम किसी की हेल्प कर पाए। और हमने जब शुरुआत की तो जो ग्रामीण महिलाएं थे उनके एम्प्लॉयमेंट को, उनके क्या कहना चाहिए, उनके व्यवसाय को लेकर या ऐसा वो कुछ काम करें जिससे वो अर्न कर पाए या उनको उनके हाथ में पैसे आ पाए, ये सोच लेकर हमने आगे काम किया। और आज तक हमने 54 महिलाओं को इसके अंतर्गत काम दिया है जो कि पूरी तरीके से ग्रामीण महिलाएं हैं। अलग अलग तरीकों से हम उन्हें ट्रेनिंग देते आए हैं अब तक और काम देते आए हैं। इसके अलावा जब हम ये काम उन्हें देते थे, हम उनसे बातचीत करते थे तो हमें एक बहुत बड़ी समस्या महसूस हुई कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स या महावारी, उसको लेकर लोग जानते तो हैं इसके बारे में लेकिन इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हम इसको सेफ्टी से या हाइजीनिक तरीके से ना बिताएं, तो वो हमें एक बहुत बड़ा इशू लगा, बहुत बड़ी समस्या लगी जिसको लेकर हमने आगे काम किया, जिसका एक अलग से विंग बनाया द पैड स्टोरी के नाम से। और इस पे अभी तक हम बहुत आसपास के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में हम खुद जाकर पैड डोनेशन ड्राइव करते हैं। इसके अलावा पैड डोनेशन ड्राइव तो एक बहाना है, हम वहां पे जो सेमिनार्स अरेंज करते हैं जिसमें वो महिलाएं आती हैं, हमसे बातचीत करती हैं, बल्कि पुरुष भी आते हैं, उन चीजों को समझते हैं, ये हम खुद जाकर करते आए हैं अभी रायपुर के आसपास के गांवों में। और इसके अलावा हमने दिल्ली के स्लम एरिया में भी पैड डोनेशन ड्राइव किया है जिससे वहां के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों में वो अवेयर हो पाते हैं और वो अलग अलग जगहों पे इसी तरीके के ड्राइव कर पाते हैं। और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं उसको जिन जो भी परेशानियां हो रही हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में या ऐसे क्लिनिक्स में जो कि सीएसआर में भरोसा रखते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं और उनको उस प्रॉब्लम से निजात मिलते हैं। इसके अलावा हमने फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए शहरों में एक कम्युनिटी बिल्ड की है जिसमें अभी तक हम 100 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ चुके हैं। जो महिलाएं सेम ख्यालात रखती हैं, इस तरीके की बातें सोचती हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं,
4: तो उन लोगों को आपने जोड़ने का काम शुरू किया
0: जी।
3: हम वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन एजुकेशन की कैसे उनको उनके व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं, ये इस पे हम वर्क कर रहे थे। तो वहां से एक इंटरेस्ट था कि फीमेल एम्पावरमेंट में मुझे वर्क करना है
0: जी।
3: तो वो जब हम उस पर डीपली गए, उनकी बहुत सी जैसे आस्था ने बताया कि 54+ वुमेन को हमने एम्प्लॉयमेंट दी, तो ये भी एक प्रॉब्लम उनकी साइमेंटिस्टली हमें पता चलती गई कि लाइक मेंस्ट्रुएशन एक प्रॉब्लम है हो रही है उन्हें, जिनकी वजह से कभी कभी उनको बिजनेस में इशू होता है, घर में इशू होता है। तब हमने एक बनाया कि हमें द बैड स्टोरी नाम से लाइक प्रोग्राम रन करना है जिसमें हम फीमेल को मेंस्ट्रुअल रिलेटेड अवेयर कर सकते हैं। उससे पहले मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि मेंस्ट्रुएशन में इतनी सारी चीजें होती है, उन दिनों में हमें इतनी सेफ्टी से पैड यूज करना है या कपड़ा ऐसे सुखाना है, तब लाइक मेरा इंटरेस्ट हुआ कि हाँ इसमें जानना है। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा समाज में फैक्टर है कि मेल भी है जिनको मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड अवेयर करना है, तो देन फिर हमने स्टार्ट किया कि यार हाँ फीमेल तो अवेयर हो जाएंगे बट मेल को अवेयर करना बहुत जरूरी है। और उसी बीच

0: मैंने भी लाइक पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया उनको कैसे समझाना है, लाइक कैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कैसे उनसे बात करनी है एज एन बेटा बन के या भाई बन के, इस तरीके से फिर हमने स्टार्ट किया। अभी अगर देखा जाए तो द पैट स्टोर में एक पर्टिकुलर क्रिएटर है, या बोलना चाहिए एक पर्सन है जो कि मेल को एजुकेट करता है वीडियो के थ्रू, कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी बहन है या आपकी मम्मी है वो पीरियड के दौर पर जा रही है तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करें या पहले से पैट कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीजों
1: जी। ऐश्वर्या जी, हमारा प्रश्न आपसे ये है, तो जब आप लोगों ने इस मुहिम को आगे इसमें पहल करना शुरू किया तो किन कठिनाइयों को आप लोगों को सामना करना पड़ा, कैसी चुनौतियां आप लोगों के सामने आई?
2: मेरे ख्याल से अगर मैं द पैड स्टोरी की बात करूं तो मैं क्लोजली पैड स्टोरी और वुमेन वेब में ही ज्यादातर काम कर रही हूं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कठिनाइयां ये आती है कि लोगों को समझाना, फर्स्ट चीज लोगों को समझाना। पर मेरे को ये भी लगता है कि जैसे हम बोलते आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लड़कों को पता नहीं इस बारे में, तो मेरे को लगता है कि क्या हमने एक बार भी बताने की कोशिश की है? क्योंकि अगर हम बताने की कोशिश करते हैं तो वो समझते हैं। हमारे पास सर का भी एग्जांपल है, आसिफ सर का, लड़के समझते हैं, शायद उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, कभी हमने बताने की कोशिश ही नहीं की। एज फीमेल ही हम एक दूसरे को एक वो करने में लग जाते हैं कि पीरियड्स आ रहे, अरे अंदर बैठ, पीरियड्स आ रहे, अरे पापा से दूर रहो, तो शायद हमने कभी बताने की कोशिश ही नहीं की। और जैसे जैसे अब इस बारे में हम खुल रहे हैं तो ये भी कठिनाई कम होती जा रही है, और जैसे जैसे सब साथ में मिलकर आई थिंक करेंगे ना तो कोई ऐसे बैरियर रहेगा ही नहीं इस चीज में भी, क्योंकि ये भी जस्ट एक जनरल, जैसे बुखार आता है, सर्दी आती है, खांसी आती है, ये भी एक वही प्रॉब्लम है। फर्स्ट एड बॉक्स होता है वैसे ही पैड होता है, तो कोई उसमें डिफरेंस ही नहीं है। तो धीरे धीरे आई थिंक ये भी कठिनाइयां बंद हो जाएगी अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ द पैड स्टोरी नहीं, उसके अलावा कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, या कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये सब भी चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी।
3: तो आस्था, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ऐश्वर्य ने एक वर्ड का वुमेन वेब, तो ये क्या है इसके बारे में हमें बताइए कुछ।
4: बेशक वुमेन वेब हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं विशेषकर शहरों में, क्योंकि जो महिलाएं काम कर रही है अलग अलग तरीकों से, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रही हो, खुद का कोई व्यवसाय चला रही हो, या वो किसी तरीके से क्रिएटर हो, आर्टिस्ट हो, हमने ये, मैंने पर्सनली ये बहुत ज्यादा फील किया है कि बाहर से होने की वजह से मुझे जब मैं रायपुर आई तो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती थी, या मैं किसी से पूछती थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो ये कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी बन रही है जिसमें कोई भी महिला किसी दूसरी महिला से या उस कम्युनिटी के किसी दूसरे पुरुष से कोई भी बात खुल के पूछ सकती है, या अगर कोई हेल्प हो तो मांग सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम मांगने पे बहुत ज्यादा हिचकते हैं कि कैसा रिस्पांस आएगा, क्या रिस्पांस आएगा, पर अगर हमें पता है कि ये कम्युनिटी है जो हर तरीके से हेल्प करने के लिए तत्पर है तो हमेशा कोई भी झिझकेगा नहीं। और इस कम्युनिटी में अभी तक हमने जो 80 लोगों को जोड़ा है, इसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स भी करते हैं। 3 महीने में एक ऐसा प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, बेसिकली फिजिकली इवेंट, जिसपे अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, नेटवर्किंग के लिए और फन के लिए होता है। इसके अलावा हर महीने हम वर्कशॉप अरेंज करते हैं जो टॉपिक बेस्ड होता है। अगर किसी को फाइनेंस सीखना है, मार्केटिंग सीखना है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो नहीं आता हो, तो वो ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। और ये वर्कशॉप दिए जाते हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा, तो उनको ये भी मतलब झिझक नहीं रहेगा कि मैं जिनसे सीखने जा रही हूँ वो अच्छा बताएंगे नहीं बताएंगे, इसलिए भी हम ये वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं।
1: तो ये वर्कशॉप जब आप लोग लगाते हैं तो ये इन्फॉर्म कैसे करते हैं कि वर्कशॉप लगने वाला है, या आप लोग कैसे उसको न्यूज कैसे देते हैं, मैसेजेस कैसे ड्रॉप करते हैं?
4: जी जी, तो अभी हम ज्यादातर सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं। मतलब अगर हम देखें तो कोविड के बाद से ही 80 से 90% लोग जो है दिन भर सोशल मीडिया में 6 से 8 घंटे बिताते हैं, तो सोशल मीडिया एक सबसे ईजी साधन हो गया है अभी किसी भी न्यूज को पहुंचाने के लिए। हम वह अलग अलग तरीकों से कंटेंट क्रिएट करते हैं, एड्स रन करते हैं, और इसके अलावा माउथ टू माउथ भी होता है। अगर मेरी कोई फ्रेंड है उसको ये बात पता चलती है तो वो अपने किसी और फ्रेंड को बताती है, तो ऐसे भी हम अपने ग्रुप को और इस कम्युनिटी को बड़ा करते जा रहे हैं।
3: तो आसिफ जी, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी कम्युनिटी में काम किया है साथ में और कर भी रहे हैं, तो इसके अलावा आप कुछ ऐसे अपना और कोई फील्ड में अपना काम कर रहे हैं?
0: कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तो वहां से एक मुझे जर्नी मुझे मिली लाइफ में। तो हम कॉलेज में थे तो हमने म्यूजिक फेस्ट अरेंज किया कॉलेज में, तो वहां पे एक जिम्मेदारी मिली कि उस म्यूजिक फेस्ट के लिए जो भी क्रिएटिव होगा, ग्राफिक होगा, पोस्ट होगा, वो आप लोगों की टीम को बना। तो वो पहला एक्सपोजर था मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, तो मैंने वहां पे कॉलेज के लिए सारे क्रिएटिव वगैरह डिजाइन की। देन कॉलेज ने, कॉलेज को वो पसंद आया तो उन्होंने अब मुझे इंटर्नशिप दी ग्राफिक डिजाइनिंग में। वहां से देन फिर मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया, तो अर्निंग एक सेकेंड ईयर में आनी चालू हो गई थी कि हाँ पैसे, तो वहीं से डिसाइड हो गया था कि लाइक इस फील्ड में ही वर्क करना। तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ हमारी एक कंपनी है इसके अलावा भी प्रसिद्धि प्यार, तो वहां पे मैं एज एन विजुअल डिजाइनर भी और को फाउंडर भी हूँ। तो उससे पहले भी मैंने सिंगापुर में इंटर्नशिप की एक कंपनी में, तो अब एक फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर की फील्ड है जो मेरे साथ है।
3: जी मतलब इसके अलावा भी आप अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं।
0: जी
4: इसमें ऐसा भी है कि एक एनजीओ को रन करने के लिए हमें दान करना पड़ता है और उस दान को करने के लिए हमें कमाना पड़ता है, और बिना कमाए मतलब हम ये कोई काम कर पाए और अच्छे से कर पाए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमारी ये जो एजेंसी है मार्केटिंग के लिए, उस पे हम मतलब काम करते हैं और हमारा 30-40% हर महीने का जो भी आमदनी होती है हम हमारे एनजीओ के में लगाते हैं और इसको बड़ा करने में इसी तरीके से हेल्प हो रही है।
0: और लाइक शुरुआत में ये भी हुआ था कि जब अमानत फाउंडेशन ही हमने पहले स्टार्ट किया था कि हमारा ये मोटिव भी था कि सोशल के लिए कुछ तो करना है लेकिन समाज के लिए, तो हम जब पोस्ट डालते थे कि हमें इस पर्टिकुलर चीज के लिए डोनेशन चाहिए तो उस समय बहुत कम रिस्पॉन्स था। तो हमने एक बनाया कि यार अब डोनेशन नहीं लेंगे,
1: अब नहीं लेंगे,
0: अब हम खुद से ही करेंगे। तो देन फिर वो हुआ भी कि अब हम खुद से ही करते हैं, जो लोग करते हैं तो वो देख के ही करते हैं कि यार ये लोग अच्छा कर रहे हैं चलो दे देते हैं, बट अब हम लेते ही नहीं, हमारा मोटिव है कि अब हम खुद से करेंगे।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो आसिफ जी हमारा प्रश्न ये है आपसे, जैसे कि ऐश्वर्या ने बताया कि अब कठिनाई उतनी नहीं आती मेंस्ट्रुएंस को लेकर के जागरूक करने में, जब आप लोग ग्रामीण एरिया में जाते हैं या आप लोग अर्बन एरिया में जाते हैं, खासकर आपसे अगर मैं पूछूं तो आप इस विषय में खुलकर कैसे उनसे बातचीत कर पाते हैं, अपनी बातें समझा पाते हैं?
0: रिसेंटली हमने धनेली में गया था, रायपुर के धनेली में, तो वहां पे अराउंड 50+ वुमेन तो थी जो कि एकदम ग्रामीण महिलाएं थी। तो लेकिन वहां पे अच्छा एक चीज ये लगी कि वो ओपन है वो बात करने के लिए, वो नहीं करती वो अलग बात है, वो ओपन है कि कोई अगर सही मैसेज दे रहा है तो हम सुनेंगे। जैसे और ऐसा भी नहीं करते हम कि डायरेक्टली मैं आ गया एज एन मेल और उनको बताना चालू कर दिया, तो पहले लाइक आस्था है तो वो थोड़ा सा ब्रीफ दे, जब वो एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड कर ले तो धीरे से मैं आऊं उनको बताऊं कि आप ऐसे अगर
1: पहले आप कंफर्ट जोन में पहले उनको लाते हैं, हाँ, फिर आप लोग अपनी बातें शुरू, हाँ, करते हैं।
0: ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं कि लाइक एकदम से डायरेक्ट मेल ना आए और बताए, तो वो भी मेल भी डायरेक्ट बताएगा तो एक पॉइंटलेस बात भी हो जाती है कि इसे कितना पता, तो इस तरीके से हम लोग वर्क करते।
3: तो ऐश्वर्या हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी परेशानियों का आप सभी ने सामना किया होगा, जैसे कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट है, तो कॉलेज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस परेशानी का क्या समाधान होना चाहिए?
2: मेरे हिसाब से जैसे कॉलेज की एक लड़की है अगर जिसको अचानक से पीरियड्स आते हैं तो उसको चाहिए पैड, तो पैड चाहिए, तो कभी कभी हम पैड कैरी करना भूल जाते हैं, कभी भी पीरियड्स आ जाते हैं, पता थोड़ा होता है। तो शायद उसके लिए एक सोल्यूशन है कि जैसे हर जगह फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हर जगह एक पैड बॉक्स भी हो, जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारा एक कैंपेन है टेक अ पैड कैंपेन, जिसमें हम अलग अलग जगह पर पैड बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, कैफेज, पब्लिक एरियाज, रेस्टोरेंट, सब जगह पे। तो आई थिंक वो एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है कि हर लड़की को हर टाइम पे हर कहीं पब्लिक प्लेसेज में कभी पीरियड्स आ जाए तो उसको पैड मिल जाए, पहली चीज। फिर दूसरी चीज हो गई कि अभी टचवुड हम ऐसी सोसाइटी में हैं, हम शहर में रह रहे हैं तो वहां यहां पे लड़के लड़की शायद थोड़ा खुल रहे हैं धीरे धीरे बात करने के लिए। तो हर मैं चाहती हूं कि हर एक गांव की लड़की भी उतने ही आसानी से बात कर पाए अपने पापा से, अपने भाई से पीरियड्स के बारे में जितना हम कर पा रहे हैं। वही है, दूसरी चीज यही हो गई कि हर लड़की एक दूसरे से बात कर पाए, हर लड़की एक लड़के से बात कर पाए कि मेरा पीरियड्स आ गया, मुझे इसकी जरूरत है। तो शायद बस दो ही यही चीजें होंगी मेरे हिसाब से।
1: आस्था जी हमारा प्रश्न ये कि अभी ऐश्वर्या ने बताया कि अभी हम लोग पैड बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं जगह जगह पर, तो इसकी क्या विधि होती है, पैड बॉक्स आप लोग कैसे इंस्टॉल करवाते हैं, किन किन जगहों पर करवाते हैं और कैसे पहुंचते हैं, उनसे कैसे बातचीत करते हैं कि हमें यहाँ पे ये करवाना है, इंस्टॉल करवाना है, तो उसकी क्या नियम और क्या विधि होती है?
4: तो इसमें हमने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, जिन लोगों को पहले से ही जानते थे हमने पहले उनको अप्रोच किया, कुछ कैफेज थे जिनके जो ओनर थे उनसे हमारा कनेक्शन था, हमने बात रखी और उन्होंने बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट किया। इस पैड बॉक्स इंस्टॉलेशन में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम उस पैड बॉक्स के साथ में दो पैकेट पैड्स ही रखते हैं, बट वो पैड खत्म हो जाने पर उस प्रमाइसेस की या उस वेन्यू की जिम्मेदारी होती है कि वो बॉक्स फिर से फिलअप करे, और जहां जहां हमने ये पैड बॉक्स इंस्टॉल किए हैं आज तक वो सारे खत्म होकर फिर से फिलअप हो रहे हैं और वो चेन चल रही है, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई कि हमारे

0: बस इतनी बड़ी टीम नहीं थी कि हम हर अलग अलग जगह पर जाके इसे इंस्टॉल करें, प्रॉपर वीडियोस बनाए ताकि लोग अवेयर हो कि पैड बॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है. तो हमारे पास में अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, हमारी 3 महीने की इंटर्नशिप होती है. तो हमने उन स्टूडेंट्स को ये जिम्मेदारी दी कि आप अपने पहचान की जगह पर ये पैड बॉक्स इंस्टॉल करवाइए. तो ऐसे कहीं ना कहीं किसी के पहचान के लोग निकल आते हैं. तो अभी हम अगर देखें तो बहुत से प्राइवेट एरिया के बजाय गवर्नमेंट एरिया में भी, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ का हो गया या जो गुरु घासीदास महंत म्यूजियम है, वहां पे भी हमारा पेट बॉक्स इंस्टॉल्ड है.
1: मेरा प्रश्न ये था कि अभी बताया कि इतनी बड़ी टीम नहीं है, अब कितने लोग हैं? ये है,
0: मैं पहले तुमको बता देती हूँ कि हमने जब लॉकडाउन में शुरू किया तो अलग अलग स्टेट के सारे स्टूडेंट्स जुड़े. जो लोग इस कैंपेन में हिस्सा थे वो कहीं ना कहीं आज भी हमसे जुड़े हैं. और ऑनलाइन हमारी 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है. इसके अलावा शहरों में अगर देखे तो हमारे 50 से ज्यादा लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं.
2: तो और रायपुर में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो रायपुर के धनेरी में हमने किया. ऐसे और 2-3 ऐसे गांव हैं जहां पे हमने ये चीज किया. बट अभी हम ये भी फोकस कर रहे हैं कि हम मेंस्ट्रुअल प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जगहों को एक साथ कवर कर पाए. बट हाँ, अगर ज्वाइन करने की बात की जाए तो 2-3 तरीके से हमें वो ज्वाइन कर सकते हैं. पहला, अगर स्टूडेंट है तो हम इंटर्नशिप प्रोग्राम देते हैं जिसके जरिए आप हमें हमारे अंडर में 3 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हैं, और एज इन आप मेंबर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं.
1: अभी तक आपने कितने अर्बन एरिया को आपने कवर कर लिया है इसके बारे में बताइए आस्था जी.
0: जी, हमने शुरुआत तो रायपुर से की थी. रायपुर को हमने काफी हद तक कवर किया है और टचवुड, इसके लिए हमें बहुत अच्छा भी फील होता है. इसके अलावा अगर जो दूसरे राज्यों में हम देखें तो यूपी के जितने बड़े शहर हैं वहां से स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, बिहार, यहाँ के जो कैपिटल सिटीज है, जो राजधानी
1: है,
0: जी, वहां के स्टूडेंट्स ने उन जगहों पे ये प्रोग्राम रन किया. इसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमने पिछले महीने ही दिल्ली में ये रन किया था. तो हम एक तरीके से पूरे देश के राजधानी में भी हमने ये रन किया. अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले, इसमें राजिम, गरियाबंद शहरों में और कांकेर जिले में, कबीरधाम जिले में, बेमेतरा जिले में, हम अलग अलग तरीकों से थोड़े थोड़े कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम वहां पे जब भी जाएं तो हम बड़े तरीके से काम कर पाए, बड़े रूप से काम कर पाए.
3: जी, तो ऐश्वर्या, अब इन फ्यूचर आप और कौन कौन से फील्ड में काम करना चाहते हैं, या कौन कौन से ऐसे जो चीजें रह गई है इस फील्ड में, तो कहां आप करना चाहेंगे आगे काम?
4: तो जैसे अभी मैं द पैड स्टोरी, विमेन वेयर, प्रसिद्धि पीआर सब में काम कर रही हूँ. प्रसिद्धि पीआर में भी मैंने एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट काम किया है. मैं जब से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, आई थिंक इतनी डाइवर्स है यहाँ पे, हर चीजें हैं यहाँ पे. यहाँ पे आपको एनजीओ में काम करना है, यहाँ पे वो है, आपको प्रोफेशनली एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करना है, वो है. तो यहाँ से जुड़ने के बाद इतनी फील्ड्स खुली है मेरे लिए कि अभी भी, और आई थिंक मैं उस एज में हूँ कि मैं 10 और चीजें एक्सप्लोर कर सकती हूँ. पर मैं हमेशा मैं वही चीजें एक्सप्लोर करना चाहूंगी जिससे मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, अपनी लाइफ के लिए भी, दूसरों की लाइफ के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहूंगी आगे. यही एक ही मोटिव लेके आगे बढ़ूंगी, एक्सप्लोर करूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी, एक ही मोटिव लेके कि सब कुछ अच्छा करना है.
1: आसिफ जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आस्था जी आपसे भी है ये प्रश्न, कि भविष्य में इस संस्था को आप कहाँ तक देखना चाहते हैं?
2: तो मतलब हम शुरू से ये एम रखा है,
1: जो एम है आपका, हाँ, बताइए
2: कि जो रूरल एरिया है, अगर रामानंद फाउंडेशन की बात करूँ, अर्बन ऑब्वियसली हमें एजुकेट करना है, बट रूरल एरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो इंडिया में जितने भी रूरल एरिया है वहां पे अगर मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम चाहते हैं कि पैड आर्मी, हम हमारी आर्मी को जो बोलते हैं उसको पैड आर्मी
1: जी.
2: तो वो एक ऐसा नाम भी रखा कि ये थोड़ा सा क्रिएटिव नाम हो. तो पैड आर्मी उस जगह पे जाए, उन फीमेल को लाइक अवेयर करे, उन्हें सेफ मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिस सिखाए. अगर कोई उससे रिलेटेड और भी कोई बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो उन्हें सही पर्सन से, सही हॉस्पिटल से कनेक्ट करवाए, ये चीज है. और हम पॉडकास्ट भी करते, तो लास्ट टाइम हमने, मतलब काफी समय पहले, हमने जॉब जकेरिया सर जो यूनिसेफ चीफ है उनके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे थे. उन्होंने ऐसी 2 इंसिडेंट बताए, एक छत्तीसगढ़ में और एक कहां की जगह मुझे याद नहीं, तो मोहल्ला मानपुर करके शायद वो जगह, तो वहां पे शायद आज भी ऐसी प्रैक्टिस होती है कि लाइक फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल आते हैं तो उनको बाहर किसी
1: अलग कर दिया जाता है.
2: तो वो एक जगह हमें सही करनी है. अब पता नहीं कैसे होगा या उसका लोग कैसे सोचेंगे. और एक जगह शायद छत्तीसगढ़ के बाहर है कि वहां महिलाएं पीरियड में आज भी मड और लीफ को एज अ

0: एड यूज कर। तो उन्होंने ये दो इंसिडेंट बताया था जिसके बाद हमें लगा कि यार हम अभी भी बहुत कम
1: पीछे
0: कर रहे
1: हैं,
2: बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा काम करना है। हाँ,
1: यहाँ शहर में रहकर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के साथ होते हैं उसे अनभिज्ञ।
0: और एक केस जब हम जस्ट स्टार्ट ही कर रहे थे द बैड स्टोरी, तो ये आया था कि पुणे में शायद एक केस हुआ था कि उनकी बेटी को जस्ट पीरियड आया था और उन्हें ये लगा कि उनका किसी के साथ अफेयर है, तो उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस।
1: तो आप कुछ कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं ऐसे भविष्य को लेकर?
2: वैसे तो आसिफ ने सारी बातें बोल ही दी हैं, और जैसा कि जाना जाता है कि भारत गांवों का देश है, और हम जब तक गांवों को एजुकेट नहीं करेंगे, इन्हें आगे नहीं लेकर आएंगे देश की उन्नति या विकास बोले, तो वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमने जब इस फाउंडेशन को रजिस्टर भी किया था तो इसी उद्देश्य से किया था कि हम पूरे इंडिया में एक साथ काम कर पाए। और बेशक जिस दिन हम पूरे इंडिया पे ये काम कर रहे होंगे, जो कि आई बिलीव कि बहुत मुश्किल काम है, बट जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिल रहा है हम बहुत जल्द कवर करेंगे।
3: नामुमकिन भी नहीं है।
2: हाँ, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो जब हम पूरे इंडिया में ये चीज कर पाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हम यहां की महिलाएं अब ऐसी नहीं बची हैं जिन्हें सेफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब ना पता हो, तो हम बिल्कुल भारत से बाहर भी जाना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर।
3: आसिफ जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इस विषय को लेकर के महिलाएं तो जानती हैं, माताएं भी जानती हैं, जागरूक होना है तो पुरुषों को, इस विषय में आपका क्या कहना है?
0: ऑब्वियसली सही बात है, अगर कोई महावारी या फिर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड चीजें छुपाई जा रही है तो वो मेल वर्क से, तो ऑब्वियसली हमारा ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है द पैड स्टोरी में कि हमें मेल को भी एजुकेट करना है साथ साथ। इन दौरान आप कैसे आप हेल्प कर सकते हो, कैसे आप इन चीजों में बात करके जो मेंस्ट्रुअल वर्ड है उसको वोकल कर सकते हो। मतलब जैसे ऐश्वर्या ने बताया कि लाइक हम उन्हें बताते नहीं, बट घर में रहते हुए मुझे ऐसा लगता है सबको पता चलता।
1: हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, आज तक आप बताइए।
2: वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बट जो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है महावारी या जो मासिक धर्म होता है। इस पे एक बहुत अच्छी बात है कि इट्स नॉट एन इश्यू, इट्स अ मैटर। हमको ये प्रॉब्लम नहीं बतानी है, हमको ये बताना है कि ये नॉर्मल है, हम बीमार नहीं है। अगर ये नहीं होता तो शायद दुनिया कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो इसको उतना ही नॉर्मल ट्रीट होना चाहिए जितना हम खाना खाना, सांस लेना को ट्रीट करते हैं। ये बात उतनी ही नॉर्मल तरीके से एक दूसरे से की जानी चाहिए, दूसरे लिंग से की जानी चाहिए, और उसको इतनी ही एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए जितने हमारे जीवन को।
0: एज एन मेल होते हुए मैं यही सारे मेल को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पे ऐसी फीमेल देखते हैं जो जिनको पीरियड से लाइक उनका फर्स्ट पीरियड आया, तो आप सामने से आके उनकी हेल्प करिए। और अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो फोन में काफी सारी नॉलेज आप लीजिए, देन आप उनसे बात करिए। या किसी भी कॉलेज में ऐसा बहुत सारे इशू होते हैं कि वो बुली हो जाती हैं फीमेल इस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन की वजह से, तो आप ये सारी चीजें ना करिए।
1: ऐश्वर्या आप बताइए।
4: मैं भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि हम कैसे मेल होके या फीमेल होके पैड स्टोरी को सपोर्ट कर सकते हैं या मेंस्ट्रुएशन को सपोर्ट कर सकते हैं। पर उसके अलावा इन जनरल एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी सबको, जो मेरी एज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो काम कर रहे हैं अभी, कि किसी भी तरीके से हमारे पास अगर मदद है देने के लिए तो हमें अपना हाथ आगे रखना चाहिए बिल्कुल मदद देने के लिए। और किसी भी तरीके से हम कैसे भी किसी लड़की की हेल्प कर सकते हैं, इतने अभी केसेस हमें सुनने में आ रहे हैं, हमें अगर कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल अपना हाथ आगे रखना चाहिए हेल्प करने के लिए।
3: आज आप लोग आज इतना समय निकाल कर हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए, इस आवश्यक मुद्दे पर हमने बातचीत की और बहुत से श्रोता आज जागरूक हुए, हम भी जागरूक हुए हैं, और इसके लिए बहुत बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का।
1: नमस्कार
5: साथियों, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम युवा भारत युवा संकल्प में पैड आर्मी को।
6: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
7: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
8: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
7: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
8: 47 सालों से निरंतर सेवा में
7: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
5: अपेक्षा, तुम्हें आमतौर में कैसे गाने सुनने अच्छे लगते हैं?
9: भला ये भी कोई सवाल हुआ? मुझे तो हर तरह के गाने अच्छे लगते हैं, और खास कर जो डुएट सॉन्ग होते हैं ना, युगल गीत, वो तो मेरे फेवरेट हैं।
5: मतलब तुम्हारी और मेरी पसंद तो बहुत ही मिलती जुलती है अपेक्षा। और डुएट में अगर आवाज सोनू निगम और सुनिधि चौहान की हो तो क्या ही बात है।
9: वाकई, और युगल गीत की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज है भी तो क्रम हमारा युगल गीत, तो शुरू करते हैं क्रम युगल गीत और सुनते हैं पहला ही गाना तुम्हारी पसंद का सोनू निगम और सुनिधि चौहान के स्वर में।

0: सोनू निगम और सुरिधि चौहान के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना का ये गीत। गीत लिखा प्रशून जोशी ने और संगीत दिया जतिन ललित ने।
1: और दर्शिवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा अल्पना यादव, मगलोट से पुनाराम साहू, तेजस्वरी साहू, राजश्री राजवीर साहू, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी गणेश मिस्त्री।
0: हर एक पल की अलग एक कहानी है, किसी पल लगती जिंदगी सुहानी है, कभी खुशनुमा तो कभी बेमानी है, चलना है नियति ये बहता पानी है।
1: बातें आगे भी जारी रहेगी, श्रोताओं सुनते हैं ये अगला गीत।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का ये गीत। गीत लिखा स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया शांतनु मोइत्रा ने।
1: और पसंदकर्ता थे अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार रोशन और बंसीलाल श्रीवास्तव, गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांती अर्चना, धनंजय मिश्रा, माटिया बालोद से शिव कुमार, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, बाटापारा से नारायणपुर मुनिया, राकेश, आरती यदु, सिंगा से रमेश कुमार, श्रीमती माया, रिंकू सनी, कोमल यादव, सिंगा से श्रीमती सविता, मुनिका जैन।
0: साथियों, 70 के दशक के गाने क्या ही गाने हुआ करते थे।
1: हाँ, और सदाबहार जोड़ी मुकेश कुमार और लता मंगेशकर की आवाज ने तो न जाने कितने दशकों तक रास किया है।
0: बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इसी सदाबहार जोड़ी की ये प्यारी सी आवाज़।

0: मुकेश कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोरा और काला का ये गीत। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: और पसंदकर्ता थे राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता और आदित्य कुमार श्रीवास्तव, दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी रेखा मोतीलाल साहू, गाताप्रले लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये।
0: साथियों, वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता दे कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी सजेगी हिंदी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सर्जना और इंद्रधनुष। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त अपेक्षा शुक्ला
1: और संस्कार जैन को
0: इजाजत और स्वीकारे हमारा नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3

0: छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर और सरायपली केंद्रों का प्रसारण। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है संजय मानिकपुरी का।
3: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में बीते 25 मई को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एग्रीस्टेक पंजीयन का काम जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें आगामी खरीफ सीजन में धान बेचने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे 15 जून तक अपना पंजीयन अवश्य करा लें। बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्रोताओं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में डायल 112 सेवा के तहत 10 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन प्रदान किए गए हैं। बीते 19 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक कविता प्राण लहरे और कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि

0: नंबर सब्बो बर थीम पर शुरू की गई ये सेवा लोगों को त्वरित और आपातकालीन स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम, डैश कैमरा, वायरलेस रेडियो और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इससे कंट्रोल रूम सीधे घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा। श्रोताओं, राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत इन दिनों जिले में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 28 मई को केडार गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 हितग्राहियों को आवास पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं हितग्राहियों को श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उन्नत बीज तथा हरी खाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 5 लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में मांग और समस्याओं से संबंधित 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। श्रोताओं, उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सारंगढ़ नगर पालिका परिषद बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों के अनुरूप ये राशि अधोसंरचना मद से स्वीकृत की गई है। इस राशि में बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। श्रोताओं, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 1 से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं को एथलेटिक्स, योगा, कराते, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित विभिन्न खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने पसंदीदा खेल जरूर खेलें। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें, साथ ही उन्हें मोबाइल गेम और मोबाइल की लत से दूर रखें। खेल प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था संजय मानिकपुरी का। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:10 होने को है। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ह छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में मिले दुर्लभ तांबा पट्टिका के करें जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर ले घलो करें बात। मुख्यमंत्री ह किहिन की प्रदेश में खातू और बीजा के कोनो कमी नहीं हवे औ प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव में काली 1 जून के होही मतदान। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह किहिन है कि सरकार ह देश के अमूल्य धरोहर ल बचाए बर प्रयास करत है। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में ओमन बतैन कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन ले जुड़े दुर्लभ तांबा के 3 ठिन पट्टिका मिले हैं।
3: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: प्रधानमंत्री ह रांची में रखे गए राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के घोईटांगर रहिया 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले अनिमेश कुजूर ले बात घलो करें।
4: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: श्री मोदी हा देशवासी मन ले ए दारी जोरदारहा गर्मी के दौरान ज्यादा ले ज्यादा सावधानी रखे और सरकारी दिशा निर्देश के पालन करे के अपील करिन। ओमन किहिन की ए मौसम में पानी पियत रहे और घाम में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़कुन जतन करके निकले। प्रधानमंत्री हा लोगन ले गर्मी ले बाचे बर आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और साले कढ़ी जैसन पेय पिए के अपील करिन है। श्री मोदी कहिन की खगोल विज्ञान है देश के हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगात है। खगोल विज्ञान है देश में तेजी ले लोकप्रिय होते। ओमन युवा मल्ले खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होए और छुट्टी में तारा मंडल देखे के अपील करें। प्रधानमंत्री है काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर के आम फल के गोट बात करत हुए कहिन की सबो जगह के आम के स्वाद और सुगंध अलग अलग होते। श्री मोदी है कहिन की भारतीय आम दुनिया के बाजार तक अपन पहुंच बनाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और आम लोगन संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ल सुनिन। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री है कहिन की आज प्रधानमंत्री है जशपुर जिला के घोईटांगर गांव के युवा धावक अनिमेश कुजूर के उपलब्धि के बारे में बात करत हुए प्रदेश के युवा मल्ला यही संदेश देहे कि कम संसाधन है प्रतिभा के उड़ान ल रोक नहीं सके। ओमन कहिन की प्रधानमंत्री है राष्ट्रीय मंच ले प्रदेश के प्रतिभा और सांस्कृतिक धरोहर दोनों के बात करके पूरा छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाए है। सुनिया मल्ल बता दें कि अनिमेश कुजूर है 100 मीटर दौड़ ला सिर्फ 10.15 सेकंड में पूरा करके नवा रिकॉर्ड बनाए हैं और राष्ट्रमंडल खेल 2026 बर क्वालिफाई घलो हो गए हैं। खेत बचाओ अभियान देश भर में काली 1 जून ले 30 जून तक चलिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है कहिन है कि खेत बचाओ अभियान में खेत, किसानहा और गांव मल्ल जोड़त हुए एला बड़का देशव्यापी अभियान बनाए जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री है नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान के तैयारी के बारे में एक ठीन बड़का बैठका के अगुवाई करत हुए ए बात कहिन। ओमन कहिन की ए अभियान के मुख्य ध्यान खातु के संतुलित और सही उपयोग, मौसम के चुनौती ल देखत हुए किसानहा मल्ल सही बेरा में परामर्श, पंचायत स्तर में किसान मन के सक्रिय भागीदारी और गांव ल सीधा ये योजना ले जुड़े ऊपर ध्यान होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है सुशासन तिहार में आज दुर्ग जिला में रखे गए कार्यक्रम में 737 करोड़ रुपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करें। ए मौका में मुख्यमंत्री है कहिन की ए सबो परियोजना है क्षेत्र में नागरिक सुविधा के विस्तार और विकास ल आखिरी आदमी तक पहुंचाए के हमर सरकार के संकल्प ल और ज्यादा बल दही। मुख्यमंत्री है आज दुर्ग में आईटी पार्क के उद्घाटन घलो करिन। आईआईटी भिलई, नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग ले बने ए आईटी पार्क है युवा मन बर रोजगार, नवा प्रयोग और स्टार्टअप के नवा मौका के ठीहा बनी। इही मौका में पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए मुख्यमंत्री है कहिन की प्रदेश में खातु और बीजा के कमी नहीं हवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।

0: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता अउ खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव में काली 1 जून के मतदान होही। राज्य निर्वाचन आयोग है मतदान बर सबो तैयारी पूरा कर ले है। ए चुनाई बर सनिच्चर रतिहा 12 बजे प्रचार थिरागे है। एकर बाद प्रत्याशी मन घर घर जाके मतदाता मन ले भेंट करत है। सुनिया मल्ल बता दन कि नगरी निकाय में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत में कुल 392 प्रत्याशी मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई में नाम वापसी होए के बाद पंच के 640 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गए रहिस, जेखर बाद काली 1 जून के 107 पद पर वोटिंग कराए जही। उन्हें सरपंच के 15 पद ऊपर निर्विरोध निर्वाचन हो गए है और अब बांचे 34 पद पर मतदान होही। एकरे जैसन जनपद सदस्य के 10 पद पर वोटिंग होही। नगरी निकाय चुनाई के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष के 5 पद पर मतदान होही। नगरी निकाय चुनाई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के माध्यम ले और पंचायत चुनाई में मत पेटी के माध्यम ले वोट डाले जही। कोरबा जिला में काली संझा 3 युवक मन ऊपर पेड़ के डारा गिर गए, जेखर ले तीनों जन के मौका में ही मौत हो गए। बताया जावत है कि पाली थाना क्षेत्र के चोरका डांड गांव में पानी और तेज हवा ले बांचे बर ए तीनों जन यह पेड़ के तरी खड़े रहिन। इसी दौरान तेज हवा गर्रा के कारण पेड़ के एक हिस्सा हर टूट के सीधा उही ऊपर गिर गए, जेमा दब के तीनों जन के मौत हो गए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस हवे। ए मौका में छत्तीसगढ़ के आने आने जिला में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली पोस्टर और रील प्रतियोगिता रखे गिस। संगे संग दांत के डॉक्टर मन ह लोगन ल तंबाकू खाए ले होवैया नुकसान के बारे में घलो बताइन। उन्हें समाज कल्याण विभाग के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ह प्रदेशवासी मन ले तंबाकू और आने नशीला सामान ले दूरिया रहे के अपील करे है। ओमन किहिन की तंबाकू ह मनखे के तबियत के संगे संग परिवार और समाज तीनों बर बड़का खतरा है। युवा मल्ला नशा ले बचाए बर समाज के सबो वर्ग ल मिलजुल के काम करना होही। अब थोर कुन समाचार सार मा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज कबीरधाम जिला के रामहेपुर गांव में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जयंती समारोह में शामिल होइन और कबीरधाम जिला के बैहरसरी गांव ले एक युवक के हत्या के मामला में पुलिस ह 3 आरोपी ले गिरफ्तार करे है। आखिरी में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ह छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में मिले दुर्लभ तांबा पट्टिका के करिन जिकर, जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर ले घलो करिन बात। मुख्यमंत्री ह किहिन की प्रदेश में खातू और बीजा के कोनो कमी नहीं हवे और प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाई में काली 1 जून के होही मतदान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक ललित मोहन तिवारी। आदौ मुख्य वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिकपेयपदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिकतः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम अद्य अहमदाबादस्य नरेंद्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलका

0: पट्टिका अभी प्राप्त।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्मऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात् रक्षणं प्राप्तुम् आमपन्नम्, तक्रम्, सत्तुपेयम्, बेलपन्नम्, पानकम्, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभव निहितः अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीड़ा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः 800+ क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ 100 मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिन्दर वीर सिंह तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: नूतनः CDS इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणिः अद्य उक्तवान् चिन्तने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहितसंरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालनसम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य, प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसङ्कल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक प्राङ्गणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड आफ् आनर इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रिय युद्धस्मारके पुष्पाञ्जलिरपि समर्पिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल

0: श्रोताओ नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, आज हमारा विषय है घरेलू हिंसा और समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं श्री मयंक सिंह ठाकुर, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल धमतरी से है। तो मयंक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मयंक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा क्या है और इसके क्या क्या प्रकार है।
1: जी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं मुझे अपनी ये मंच प्रदान किया अपनी बात रखने के लिए।
0: जी
1: घरेलू हिंसा बहुत कम लोग समझते हैं कि होता क्या है। मेरा ये कहना है कि घरेलू हिंसा को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां कुरीतियां स्थापित हैं। घरेलू हिंसाओं से सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो महिलाएं हैं। घरेलू हिंसा में हम ये जानते हैं कि घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो घर के परिप्रेक्ष्य में रहती हैं, उनके साथ विभिन्न प्रकार

0: के शोषण किया जाता है, जिनसे उनको स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन और मानसिक और शारीरिक कई प्रकार की अपहानि होती है
1: जी।
0: शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक हो, भावनात्मक हो या आर्थिक दुरुपयोग भी इसकी श्रेणी में आता है
1: जी।
0: जिसके में हम विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिसको अगर हम कहें तो शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में होता है मारना, पीटना, धक्का देना, बाल खींचना या विभिन्न प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाना, ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। मानसिक और भावनात्मक शोषण भी अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफदायक है महिलाओं के लिए, कि लगातार अपमानित करना कि आप समाज में मुख्य धारा में रहने लायक नहीं है, या बुरा भला कहना, या धमकाना, घर से निकालने की कोशिश करना, दहेज के लिए ताने मारना, बच्चा ना होने को लेकर उन्हें बातें कहना, कम पैसे अपने मायके से लाने को लेकर कहना, या रहन सहन, खान पान, कपड़ों को लेकर ताने मारना, यह मानसिक शोषण के अंतर्गत आता है
1: जी।
0: यौन हिंसा में हम कह सकते हैं कि महिला की मर्जी के बगैर उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करना या जबरदस्ती करना यौन हिंसा के अंतर्गत आता है
1: जी।
0: इसमें आर्थिक शोषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि महिलाओं को नौकरी करने से रोका जाता है, अगर वो कमाई करती है तो उसकी कमाई को छीन लिया जाता है, कि घर खर्चे में डाल दिया जाता है और उसे उसकी कमाई अपने पास रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। घर खर्चे की जो बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक महिला को, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कई प्रकार की धारणाओं से ग्रसित रहती है और आर्थिक रूप से हमेशा अपने आप को कमजोर और पिछड़ा महसूस करती है
1: जी। तो मयंक जी, जैसे आपने बताया घरेलू हिंसा के बारे में महिलाओं को लेकर, तो इसमें क्या महिला ही पीड़ित हो सकती है?
0: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो बनाया गया है, इसमें पूर्णतः स्पष्ट किया गया कि केवल एक महिला ही जो है घरेलू हिंसा की पीड़ित हो सकती है।
1: अगर जो पीड़ित महिलाएं हैं स्वयं घरेलू हिंसा की सूचना न दे पा रही हो, तो कौन कौन महिला की ओर से सूचना दे सकती है?
0: जी, सबसे पहले तो महिला खुद अगर स्वयं अपनी जो साथ जो गलत हो रहा है वो बताए तो ज्यादा बेहतर है, परंतु अगर उसे घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, या वो डर रही है, या बताने को हिचकिचा रही है, या किसी प्रकार से नहीं बताना चाह रही है, तो कोई व्यक्ति है जो उसका, चाहे उसका पड़ोसी हो, नाते रिश्तेदार हो, या किसी प्रकार से कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे इसकी जानकारी कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो वह आकर इसकी सूचना थाने में दे सकता है, सखी सेंटर में दे सकता है, नव अभियान में दे सकता है, ताकि किसी प्रकार से ये एक सही चैनल में अगर आता है
1: जी,
0: तो उसके बाद वो महिला को हम संरक्षण कर सकते हैं और उसको हम बचा सकते हैं, कि घरेलू हिंसा से उसके पीड़ित रहने की आवश्यकता नहीं है, समाज उसके लिए बेहतर करना चाहता है और कानून उसके साथ है।
1: अच्छा, घरेलू हिंसा के कोई ऐसे प्रमुख कारण होंगे कि घरेलू हिंसा आखिर होती क्यों है, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी, घरेलू हिंसा के मूल कारण अगर हम कहें तो एक जो पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, सत्ता जमाने की जो इच्छा है कि मेरे नियंत्रण में ही पूरा घर रहे, ये जो पुरुष की एक संकीर्ण मानसिकता हम कह सकते हैं, कि वो अपनी पत्नी को या अपने घर में जो महिला है उस पर पूर्णतः अपना अधिकार समझता है, उसे एक वस्तु की तरह प्रयोग करने का प्रयास करता है। यह जो पुरुषवादी मानसिकता है कि लड़कियां या महिलाएं जो है वो कमतर हैं, या दहेज को लेकर उसकी जो लालसा है कि मुझे कितना पैसा या क्या संपत्ति मुझे शादी के माध्यम से प्राप्त हो जाए, या जो शराब की जो लत है, या जो अन्य प्रकार के नशे जो हम देख रहे हैं समाज में जो व्याप्त हो रही है, उस नशे की वजह से जो संकीर्ण मानसिकता आ रही है इंसान के अंदर, ये हो सकता है। और विवाह के दौरान जो संबंध अलग स्थापित किए कर रहे हैं लोग, जो अपनी पत्नी के अलावा जो गैर संबंध बनाए जा रहे हैं, या जो यह शक करना अपनी पत्नी के ऊपर कि इसका कहीं और संबंध है, और उस कारण से महिला को जो शोषण कर रहे हैं कि मैं इसे मारना, पीटना, चिल्लाना, पैसे ना देना, अन्य प्रकार से जितनी भी तकलीफें महिलाएं जो आज फेस कर रही हैं, उनका मेन कारण यह है कि पुरुष ये मानने को तैयार नहीं है कि महिला उसके बराबर की व्यक्ति है
1: जी। तो मयंक जी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला कैसे सहायता प्राप्त कर सकती है?
0: घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है वो चाहे तो अपने पास के थाने जा सकती है, वहां जाकर बोल सकती है, कोर्ट आ सकती है, न्यायालय आकर अपनी व्यथा बता सकती है, या विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में स्थापित है वहां आकर अपनी पीड़ा बता सकती है। सखी वन स्टॉप सेंटर जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, जो हर जिले में स्थापित है, वहां जाकर अपनी व्यथा बता सकती है, या वो चाहे तो नव अभियान जो हर जिले में संचालित है, वहां जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वहां बता सकती है। महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, वहां कॉल कर सकती है और स्वयं भी कर सकती है। कोई भी इंसान बता सकता है कि इस महिला को यह तकलीफ हो रही है और उसको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की जाती है
1: जी। जैसे मयंक जी आपने जिक्र किया अभी कि जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है उसके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से कौन सी योजना है जो चलाई जा रही है,
0: जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2005 में एक योजना शुरू की थी, नवा बिहान योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता एवं आश्रय सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत एक महिला अफसर जो संरक्षण अधिकारी के तौर पर कार्य करती है, यह धारा 8 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय में संरक्षण अधिकारी जो एक महिला ही होगी, वह इसकी देखरेख करती है और पूर्णतः महिला को सपोर्ट करती है, उसका समर्थन करती है, उसे न्यायालय तक लाना, मजिस्ट्रेट के सामने उसकी मदद करना, केस फाइल करने में मदद करना, थाने में जाकर के उसकी मदद करना, उसको आश्रय प्रदान करना। तो हर प्रकार से, एक तरह से संरक्षण जो शब्द है, ये शाब्दिक रूप से महिलाओं को संरक्षण देने हेतु संरक्षण अफसर ही उसको पूर्णतः समर्थन करता है।
1: जी जी मयंक जी, अभी आपने जिक्र किया था कि सखी वन स्टाफ सेंटर, तो इसमें सखी वन स्टाफ सेंटर में महिलाओं को कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती है, उसके बारे में बताइए।
0: जी, जैसे कि नवा बिहान योजना जो पूर्णतः घरेलू हिंसा को लेकर ही फोकस्ड है, परंतु जो सखी वन स्टॉप सेंटर है जो केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत महिलाएं या लड़कियां जो घरेलू हिंसा से हो, चाहे यौन हिंसा से हो, चाहे वो बलात्कार पीड़ित हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार से पीड़ित हो, किसी भी केस में वन स्टॉप सेंटर में आ सकती है। वन स्टॉप मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो भी तकलीफ है वो सखी वन स्टॉप सेंटर में हर जिले में जो उपलब्ध है वहां आ सकती है, वहां पहुंच सकती है और वहां पर 5 प्रकार की सुविधाएं ले सकती हैं।
1: इनका भी कोई संरक्षण अधिकारी होता है?
0: जी, ये संरक्षण अधिकारी जो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नवा बिहान में घरेलू हिंसा के लिए विशेष तौर पर हैं, धारा 8 के अंतर्गत, वो तुरंत इनकी सहायता हेतु तत्पर रहते हैं, उन्हें इनकी सूचना दी जाती है और वो कानूनी सहायताएं प्रदान करती हैं उन्हें और मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में मदद करती हैं कि किसी प्रकार से न्यायालय में ये केस जाए और इन्हें विभिन्न प्रकार के अनुशासों का लाभ मिल सके।
1: जी मयंक जी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोषों के आदेश अभी प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी, धारा 12 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम में धारा 12 में कोई भी व्यथित व्यक्ति से मेरा कहना है, जो महिला है, जिसके साथ जो पीड़ित है, जिसके साथ जो गलत हुआ है, वह संरक्षण अधिकारी के समर्थन के साथ व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत एक से अधिक अनुतोष प्राप्त कर सकता है, चाहे वह घर में रहने का अधिकार हो जहां वो शादी होकर गई है, चाहे उन्हें किसी प्रकार का धनी लाभ लेने की आवश्यकता है वो है, चाहे स्त्री धन है। जैसे स्त्री धन को मैं यहां बताना चाहता हूं सर, स्त्री धन महिलाओं का अधिकार है। शादी के दौरान, शादी से पहले, शादी के पश्चात जो भी धन संपत्ति महिला को मिली है या उसकी पूर्णतः उसकी संपत्ति है, इस पे किसी प्रकार से ससुराल वालों का अधिकार नहीं है और महिला को इसे रखने का अधिकार है। अगर स्त्री धन महिलाओं का उनसे लिया जाता है ससुराल वालों के द्वारा, तो ये उसे वापस पाने का अधिकार रखती है, जिसके लिए वह मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष आकर अपना आवेदन दे सकती है और अपनी स्त्री धन को वापस प्राप्त कर सकती है एवं अन्य मूल्यवान वस्तु जो भी उसके हक से वापस लिया गया है उसे दिया जा सकता है।
1: जी मयंक जी, जो पीड़ित व्यक्ति है वो धनी अनुतोष किस प्रकार प्राप्त कर सकती है?
0: जी, अनुतोष इस प्रकार से प्राप्त कर सकती है सर, धारा 12 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिला है उसे किसी संतान के व्यय हेतु या खुद की हानियों में जो उसे तकलीफ हुई है, मानसिक या शारीरिक जो उसे तकलीफ हुई है, उसके लिए कंपनसेशन, ये अनुतोष प्राप्त कर सकती है। न्यायालय उसमें स्पष्ट निर्देश कर सकता है कि इतने पैसे या 1,000 रूपये, 1,00,000 रूपये, 50,000 रूपये, जो न्यायालय को उचित लगे उसे पैसे दिलवा सकता है ताकि उसको जो तकलीफ हुई है उसके लिए उसे अनुतोष प्राप्त।
1: मयंक जी, घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है?
0: जी, पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। सबसे पहले तो जैसे सखी सेंटर है वहां पूर्णतः महिला स्टाफ होता है।
1: जी,
0: अगर कोई तकलीफ है महिला आकर बताती थाने, तो महिला स्टाफ उसे पूर्णतः देखेगा।
1: जी जी,
0: जो संरक्षण अधिकारी वो एक महिला होगी, मतलब महिला अफसरों को ही पूर्णतः नियुक्त किया जाता है कि महिलाओं को जो तकलीफ हो रही है उन्हें वो अपने विचार रख सके, क्योंकि बहुत से हमारा जो समाज है वो महिलाएं अभी भी घूंघट में रहना या जल्दी समाज में खुलकर बोलने से अभी भी हिचकिचाती हैं, तो इस वजह से महिलाओं को ही इसका दायित्व दिया गया है कि वो अपनी बातों को महिलाओं को ही बोले ताकि जो महिला अफसर है उनका पूर्णतः समर्थन कर सके।
1: जी जी मयंक जी, महिला और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी हेल्पलाइन उपलब्ध है, इसके बारे में बताइए।
0: जी, हेल्पलाइन नंबर मैं बोल देता हूं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में 1500 में आप कॉल कर सकते हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 में आप कॉल कर सकते हैं, महिला हेल्पलाइन पुलिस नंबर है 1091 और सामान्य पुलिस इमरजेंसी है 112। आप इनमें से किसी भी नंबर में कॉल करके अपनी व्यथा बता सकते हैं और आपको त्वरित आपको समर्थन करने के लिए आपको ध्यान रखने के लिए पुलिस और अन्य जो हमारे प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए उपस्थित रहेंगे।
1: जी जी, क्या घरेलू हिंसा के मामलों में समझौता और काउंसलिंग की भी व्यवस्था होती है?
0: जी बिल्कुल, काउंसलिंग की व्यवस्था सखी सेंटर में भी है, काउंसलिंग की व्यवस्था न्यायालय में भी है। न्यायालय भी आदेश करता है कि काउंसलिंग के माध्यम से केस को किया जाए, समाप्त किया जाए, क्योंकि राजी खुशी रहना ही समाज में मुख्य उद्देश्य है। न्यायालय ये नहीं चाहता है कि पति जेल ही जाए, न्यायालय का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो पीड़ित है, जो अपनी व्यथा बता रही है, उसे न्याय मिले और न्याय मिलने के पश्चात वह खुशी खुशी दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहें। अगर काउंसलिंग के माध्यम से संभव होता है तो काउंसलिंग की जाती है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि इसने बहुत ज्यादा तकलीफ दी महिला को और इसने जो हम कह सकते हैं क्राइम किया है, तो उन परिस्थितियों में फिर जेल जाने का भी प्रावधान रहता है। पर यह पूर्णतः महिला पर है कि वो क्या चाहती है, कि अगर वो क्रुएल्टी में केस कर रही है सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में, या घरेलू हिंसा का केस कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही है, तो अन्य या दहेज प्रताड़ना का कर रही है, या फिर मेंटेनेंस प्राप्त करना चाहती है। यह भी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि मेंटेनेंस का जो अधिकार है महिला का, ये बुनियादी अधिकार है। शादी के पश्चात हस्बैंड की ये जिम्मेदारी है कि उसे वो मेंटेनेंस के पैसे दे ताकि वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके।
1: जी, अंत में रेडियो श्रोतागण है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है श्रोताओं से कि आपको घरेलू हिंसा रोकना होगा। आपके घर में हो रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रोकना होगा। रोकने का एक ही तरीका है, हर इंसान अगर अपने पड़ोस में क्या हो रहा है ये देख लेना कि क्या मेरे पड़ोस में जो दीदी ये भाभी माता हैं उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, तो उसे टोल फ्री नंबर में अगर हम कॉल कर दे 1511 10 91 या 112, आपका एक फोन कॉल उस महिला का जीवन बदल सकता है। आपको ये जो हमारी धारणा है कि हमारे घर में नहीं हो रहा है हमें क्या करना है, इससे समाज नहीं सुधरेगा। समाज सुधरने के लिए श्रोताओं को ये जागरूक होना होगा कि हमारे बिल्डिंग में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में ये ना हो। और एक बार ये कुरीति समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे कि महिलाएं और भी ज्यादा खुशी से समाज में योगदान कर पाएंगी।
1: जी, तो मयंक जी, आपने घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता विषय पर इतनी विस्तृत से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: कानून की बात। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरूतियों के संबंध में कानूनी सहायता विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री मयंक सिंह ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: पुलिस?
6: मिस सीमा
5: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों, लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1,00,000 बच जाओगे।
5: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
11: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
10: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
11: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
10: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
11: क्यों?
10: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
12: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
13: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
14: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
13: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
12: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिले दुर्लभ तांबे की पट्टिकाओं का किया जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है और प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बल्लार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
7: किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के घुईन टांगर निवासी 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले अनिमेश कुजूर से भी बात की।
15: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
7: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आमजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जशपुर जिले के घुईन टांगर गांव के युवा धावक अनिमेश कुजूर की उपलब्धि का उल्लेख कर प्रदेश के युवाओं को यह संदेश दिया है कि सीमित संसाधन किसी प्रतिभा की उड़ान को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मंच से प्रदेश की प्रतिभा और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का उल्लेख कर पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाया है।
16: बड़ी खुशी की बात है कि कई बार के मन की बात में छत्तीसगढ़ का लगातार जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है। एक तो जिस जिले से हम आते हैं जशपुर, वहां के अनिमेश कुजूर हैं, लेकिन उड़ीसा से वो खेलते हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर और 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो मल्हार है वहाँ का जो ताम्र पत्र है उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: गौरतलब है कि अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ मात्र 10.15 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए क्वालिफाई कर प्रदेश तथा देश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत आज दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में 737 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सरकार के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग में आईटी पार्क का उद्घाटन भी किया। आईआईटी भिलाई नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग से निर्मित यह आईटी पार्क युवाओं के लिए रोजगार, नवाचार और स्टार्टअप के नए अवसरों का केंद्र बनेगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है।
17: प्रदेश में कहीं भी न बीज की न खाद की कमी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और चूंकि डीएपी वगैरह की उपलब्धता बाहर से होती है उतना पैदावार नहीं है हमारे देश में कि मतलब पूर्ति कर पाए। कहीं अगर कमी हुई है तो वो स्टॉक की कमी के कारण नहीं वहाँ पर पहुँच नहीं पाया होगा। और जैसे जैसे लगातार रोज की रोज समीक्षा कर रहे हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों से आह्वान करना चाहूंगा कि उनको किसी भी दृष्टि से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खेत बचाओ अभियान देश भर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। देश भर में इन दिनों जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है। प्रगणकों के घर घर जाकर 33 प्रश्नों के आधार पर मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संकलित की। राज्य में यह अभियान 33 जिलों, 252 तहसीलों, 195 नगरी निकायों और 19,000 से अधिक गांवों में चलाया गया। जनगणना कार्य में 62,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रदेश के जनगणना निदेशक ने अभियान की सफलता के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। गौरतलब है कि जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा। प्रदेश में नगरी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इन चुनावों के लिए शनिवार रात 12 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगरी निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंच के 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ है। शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरी निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरी निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मत पेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। कोरबा जिले में कल शाम 3 युवकों पर पेड़ का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पाली थाना क्षेत्र के चोर का दान गांव में बारिश और तेज हवाओं से बचने के लिए ये तीनों युवक एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान तेज आंधी के कारण पेड़ का एक हिस्सा टूटकर सीधे उनके ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर तीनों युवकों की मौत हो गई। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली, पोस्टर और रील प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्रों ने तंबाकू निषेध का संदेश दिया, साथ ही दंत चिकित्सकों ने लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया। वहीं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज नवा रायपुर में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर की गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिकों से प्रदर्शनों और प्रभावी विस्तार तंत्र के माध्यम से नई विकसित कृषि प्रौद्योगिकी को खेतों तक स्थानांतरित करने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के ग्राम रामहेपुर में आयोजित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती समारोह में शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आज आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक का शव रखकर चक्का जाम किया। और कबीरधाम जिले के ग्राम बहररसरी में से एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिले दुर्लभ तांबे की पट्टिकाओं का किया जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है। और प्रदेश में नगरीय निकायों त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
18: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
19: आगे सैलरी नहीं झुमके
20: ना, पहले बचत,
19: पहले झुमके।
20: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
19: लेकिन झुमकों का क्या?
20: जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन।
21: आरबीआई कहता है
22: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
23: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब पेश है चित्रपट संगीत।

कुमार सानू की आवाज में कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत, फिल्म है कभी हाँ कभी ना।

PIR at 90. चित्रपट संगीत का अगला गीत यस बॉस फिल्म से, आवाज कुमार सानू की, गीत जावेद अख्तर का, संगीत है जतन ललित का।

यस बॉस फिल्म का ये गीत था कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया जतन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गाना जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम की, गीत मजरूह का, संगीत जतन ललित का।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसानों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम नीतू दीदी।
1: राम राम लाल जी भाई, और संगे संग चौपाल सुनैया हमर जम्मू संगवारी मल्ला, हमर दोनों के राम राम, राम। भाई लाल जी बता, अब बड़ दिन बर भेंट हो है। वैसे तो संगवारी मन संग रोज भेंट होते हैं, चाहे घाम रहे चाहे पानी रहे, भेंट करे बर ताबेज करता। फिर ऐसे है कि अभी तक गर्मी बाढ़ गए हैं, और ये बता कि तो डहर दिन बादर है कैसे है?
0: अब ऐसे है दीदी, का है गुरु घर के दिन आ गए हैं, है ना, एक तरफ मनमाने गर्मी है, दूसर तरफ ये गुरु घर के दिन बादर आ गए हैं।

0: रबी फसल के बूता हरे अभी लगभग सिरावत हे और कतको के तभी धान हलुआए घलो नहीं है और खरीफ फसल के तैयारी घलो चालू हो गए है भाई।
1: लाल जी बात तस्वीर तो नहीं भाई, कोनो भी बूता होए ओखर बर पहली ले तैयारी करके राखन तो जैसे निंदई कोड़ई के समय में सुविधा होते और काटा खुटी के बिनई ला पहली ले कर दे तो ऐसे रहते कि दवाई खातू छीतत बेरा कोनो दिक्कत नहीं होए। गहरी जुताई के भी बहुत महत्ता है, काबर की कतकोन हानिकारक जीव हर माटी के भीतर में लुकाए रहते और पौधा जब जागते ना तब बाद में बाहर निकलते और फसल ला नुकसान पहुंचाते। गहरी जुताई या ऊपरी जुताई करे ले कतकोन बन बूटा और हानिकारक जीव ह नष्ट हो जाते, त कीड़ा बीमारी के प्रकोप थोकी कम हो जाते।
0: हाँ सिरतोन बात है दीदी, और यही सब का है कि खरीफ फसल के जो पहली के तैयारी है और तैयारी बहुत जरूरी होते, संग में जेकर खेती करना है चाहे धान हो या दलहनी हो या तिलहन के फसल हो, एकर उन्नत बीज के चुनाव करना बहुत जरूरी होते हैं। सही और रोग प्रतिरोधी जैसे किस्म हम लेथन और कम पानी में ज्यादा उत्पादन वाला बीज, काबर आजकल पानी की समस्या घलो देखेल मिलते। आजकल नवा नवा किस्म बाजार में आ गए है और हमर वैज्ञानिक मन हर घलो कतको नकन हरहुना और माई धान के किस्म विकसित करे है जे हर आज के जरूरत के हिसाब ले बहुत बढ़िया है।
1: ऐसे है कि लाल जी कि छत्तीसगढ़ में धान के उन्नत किस्म के बात करन तो मुख्य रूप से MTU 1010, MTU 1001, महामाया, कर्मा मासूरी, चंद्रहासनी, स्वर्णा सब एक, ये सब किस्म हर कम समय माने 125 दिन ले 130 दिन के जिन ज़्यादा पैदावार दे देते ये दिन के अंदर में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तको नवा विकसित किस्म निकाले गए जैसे विक्रम TCR, दुबराज म्यूटेंट एक, जमा फूल, ये सब किस्म हर अधिक उपज देवैया हरे, संगे माँ देखे जाए तो ये मन हर कीट रोधी भी होते।
0: हाँ सही बात कह दीदी, देख आजकल जब कोनो खेती करबे नहीं तो में बीमारी लगी तहन लगातार दवाई छीते में अबड़ खर्चा आ जाते है ना, तो माटी और जगह के आधार में यदि हम बात करन तो जैसे सिंचित मैदानी क्षेत्र है जिमे जल्दी पकैया किस्म की जरूरत होते है, हाँ हाँ ओमे MTU 1010 है, MTU 1001 है, महामाया है, समलेश्वरी है, PKV HMT और कोनो खाले या कन्हार भुइया के बात करन तो ओकर बर थोड़ी देर ले पकैया किस्म के जरूरत होते, काबर की पानी के निकासी जल्दी नहीं होल धरे तो ओकर बर जैसे कर्मा मासूरी है, चंद्रहासनी है, इंदिरा राजेश्वरी है, दुर्गेश्वरी है, स्वर्णा सब एक है, ये सब के प्रयोग करके हमर किसान संगी मन अपन खेती किसानी के बूता ल शुरू करके और बने देख रेख करे तो ज्यादा ले ज्यादा लाभ हमें ले सकते।
1: कतकोन हमर किसान संगी मन हा परंपरागत धान के किस्म ला ले उखर ले हट के कुछ अलग करे के बारे में सोचते। उखर मन बर सुगंधित धान के खेती हर बड़ फायदा के हो सकत है, जेखर प्रमुख और उन्नत किस्म है इंदिरा सुगंधित धान एक है, जीरा फूल है, विष्णु भोग है और नवा किस्म आए है तो उमें विक्रम TCR, TC विष्णु भोग, TC सोना गांधी, TC दुबराज एक, बोना लुचाई, TC जवा फूल, एक हर हम सही ढंग ले खेती करन तो ऐसन किस्म के चावल के मांग बाजार में अधिक होते जेखर लाभ हमला मिल सकते। और बात करन हाइब्रिड किस्म के तो उमें प्रमुख रूप ले इंदिरा सोना, एराइज 6444, गोल्ड PRH 10, सहाद्री, जैन संगी मन हाइब्रिड धान के खेती करना चाहते तो ये मन के किस्म के प्रयोग करके ज्यादा ले ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
0: दीदी कतकोन हमर किसान संगी मन ऐसे है जे अपन परंपरागत खेती के तहत जो बीजा है वो नवा बीज नहीं ले धरे, तो हमर जो कार्यक्रम है एकर माध्यम से भी बीच बीच में औषधि धान या सुगंधित किस्म के धान
1: औषधि गूंढ रही थे है ना, तेन वाले
0: एकर खेती करके भी भले उसमें उत्पादन कम आते लेकिन मांग के आधार पे ओकर रेट बढ़िया मिल जाते है ना। तो धान के खेती के जब बात करथन तो सिंचाई पानी और खाद उर्वरक के बहुत जरूरत होते हैं और ओकर निश्चित मात्रा और सही समय में यदि ओला छिड़के जाए तब जा करके फसल बढ़िया होते। संगे संग बीज के जो निश्चित मात्रा है का है कतको बेरा ऐसे होते कि कम बीज छीट देवे तो बाद में दिक्कत आते हैं, ज्यादा बीज छीट देवे तो निकाले पड़ जाते हैं।

0: और यदि हम जैसे बुआई के किस्म के बात करन तो जो बोईता किस्म होते जेम सीधा बुआई करे जाते ओकर बर 20 ले 25 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होते। और उन्नत किस्म के जैसे बात करन रोपाई बर तो इमें श्री विधि के प्रयोग करन तो अच्छा और ज्यादा उपज मिल सकते। कोनो भी विधि होए सब बर पर्याप्त मात्रा में पानी होना सबले ज्यादा जरूरी होते। खेत में यूरिया है, नाइट्रोजन है और पोटास के उचित अनुपात में यदि हम उपयोग करत हन तब माटी में पोषक तत्व के कमी जो होते ओकर पूर्ति होई और पौधा स्वस्थ रही तभी तो हमला बहुत ज्यादा लाभ मिली भाई।
1: लाल जी आगू औ गोठियाबो फिर सुन लेथन ये संदेश ला।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: दीदी बड़ सुग्घर अगन अभी खेती किसानी गोट बात करत रहन और संग में सुरुम कहात रहन कि मनमाने घाम
3: करत
2: है ना, तो हमर जोन गीत संगीत है ये है सबो, चाहे घाम होए चाहे ठंड होए चाहे बरसा होए, सबो के मौसम ला बढ़िया आनंददायक बना देते। तो ऐसने आनंददायक गीत सुनथन जेला स्वर दे है बैतल राम साहू और आशा साहू हर।

0: बुद्धू नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: दीदी अभी जैसे गोट बात करत रहे ना, वो हमर गीत हर घलो बतात रही से कि जीवलेवा घाम लगे कहके है ना, और जब रद्दा बाट में रेंगत रबे ना तो थोकिन छाव के अगोरा रथे कि कदे कर छाव मिली इसे कि को जैसे छैया जगह में बैठबे ना तो जगल उठे के मन नहीं करे। तो संगी हो, जैसे हम अपन शरीर के ध्यान रखथन वैसने अपन पर्यावरण के भी ध्यान हमला रखना जरूरी है। काबर की पर्यावरण ले हमर जिंदगी के हरेक अंश सह जुड़े हुए हैं। जन्म ले लेकर के मृत्यु तक के सफर पर्यावरण के बीच में ही होते हैं। ऐसन में हवा पानी हरियाली खुशहाली जम्मो बर पर्यावरण के सुरक्षा जरूरी है। तो बेरा बेरा में हमला पेड़ लगाना चाहिए, और ऐसे नहीं कि पेड़ लगा के छोड़ देवन, ओकर देखभाल सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। संग में ऐसन पेड़ लगावन जेहर हमर आने वाला जो पीढ़ी है ओला भी छाए और फल प्रदान कर सके।
4: कथे भी लाल जी कि धन ले ज्यादा अपन शरीर और पर्यावरण के सुरक्षा करन है नहीं। धन जब का पर्यावरण और शरीर रही स्वास्थ्य रही ना, तो हम तो औ कमा लेबो धन। फिर कौन धन रही हमारे तीर, तो हम पर्यावरण हमारे तीर स्वस्थ नहीं है, हमारे शरीर है स्वच्छ नहीं है, तो वो धन है कुछ काम के नहीं,
3: सब बेकार
4: है नहीं। तो वो ऐसे है लाल जी कि आजकल देखे ला मिलते कि गर्मी के मारे रुख राय जीव जंतु सब हलाकान है, पिए और रोजमर्रा के जरूरत भर पानी उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसन में जब वर्षा होते तो ओला वाटर हार्वेस्टिंग के जरिया या नदी नालामा बांध बना के सुरक्षित किए जा सकत है, जेखर ले लगातार गिरत भूजल स्तर है ओमा सुधार हुई और पानी के जिन समस्या है ओकर निजात तको मिल जाही।
3: ये तो बहुत अच्छा बात बतात रहे दीदी। वास्तव में आजकल देखेल मिलते कतकोन मोटर पंप में पानी निकलना बंद हो जाते है ना,
4: बोर सुखा जाते
3: और पीएच के पानी नहीं निकल ही तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाही। तो पहली के बेरा में का रहा है कि रद्दा के रेंगैया मन ला जब घाम लगे तब और खेत में जो कमैया है ए मन घलो सुरताय बर पेड़ के सहारा लेवे। फिर आजकल लगातार अंधाधुन पेड़ के कटाई चलत है दीदी, वो दिन खेत तो नहीं गे रहे हो, काटा खुटी बिनना है कही के, तो घाम लगी तो फिर पेड़ खोजे लग गए। काबर की जो बड़े बड़े पेड़ रही से ओकर कटाई हो गए है, अब एकर ले का है लगातार जो हमर पर्यावरण है प्रदूषित हो जावत है। न तो बैठे बर छाव मिलत है, न रुख राई ले भरे गाँव मिलत है। आज कहूँ हमर रुख राई पेड़ पौधा लगाए के शुरू नहीं करबो तो ऐसो जो तापमान है 45 डिग्री बाढ़े रही से, अवेला 50 ले 55 डिग्री हो देरी नहीं लागे। तो अपन गांव शहर के जो उचित जगह है ओमें छायादार फलदार पौधा लगावन ताकि अवैया जो भविष्य है वो बढ़िया रहा है।
4: ऐसे है लाल जी कि भाई पर्यावरण संरक्षण तो बहुत जरूरी है, और बेरा बेरा में हम संगवारी मल्ला ऐसने कई ठन बात के जानकारी देते रहन, तो आजो एक सुघर जानकारी हमारे संगवारी मन बर लेके आए हन। आज की सलाह ये क्रम में सुनथन, लागत और श्रम बचाए बर कृषि यंत्र के उपयोग बढ़ाओ। ये विषय में जानकारी दे बर हमारे बीच है डॉक्टर आर के नायक, ये मन है प्राध्यापक कृषि मशीनरी और विद्युत अभियांत्रिकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। संगवारी हो, हमार किसान भाई मन हा अब कृषि ला अपन सेती नहीं करके व्यवसायिक स्तर में करे लग गए है, और जब व्यवसायिक स्तर में खेती करे लग गए हमारे किसान भाई मन निश्चित ही ओखर मन के लक्ष्य ये रही कि लागत कम आवे और श्रम के बचत होए और उत्पादकता ज्यादा से ज्यादा उमन हा पाहे सके। ता कृषि में देखथन संगवारी हो, लागत कमती करे बर और श्रम बचाए बर आजकल कई ठन यंत्र के उपयोग करे जाते, और ये यंत्र के उपयोग कौन रकम ले करते, कौन कौन से यंत्र है, ये यंत्र ला कहाँ से बिसाए सकते, ये किसान मन हा यही सब बात ला ध्यान में रखत हुए आज हमन हा क्रम आज की सलाह में जानकारी लेथन लागत और श्रम ला बचाए बर कृषि यंत्र के उपयोग। ये विषय में जानकारी देबर हमारे बीच है डॉक्टर आर के नायक, ये मैंने प्राध्यापक कृषि मशीनीकरण और ऊर्जा अभियांत्रिकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। राम राम नायक सर।
1: राम राम मैडम।
4: डॉक्टर साहब सबले पहले हमारे संगवारी में ये बताते हो कि ये जन कृषि यंत्रीकरण हरे वो का हरे।
1: जैसे कि आप सब जाना था कि कृषि यंत्रीकरण कुछ नया चीज नो है, नवा चीज होए के बात नहीं है। जैसे कि बलराम एक जो भगवान हमारे हैं कृष्ण के, वो हमेशा हल ला रखे थे और वही ला होकर ताकत बना के उसमें लड़ाई भी करें और खेती भी करें
4: जी।
1: तो ये पारंपरिक रूप से बहुत सालों से हल के यूजर हमारे चलत है और इसने ही जब वो हर आधुनिक हो जाते धीरे धीरे करके, समय की बचत करना है तो कैसे बचत कर सका था या श्रम का कैसे कम कर सका था या फिर पैसा ला कैसे बचा सका था, ओकर जो भी आधुनिक उपाय है वो सब ला हम कृषि यंत्रीकरण में मानथन। और एक प्रमुख जो चीज है कि कैसे हम यंत्र ला सही चुनाव करें और सही चुनाव करके फिर ओकर प्रयोग ला सही ढंग से कर पाबो, तब जाके हमारे यंत्रीकरण के फायदा हमारे किसान मतलब मिल सकते हैं।
4: जी जी, ये तो बहुत ही अच्छा बात है भाई कृषि यंत्रीकरण के। डॉक्टर साहब फिर हमारे संगवारी मन ये बताते हो कि जैन संगवारी मन है जैन कृषि के यंत्र है वाला उपयोग करना चाहते तो उपयोग ले मतलब का लाभ मिली।
1: जैसे कि आप मतलब बताएं कि किसी यंत्र हर, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल ले लेता ना मन कि खेती में हमार जनरली जो देसी नांगर है तेला खेती पर हमारे यूज करथन, ये प्रमुख यंत्र है किसान पर, गांव के किसान पर प्रमुख यंत्र रहीस पहली। तो उसमें लगभग एक आदमी ला 66.6 किलोमीटर एक एकड़ला जुताई कर पर पैदल चले वो लागते।
4: अच्छा।
1: तब जाके दूठी जोड़ी बैला और एक जोड़ी बैला और एक आदमी पीछू में 66.6 किलोमीटर जब चल ली तब एक एकड़ हर जुताई हो पाते। तो आप में समझ सके थे कि कल्टीवेटर यदि ट्रैक्टर वाला है तो उसमें 9 टाइम लगे रहते
4: जी।
1: तो 9 टाइम के कल्टीवेटर है लगभग 9 जोड़ी बैला और 9 आदमी के काम ला उहर एक ही ट्रैक्टर हर एक बार में कर देते। तो आप समझ सके थे कि 66 × जब 9 में करबो तो लगभग मान के चलो 500 किलोमीटर चले वो लागतीस, तो ये हमारे सिर्फ एक बार में हो जाते
4: जी जी।
1: तो ये सब देखिए तो ये श्रम के तो बचत हो गई इसे और एक साथ में क्या होता है कि समय की भी बचत होती है। एक आदमी किसान जब पैदल चल ही तो मान के चला कि स्पीड हर कतक रही 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर के बीच में होते, जबकि ट्रैक्टर जब चलते तो लगभग 4 किलोमीटर के स्पीड में चलते तो और प्लस 9 टाइम ले भी लेके चलते तो 9 गुना ओकर भी स्पीड हो गए और ये ओकर स्पीड भी बढ़ गए सब कुछ बढ़ गए तो समय की बचत हुई काबर की जल्दी काम हो जाते। तीसरा ये है कि जब सही समय में सही काम हो जाए कोई भी चीज में, जैसे पानी गिरना है और आप इंतजार कर रहा था और काम ला करिया और आपके काम नहीं हो पाते टाइम में तो बुआई के लेट हो जाए, कटाई के लेट हो जाए तो कटाई के लेट हो गया हमारे दाना जमीन में गिरी और बुआई के लेट हुई तो हमार जर्मिनेशन लेट हुई और उत्ती फसल के चक्र भी प्रभावित होते। तो उकरे भर समय की भी बचत हुए कारण उत्पादकता में वृद्धि होते और ये सब चीजें जब करबो तो लागत के भी कमी होते और फसल के सुरक्षा भी सही ढंग से हो पाते
4: जी। तो कुल मिला के देखन तो लागत और श्रम बने असन बिल्कुल कृषि यंत्र में बाँचते ही बाँचते।
1: हाँ,
4: फिर ये बताते हो हमारे संगवारी मल्ला, अब हमारे संगवारी मल्ला ये बताते हो डॉक्टर जी कि कौन कौन से यंत्र के उपयोग कृषि में करे जाते।
1: प्रमुख रूप से कृषि में जो भी यंत्र होते उला हमन 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो स्टेशनरी इंजन कथन जो ला, स्टेशनरी मतलब खड़े होके चलने वाला मशीन, जैसे कि पानी पंप हो गए, सोलर के पंप हो गए या फिर आपके आटा चक्की गेहूं चक्की ये सब चीज है हमारे किसी यंत्र में आते तो ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब खड़े होके एक जगह में चलने वाला। दूसरा होते चलित शक्ति होते, जैसे बैला भी हमारे एक टाइप के शक्ति के स्रोत है, ट्रैक्टर भी स्रोत है, पावर टिलर भी स्रोत है और कई आदमी खुद से भी कई औजारला चलाते। तो ये सब हर हमारे स्रोत के हिसाब से जमीन के हिसाब से हमारे अलग अलग यंत्र यूज होते। तो प्रमुख यंत्र में हम देखो तो ट्रैक्टर जो है हमारे आज के दिन में सबसे ज्यादा एक सोर्स है जो हर हमारे खेती में यूज होते। एक संग में का है कि जुताई करे बार कल्टीवेटर जोड़ लेथन या एमी प्लाव जोड़ लेथन या रोटावेटर जोड़ लेथन तो जुताई हो जाते। यदि हमारा बुआई करना है तो उन्नत यंत्र में सीड ड्रिल आते, प्लांटर आते और कई तरह के यंत्र आगे से, जैसे आजकल पैरा के जैसे हमला पुरानी फसल बच गए तो बोला अभी आगे लगा देता तो आगे लगा बोल का हुई कि धुआं बन ही तो प्राकृतिक हम नुकसान करते
4: जी जी।
1: दूसरा यदि वो हर यदि हम जलाबो तो जमीन भी खराब करते, काबर की हमारे उपयोगी होने वाले जो कीटाणु थे जमीन में जो लड़की मिट्टी के संरचना हमेशा बजा के रखते। एक छोटे से एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे केचुआ
4: जी जी।
1: केचुआ भी बेचारा मर जाते जब आग लगा देते किसान तो केचुआ तक मर जाते। तो कई सारे जो अच्छे जो जानवर है वो मरते, सांप और मेर में रहते जो हमारे चूहा लगाते, भले ही सांप हमें नुकसान करते लेकिन हमारे खेत भर भर हमारे अच्छा जानवर है तो वो बेचारा मर जाते काबर की धुआं में जी नहीं सके। तो ऐसे कई जानवर मन मर जाते हैं यदि हम पैराले चला देते, तो ओकर प्रबंधन भर अवशेष प्रबंधन में बहुत सारे मशीन आगे से जैसे कि एक ही मल्चर जो उन्होंने खाली पहराला काट के छोड़ देते, दूसरा उसी टाइप की मशीन है हैप्पी सीड ड्रिल। ये मशीन क्या करते, पहराला काटते जमीन में भी उला ऊपर रखते और बीज और खाद दोनों की बुआई साथ में कर देते।
4: अच्छा।
1: तीसरा यंत्र आते सुपर सीडर जो मशीन ला स्मार्ट सीडर भी कहा जाते, ये मशीन में क्या होती है कि पहराला काटी भी मिट्टी में मिला दी और साथ में बीज और खाद दोनों की बुआई भी कर दी। तो लगभग मतलब आप जैसे पुरानी पद्धति में देखिए तो एक है पैर वाला सकल वो, दूसरा टाइम में जुताई करबो, फिर वाला ढेला छोटे करबो, फिर ओकर बाद बुआई करबो, फिर खाद डालबो, तो कई तरह के मतलब काम हर एक मशीन से एक बार में हो जाते। तो ऐसे ही और जो मशीन है तेने कटाई के आप मन जाना था कि सबसे महत्वपूर्ण मशीन आजकल डेट में हाथ में कटाई कोई करना नहीं चाहते, लगभग कंबाइन हार्वेस्टर में कटाई होते। तो कंबाइन हार्वेस्टर कटाई के कारण का है कि एक बार में हम कटाई के काम भी कर लेथन, मिंजाई के काम भी कर लेथन, उसाई के काम भी कर लेथन। तो जो काम है लगभग महीना दो महीना चले और बीच में कई टाइप के नुकसान हुए हमारे फसल, चूहा खा जाए, पानी गिर दी तो कलर चेंज हो जाए, वो सब चीजें खत्म होगी से वो कंबाइन हार्वेस्टर एक बार में चल के हमारे फसल सीधा बेचे के लायक दे देते हैं हमला। और जैसे कुछ किसान मन के पास में पानी ज्यादा हो जाते खेत में तो नहीं जा सके कंबाइन हर, तो आजकल ट्रैक टाइप कंबाइन आ गए है जो कंबाइन कम्यूनिटी अंदर में घुस के भी काट सकते है। तो ऐसे और यंत्र है जो मन हमारे आजकल नया नया आगे से एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपने दिए हैं, तो मैं स्प्रेयर जैसे पुराना जमाना में हाथ के स्प्रेइंग से हम करते रहे, तो आज ड्रोन के स्प्रेइंग होते तो 10 मिनट में एक एकड़ के पूरा स्प्रेइंग हो जाते, तो ऐसे समय की बचत हमार हो सकते हैं।
4: तो ये तो बहुत अकन कृषि यंत्र है जिन हाँ लागत और श्रम बचाए बर उपयोग हमारे कृषि के क्षेत्र में करे जा सकते हैं हमारे किसान भाई मन। फिर ये यंत्र ला अगर हमारे किसान भाई मन बिसाना, ये तो बहुत अच्छा बात बताओ आप मन डॉक्टर जी, फिर हमारे किसान भाई मन अगर ये यंत्र ला बिसाना चाहते तो कृषि यंत्र बिसाए बर किसान मन बर आपके का सुझाव हरे?
1: किसान मन एक तो हमेशा ना का सोचते हैं कि मोर पड़ोस ला है ये ट्रैक्टर ला, तो हर का कंपनी के और किसी वो ला है नहीं सोचे। तो मोर सुझाव ये है कि आप अपन के जमीन जत की है जे हिसाब से जमीन है वो हिसाब से ट्रैक्टर के साइज ला जरूर चूज करा, कांवर की छोटे किसान यदि बड़े ट्रैक्टर ले आई तो उकर काम तो जल्दी हो जाए लेकिन बाकी टाइम में ट्रैक्टर खाली खड़े हो जाए। तो कई बार ऐसे होते कि बैंक वाला मन खींच के लेकिन करके सुने वराते, तो बात यह है कि उकर उपयोग कतक घंटा है ते हिसाब से वाला ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, पहला सुझाव है। दूसरा यह है कि कभी भी ट्रैक्टर यदि आपके पास जमीन कम है तो बड़े ट्रैक्टर खरीदे के नहीं सोचना चाहिए कि हम यदि किराए में पा जाता, जैसे सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है कस्टम हायरिंग सेंटर जिनमें हमारे सरकार हर 25 लाख रुपए देते आप मतलब किसान लाग एक ग्रुप मशीन खरीदे, मतलब ग्रुप मतलब उसमें ट्रैक्टर भी रही, कल्टीवेटर भी रही, सीड ड्रिल भी रही, काटाई के यंत्र रही, रोपाई के एक यंत्र रही, तो सब मिला के 25 लाख जैसे होते तो तेमे के सिर्फ 10 लाख रुपया ला 15 लाख दे वाला ही 10 लाख ला सरकार देते। लेकिन वही चीज ला यदि समूह में खरीदबो हमन, समूह मतलब 10-12 किसान हम समूह बना लेबो काबर के सबके प्रयोग में होते यार, तो ओला 15 लाख रुपया सरकार दे 10 लाख रुपया खाली हमन ला दे वाला लागते। तो ये चीज मन ला जब आप मन ला जब करना है तो जरूर एक अपन के जमीन के हिसाब से सब आधार कार्ड जमीन के पट्टा पर्चा ये सब लेके किसी अभियांत्रिकी विभाग है सरकार के हर जिला में है और वो जिला में जाके हम हमार कागजात मतलब देबो तो जब चेक हो जाए तो आप मतलब 25 लाख के मशीन मिल जाए जिसमें 10 लाख रुपए आप मतलब मिल जाए, 15 लाख रुपए आप मतलब देवा लागे 10 लाख रुपए आप मिल जाए।
4: जी जी।
1: तो एक अलावा जो है सरकारी योजना और है प्रति एक यंत्र लेना है तो हर यंत्र में कुछ न कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ से है, SMM का परियोजना है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें हर मशीन में कम से कम 10,000 से लेके 1,00,000 तक छूट है।
4: जी।
1: जैसे कोई किसान सीड ड्रिल खरीदना चाहते हैं तो उसमें 30,000 के छूट है, तो कोई अच्छा कंपनी की सीड ड्रिल ली यदि जैसे अच्छा कंपनी के कहे के मतलब जो उनमें के क्वालिटी है अच्छा रही जो उनकी झूठ नहीं बोले, मतलब सीड ड्रिलर भी झूठ बोलते जैसे कि कोई मशीन ले ला और वह खराब हो जाए तो बाद में हमारे जो लाइन में बुना रहे थे उल्टा हो थे तो वो टाइप के अच्छा क्वालिटी के अच्छे कंपनी के लेना है तो वो कर रेट ज्यादा रही तो वो केस में हमने 30,000 में ली। लेकिन जैसे कम सस्ता वाला लें तो कम भी नहीं, 30,000 किसान क्या सोचते कि मोला तो 30,000 में सीडी मिल गई तो ले लेता और सस्ता कंपनी के उठा लेते, 3 साल में वो मशीने खराब हो जाते। तो उच्च क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता वाला मशीन हम खरीद बहुत ज्यादा अच्छा हुई। एक चीज और देखना है कि कोई कंपनी चाइना के आके हमने बेच दिस और कल ओकर पार्ट की जरूरत पड़े थे तो वो दुकान वाला ही भाग गए और बाद में कहा थे कि वो तो पार्ट नहीं मिले थे कहते ऐसे कर नया मशीन ले। तो किसान लाने अननेसेसरी एकर में बोझ ओकर आर्थिक बोझ वाला पड़ते। तो ये सब चीज ला थोड़ी जानकारी तकनीकी जानकारी कोनो अच्छे किसी विश्वविद्यालय में या कोई अच्छा जानकार या आरईओ जो आपके यहाँ है ओकर लेके कभी मशीन खरीदा तब जाके नई तकनीक के बारे में जान ले के बाद खरीद ले ज्यादा बढ़िया हुई। एकर अलावा प्रशिक्षण कई जगह भी होते रहते किसी भी ज्ञान केंद्र जो है वहाँ किसी यंत्र के ऊपर प्रशिक्षण होते ते में किसान एक पहली वो मशीन ला देख ले ओकर ऊपर प्रशिक्षित हो ले ओकर बाद ओकर यूज ला करे तो ज्यादा बढ़िया हुई। जैसे एक एग्जाम्पल आप मतलब देना चाहता हूँ मैं, जैसे अमेरिका पीडी वीडर हमारे ऑफिस में एक जनाइस खरीदे पर तो ओला लेके गई वो हर चलाइस और एक दिन अचानक आई सब कहीं की अरे साहब ये तो मशीन बेकार है काम नहीं कर रहा थे। तो बोला हम पूछन की कैसे नहीं कर रहे थे तो कहीं सूखा भैया में चला रहे हैं।
4: अच्छा।
1: तो जबकि और बने हैं गीला भैया पर जो है पानी भरे रही कम से कम 4 सेंटीमीटर वो में जब चलावो तो खरपतवार ला मिट्टी में मिलाई। तो ये जो चीज है जब तक वो तकनीकी शिक्षा नहीं हुई सही ढंग से वो किसान वाला सीधा ले जाए कोई मशीन ला कोई ट्रैक्टर ला कोई अगर ऑपरेशन नहीं कर पाई तो गलत हो जाते। तो तकनीकी रूप से सही सक्षम होना चाहिए।
4: तो डॉक्टर नायक जी आज आप मन हमर संगवारी मन ला लागत और श्रम ला बचाए बर कृषि यंत्र के उपयोग ये विषय में बड़ ही विस्तृत सुघर जानकारी देव और हमर संगवारी मन के बीच में आ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
3: दीदी। आज के सलाह एक क्रम में अभी सुनत रहन लागत और श्रम बचाए बर कृषि यंत्र के उपयोग ला बढ़ावन जेकर विशेषज्ञ से डॉक्टर आर के नायक प्राध्यापक कृषि मशीनरी और ऊर्जा अभियांत्रिकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और गोट बात करत रहे हो आप नीतू शर्मा हर। दीदी ये तो बहुत सुघर अकन जानकारी रही से काबर की जब खेती किसानी के हम काम शुरू करथन तो आजकल बनिहार नहीं मिले
4: हाँ,
3: है ना। और ऐसन में का है कि जब नवा नवा जो कृषि यंत्र है एकर हमला जानकारी जब मिलते और हम कृषि यंत्र कुती बढ़थन तो हमर काम है आसानी ले सरकते बढ़िया। और संगवारी मन ला अगोरा हो ही दीदी अब आज के प्रश्न के
4: कृषक प्रश्न मंच के बेरा है काबर की है नहीं।
3: तो संगवारी हो लिखो आज के प्रश्न कृषि मा कौन कौन से प्रमुख कृषि यंत्र के उपयोग करे जाते हैं। प्रश्न एक घाव सुन ले वो कृषि मा कौन कौन से प्रमुख कृषि यंत्र के उपयोग करे जाते हैं।
4: संगवारी हो ये प्रश्न के उत्तर ला आप मन हा आजे के दिन माने रविवार के दिन एक हफ्ता के अंदर हमला ईमेल के माध्यम ले भेज दू और हमार जेन नवा संगवारी है उखर मन बर जेन ईमेल पता है लाल जी वो है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com।
3: दीदी और पाछू हफ्ता आज के दिन पूछे गे रही से माइक्रोप्लास्टिक का होते और एकर सही जवाब है माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते जौन की हमन थैली बोतल मछली पकड़े के जाली उपयोग करथन वो मन धीरे धीरे करके माइक्रोप्लास्टिक के रूप में बदल जाते हैं। और बड़ सुघर अकन उत्तर के जवाब भेजिए संगी मन है सिंगारबाड़ी घुटकुले भगत राम पटेल किशन सोनम मानवी पटेल ग्राम तेंदुभाठा मगर लोडले उमेन कुमार निषाद मोहेश्वरी पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन दिव्यांश भूपेश शिवा निषाद बोरम देवले है जीवन लाल साहू राजबाई लोकनाथ वेदिका साहू गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम

0: साहू, सुलोचना, मानवेंद्र, राकेश साहूमन, आप सब जन सही जवाब भेदे हो। एक खातिर आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई।
1: आओ संगवारी हो, अब एक ठीन सूचना संगवारी हो, आप मन ला बता दन कि अवैया मंगलवार माने 2 जून 2026 को प्रसारित होवैया हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के विषय हो ही खेती की लागत घटाएं, लाभ बढ़ाएं, नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग। ये विषय में आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमार स्टूडियो में उपस्थित हुई विशेषज्ञ श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमला फोन कर सकत हो। फोन नंबर ये रकम ले है। पहला फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 दूसरा फोन नंबर है, और हमारा तीसरा फोन नंबर है 400-3484, और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 2 जून 2026 के 11:30 बजे ले 12 बजे के बीच में करे जा ही संगवारी हूँ। और ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही दिन संझा 7:30 बजे में करे जा ही। हमला आपके फोन कॉल के अगोरा रही संगवारी हूँ। सूचना ईमेल सिरावत है।
2: 3 कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: दीदी अब सुनथन गीत जेल स्वर देहे पंचराम मिर्झा और कुलवंतीन बाईहर।

0: बंधू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: लाल जी, अवघड़ी की इशारा हो गए, जाए के बेरा हो गए, तो जाती बिराती बता देते हैं काली के कार्यक्रम। काली चौपाल में आज की बात के संक्रम, आज की सलाह में औषधि पौधों की खेती विषय में जानकारी सुनी हो डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा ले, ये मैंने सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन दुर्ग ले, संगे संग कृषक प्रश्न मंच और गीत संगीत के रंग तको बगर ही, तकाली फिर भेंट हुई, तब तक नीतू शर्मा
4: और लाल जी साहू के
3: राम राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को ही अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण।
1: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप मन ले जुरिया के मोला बहुते खुशी होवत हे। देश के आने आने हिस्सा मा हमर देश के लोगन मन देश हित मा समाज हित मा ऐसन अद्भुत काम करत हे, और जब उनखर विषय मा सुनथन त हमन ला एक नवा प्रेरणा मिलथे। आज कार्यक्रम के शुरुआत मैं एथलेटिक्स मा देश के ऐसने उपलब्धि लेकर हूँ। कुछ दिन पाछू झारखंड के रांची मा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुईस। एमे करीबन 800 एथलीट मन हिस्सा लेन देश भर ले आए रहिन। ये दौरान 4 आने आने आयोजन मा 4 राष्ट्रीय कीर्तिमान टूटीस। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, ये संगवारी मान आने आने श्रेणी मां नवा कीर्तिमान बनाइन। मैं सबले पहली त ये सब मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, एक आयोजन जेखर देश भर मां बहुते चर्चा हुआ थे वो है 100 मीटर रेस। 100 मीटर के दौड़, खाली 2 दिन के भीतरी पुरुष 100 मीटर के दौड़ में राष्ट्रीय कीर्तिमान 3 घाव टूटिस। जेन 2 झन एथलीट मन ये कमाल दिखाए हैं वो हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं सोचे ये पई मन की बात में ये दोनों खिलाड़ी मन ले गोठ करे जाए। अनिमेश जी जोहार, गुरिंदर वीर आप मन लग घलो जोहार, सत श्री अकाल।
2: जोहार सर।
3: जोहार सर।
1: अच्छा भैया, आप मन ता बहुते बड़का उपलब्धि पाए हो। आप मन के जोड़ी हा घलो बड़का कमाल करे है। हमन संगीत माता जुगलबंदी देखे रहें, फिर चुनौती मा अब जुगलबंदी होते कि एक घाव एक झन चुनौती देते, फिर दूसर उही चुनौती ला उठा लेते, फिर तीसरैया घाव कर लेते। बहुते रोचक विषय रहे हैं आप मन के। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के सुनैया मन ला पता चले कि आप मन के विषय में वो मन ला जानकारी होवे। आप मन जिन पराक्रम करे हो ओखर पता चले।
2: जोहार सर, मोर नाव अनिमेश कुजूर। मैं 200 मीटर और 400 मीटर के राष्ट्रीय कीर्तिमान धारक हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ के रहैया हूँ सर, और अभी मैं उड़ीसा ले खेलता हूँ। मैं पाछू बच्चर एशियाई पदक और विश्वविद्यालय खेलकूद पदक लेके आए हूँ, और मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करे हूँ। जब मैं स्कूल ले पास हो रहे हूँ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर ले पास हुए हूँ, और मैं पहली फुटबॉल खेलत रहे हूँ। अब मोर दाई दादा मन कोविड के बखत मोला थोर बहुत छूट देवत रहिन कि तैं बाहर जाके दौड़ ले खेल ले। ता जब कोविड खत्म होए लगीस तब मोर फुटबॉल के दोस्त मन मोला कहिन कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होवैया है, तय घलो भाग ले। अब मैं भाग ले, अब मोला पता नहीं रहीस कि वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर के चयन हुआ थे। मैं वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुए, और आज मैं भारत के प्रतिनिधित्व करत हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में।
1: और गुरिंदर वीर सिंह जी का है?
3: जोहार सर, मोर नाव गुरिंदर वीर है, और मैं भारतीय जल सेना में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं भारत के सबसे तेज धावक हूँ। अभी मैं 100 मीटर में 10.09 के राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाए हूँ, और मैं पहली भारतीय हूँ जेन 10.1 के बाधा के नीचे भागे है। और मैं प्रयास करत हूँ कि मैं ट्रैक और वर्दी में घलो अपन देश के सेवा करो। मोर दादा और बाबा दोनों खेल कूद वाला रहिन, ता हमर भारत के संस्कृति है जब भी कोनो तिहार आते जैसे दिवाली, जैसे नवा बछर, ता हम अपन घर के सफाई करथन, त मैं अपन ददा के ट्रॉफी और पदक मन के सफाई करत रहो त मोला वो बहुत अच्छा लागत रहीस। मैं बहुत खुश होवत रहो। त जब मैं कोनो ट्रॉफी साफ करत रहो त मैं पूछत रहो कि भाई ये ट्रॉफी कहाँ जीते रहो, ये पदक कहाँ जीते रहो, ये फोटो कब के है। त फिर वो मन मोला अपन कहानी सुनावत रहिन कि भाई मैं यहाँ खेले बर गेव, मैं ये राष्ट्रीय पदक जीतेव, मैं अपन टीम ला ए में जितायो। त फिर मैं घलो वो मन ला बोलेव कि भाई मैं घलो कोनो खेल खेलना चाहत हो। वो बिहनिया दौड़े बर जावत रहिन त मैं उन ला बोलेव भाई मोला घलो अपन संग ले जाए करो। त मोला ले के जाए लगिन त वो मन अपन खेल मा जिन सीखे रहिन वो मोला सिखाए लगिन। त मोर रुचि बने लगिस। मैं उसेन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड टूटत देखेव, एक मनोरंजक कहानी है। मैं टीवी देखत रहो त मोर दाई टीवी ला बंद कर दीस कि बेटा अभी पढ़े के बेरा हो गए है, तय पढ़। त मैं कहो भाई ठीक है, आप मन मोला टीवी देखे ला नहीं देवत हो, एक दिन ऐसे आही आप मन मोला टीवी मा खोजहु कि देखो वो गुरिंदर दौड़त है। त मोला घलो खुशी होते जब मोर दाई मोला टीवी मा दौड़त देखते।
4: वाह वाह वाह, बहुत शानदार बात है भाई आप मन के।
3: हाँ जी, मध्यम वर्गीय परिवार है सर। फिर मोर ददा बालीबाल खेलत रहिन, घर के समस्या के चलत वो मन अपन खेलकूद छोड़ दिन। उखर जेन सपना रही गई रहीस त वो मन मोर भीतर वो सपना देखिन भाई मोर बेटा वो सपना पूरा करही। त मैं उखर ले बात करेव, फिर सुनत रहो मिल्खा सी अतका मेहनत करत रहिन। मैं वो मन ला कहत रहो मैं घलो एक दिन आप मन के सपना पूरा करहू। त बोलिन सपना पूरा ऐसे नहीं होए, एकर बर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ते, मेहनत करना पड़ते। मिल्खा सिंह जी खून के उल्टी करत रहिन, धूप माँ भागत रहिन, पूरा पूरा दिन प्रशिक्षण करत रहिन। त वो चीज़ मोला प्रेरित करत रहीस। मोर दादा मोला प्रेरित करत रहिन कि मैं भागू त अपन देश खातिर, देश खातिर पदक लावाओ जीताओ। और ये घलो रहीस कि भाई जब मैं 100 मीटर के विधा के चयन करेव त सबो मन कहत रहिन कि भाई 100 ला झन कर, 100 भारतीय मन के विधा नहीं है, भारतीय मन के शरीर 100 मीटर बर नहीं बने हैं। त मैं और मोर ददा हरदम बोलत रहिन कि अभी गुरिंदर ए चयन करे है, हम एकर ले पाछू नहीं हटबो। जेन मन हमन ला बोलते कि भाई हम नहीं कर सकन, हम वो मन ला करके दिखाबो और ते करके दिखाबे, मोला तोर ऊपर भरोसा है। त वो भरोसा जब मोर ददा मोर ऊपर करीस त मैं वो भरोसा ला अपन हिम्मत बना के चलेव। और आज हर भारती बोलते कि भाई भारती दौड़ाओ।
4: देखो आप दोनों जन बहुते बड़का कमाल करे हो, और खाली 2 दिन के भीतरी आप दोनों जन 3 घाव राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हो। 100 मीटर के रेस में दौड़ना, जैसे गुरिंदर वीर है कहिस कि लोगन कहते कि भारत के लोगन मन के बदन ये काम बर हैच नहीं, अत का अलकर होवत हुए घलो आप मन काम करे हो। तो ये दोनों मन ले मैं जानना चाहूँ और मन की बात के सुनैया मन घलो सुनना चाहिए कि कौन से जज्बा रहीस, का जिद रहीस, का सोचे रहे हो और कैसे करत रहे हो, ये कतका मुश्किल होते।
3: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं शुरू में जब संघर्ष करत रहे हो सर, कईयों बार संसो में रहो कि मैं सही करत हो, मैं सही चयन करे हो, काहे कि हर बारी आप मन नहीं जीतो, कभू कभू आप मन सीखता हो। जब मैं हारे हो, जब मोर सही प्रदर्शन नहीं आईस, जब चोट लग जात रहीस त मोर घर वाला मन मोला सहारा देन कि भाई कुछ नहीं, एक दिन बुरा चल दीस, एक बछर बुरा चल दीस, त एकर ले जिंदगी खराब नहीं होए, सपना देखना नहीं छोड़न। त मोर प्रशिक्षक का घलो मोला ये सिखाइस कि अगर तय नहीं करबे त कोनो अऊ नहीं कर पाही। त ऐसने जब हमर समुदाय हमर तीर तखार के लोगन मन हमला उत्साहित करते ता हमर प्रोत्साहन नहीं टूटे।
4: अनिमेश जी।
2: सर, मोला त सबो मन बोलत रहिन जब मैं 2021 मा एथलेटिक्स चालू करेव, त मोला कहिन कि देख ए नवा क्षेत्र है, तय कर पाबे कि नहीं। तब मैं कहो कि मैं ए क्षेत्र में घुस गए हों तक करवे करूँ। मोर ददा घलो हरदम मोला बोले कि तय ए क्षेत्र में घुसे हस त कभू पाछू मुड़ के झन देखबे, काहे की सोचते था सबो मन कि ये करना है वो करना है, फिर करके बहुते कम झन दिखाते। तैं बस यही क्षेत्र में घुसे हस त यही मरेबे, यही माँ आगू बढ़बे। तोला सबो सुविधा सब जिनिस सहयोग हम करबो, पारिवारिक सहयोग आर्थिक सहयोग सबो चीज हमन करबो। बस तैं मेहनत कर और भारत ल देखा कि भारतीय मन घलो भाग सकते। काहे कि लोगन मन मोला घलो कहत रहिन कि भारतीय मन के जींस ऐसे नहीं हैं कि वो मन 10 के नीचे या 10.1 के नीचे माँ भाग ले सकें या तेज दौड़ सकें। फिर अब हम दोनों जन सिद्ध करे हन कि भारतीय मन घलो कर सकते, ऐसा कोनो कठिन नहीं है हमन बर, हम घलो सब कुछ कर सकत हन। त सर ये सबो मोला बहुत प्रोत्साहित करते और जैसे जैसे हम प्रशिक्षण करत हन हम और अपन समय सीमा ला तोड़त हन और बाकी भारतीय मन ला घलो ये दिखत है कि भारतीय मन घलो कर सकत हैं और हम और करबो सर अभी। अब हम दोनों जन के चयन कॉमनवेल्थ गेम खातिर घलो होए है तो वहाँ अवैया प्रतियोगिता में हम और अच्छा प्रदर्शन करबो।
4: अच्छा देखो मोर मन में घलो एक कौतूहल है और लोगन मन ला घलो हो ही। मैं सुने हूँ कि आप दोनों जन अच्छा दोस्त घलो हो, आप दोनों जन कुछ ठाने रहे हो का कि तैं मोर रिकॉर्ड तोड़ेस तो मैं तोर रिकॉर्ड तोड़ देवाऊँ का? पहली अनिमेश बताही।
2: सर जी पहली रिकॉर्ड 10.18 के रहीस जेन मोरेच रहीस और फिर एला गुरिंदर वीर भैया हा सेमीफाइनल में तोड़ देस 10.17 करके और मैं फिर ओला दूसर सेमीफाइनल में 10.15 करके तोड़ देऊँ। तो ओ बखत जब मोर सेमीफाइनल होइस तो हम दोनों जन खुश होइन कि चलो ठीक आज रिकॉर्ड टूटिस और चलो हम दोनों जन तोड़ेन। काहे कि वो बखत प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदिता रही थे, फिर हम दोनों जन पहली स्थान के रखे रहन। एकर ले पहली हमन प्रतियोगिता पर सऊदी अरब घलो गए रहन, वहाँ हम दोनों जन एक कमरा में रहन। त हम दोनों वहाँ गोट करन कि भारत के दौड़ ला आगू लेके जाना है और हमरे छात में है वो चीज, हम जेन करबो वो आने मन ला प्रोत्साहित करही।
4: गुरिंदर वीर का कहना चाहू?
3: हम दोनों जन निर्णय करे रहन हम दोनों जन बने दौड़बो, त सर एक दूसर ला कभू जरूरत होते ता एक दूसर संग खड़े होथन। जैसे अभी रिकॉर्ड करे ले पहली जब मैं रिकॉर्ड करेव फिर अनिमेश करीस, त जब हम वार्म अप करत रहेन त मैं अनिमेश ला बतावत रहो कि अनिमेश वो ब्लॉक सही है ओमे जाके बैठ उहां ले छलांग लेबे, हमन वार्म अप यहाँ करबो यहाँ वार्म अप सही होही। त एक दूसर के मदद करथन त दूसर में घलो सुधार होते हमन में घलो सुधार होते, दोस्ती घलो चाही। फिर मैदान के बाहर है सर, प्रतियोगिता के बाहर है ता हम दोस्त हन, जब हम मैदान में जाथन ता एक दूसर के प्रतियोगी बन जाथन। त ये होते कि मैं एकल ले ज़्यादा तेज भागू मैं एकल ले तेज भागू।
4: देखो आप मन जेन स्पर्धा करे हो ना वो देश के मान बढ़ाए खातिर करे हो, देश ल भविष्य में ये ठिया तक पहुँचाए खातिर करे हो और एक सकारात्मक भावना लेकर हो। और मैं मानता हूँ कि आपके ये जेन खेल भावना है खेलना घलो है, एक दूसर ला चुनौती घलो देना है और फिर आगू निकले के प्रयास करना है और फिर आगू जाए बर एक दूसर के सहायता करना है। ये अद्भुत काम करे हो आप मन, मोर कोती ले आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना और आप मन देश के नाव घलो उजर करहू। मुला पूरा विश्वास है आप मन ऐसने मेहनत करत रहो बहुत प्रगति हो ही, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना।
2: धन्यवाद सर, आप मन के धन्यवाद,
4: गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, ये बखत देश के ज्यादातर हिस्सा मा बहुत गर्मी पड़त है, तेज घाम गर्म हवा, ऐसन मौसम मा अपन ध्यान रखना बहुते जरूरी है। पानी पियत रहो, घाम मा अगर निकलना पड़े तो थोकिन संभल के निकलाओ। ये दिशा मा सरकार के आने आने विभाग मन जिन दिशा निर्देश जारी करे हैं वो घलो भुलाहू जन। संगवारी हो हमार यहाँ गर्मी ले लड़े के तरीका कईयों बार रसोई मा घलो मिलते, आप मन घलो देखे हो। जैसे जैसे गर्मी बाढ़ते वैसे वैसे घर के रसोई के स्वाद बदलत जाते, रसोई के प्रकार बदल जाते। कहूँ मटका के पानी निकलते, कहूँ दही जमे लगते, त कहूँ कच्चा आमा उबले लगते, और फिर शुरू होते देसी पेय के दौर। देसी पेय ले आप मन घलो परिचित हो। अगर आप मन उत्तर भारत में जाहू तब बने जगह आप मन ल मिलही आम पना, कच्चा आमा के स्वाद और गर्मी ले राहत घलो। पंजाब हरियाणा जाहू तो लस्सी मिल जाही, बड़का गिलास वाला लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाना के संगवारी बन जाते, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू के शरबत, ओखर तो बाते का है। पेट घलो भरे, ताकत घलो देवाए। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी। दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और उड़ीसा में बेल पना। वो खाली पेय नहीं, भारत के आने आने क्षेत्र के परंपरा के हिस्सा है, और एमे एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के झलक घलो मिलते। और एक ठन बात खचित ध्यान रखू, एमे ले ज्यादातर जिनिस हमार अपन रसोई ले निकले है, हमार खेत खलिहान ले निकले है, कोनो बड़ा ब्रांडिंग नहीं है, फिर पीढ़ी मन के अनुभव एमे समाये हुए है। आप मन घलो गर्मी मा देशी पेय के खूबे आनंद लेवाओ। संगवारी हो, गर्मी के आतेच एक ठन औ चर्चा हर घर मा शुरू हो जाते, और वो है आमा। आमा, आम चर्चा के विषय होते। भारत मा शायदे कोनो घर हो ही जिहां गर्मी मा आमा के बात नहीं होत होवे। हर इलाका के अपन आमा, अपन स्वाद, अपन सुगंध। महाराष्ट्र और कोंकण के हापुस, अल्फांसो, गुजरात के केसर, ये ता आमरस के जान हैं। उत्तर प्रदेश के दशहरी और मोर काशी के लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम के खास बात होते, पके के बाद घलो ओखर रंग कईयों बार हरच रही थे। बिहार के जरदालू, जेकर सुगंध दूरे चले चिन्हा जाए। चौसा, मालदा हर नाव के संग लोगन मन के सुरता जुड़ियाए है। दक्षिण भारत जावो तब बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा। बंगाल के हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सुवर्ण रेखा। माने ठिया बदल थे, आमा के रंग रूप और ओखर स्वाद घलो बदल जाते। और संगवारी हो, आमा के ये यात्रा

अब गांव ले वैश्विक बाजार तक घलो पहुंचत हे। आज मन की बात के माध्यम ले मैं आमा के पैदावार ले जुड़े अपन किसान भाई बहनी मन के प्रशंसा करूं। आप मन देश के कृषि अर्थव्यवस्था खातिर आम किसान नहीं बहुत विशेष हो, ऐसने छाए रहो। संगवारी हो, गर्मी के ये दिन मा ऐसे ता स्कूल मन के छुट्टी होते, फिर मैं एक ऐसन वर्ग के बात करूं जेमे आप मनला प्रवेश लेके मन कर जाही। संगवारी हो, एक स्थिति के कल्पना करो, एक ऐसन स्कूल जिहां लइका मन आते, युवा मन आते और सियान मन घलो, जिहां कोनो फीस नहीं लगे, कोनो बड़का इमारत नहीं है, कोनो कक्षा घलो नहीं है और सबले रोचक बात उहां कक्षा नदिया में लगते। संगवारी हो, ये कोनो कहनी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा मा साजी वाला शेरिल जी ऐसने एक ठन तैराकी क्लब चलावत हैं। अब तक 15,000 ले ज्यादा लोगन मन यहाँ तौरना सीख चुके हैं। साजी जी ह दिव्यांग लइका मन ला घलो तौरना सिखोए हैं। ये प्रयास के पाछू एक पीड़ा घलो छुपे है। कुछ बछर पाछू एक नाव दुर्घटना मा कईयों छात्र मन के मौत हो गए रहिस। ये घटना हा साजी जी ला भीतरी तक झकझोर देस। वो मन सोचिन, अगर लइका मन ला तौरना आवत होतीस त शायद कईयों जान बच जातीस। बस इहे ले शुरू होइस उनखर ये अभियान। संगवारी हो, साजी वाला शेरिल जी के जिंदगी हमन ला एक ठन बहुते बड़का सीख देते। सेवा करे बर बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होए, जरूरी होते एक अच्छा इरादा और सरलक करेगे प्रयास। एखरे दम मा हजारों लोगन मन के जिंदगी मा बदलाव लाए जा सकत है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, पहाय दिन मा मुला यूरोप के नीदरलैंड जाए के मौका मिलिस। उहां मैं कईयों ठन बैठक में सम्मिलित होए। इही दौरान एक ऐसन क्षण आईस जेन हर भारतीय ल गर्व ले भर देस। नीदरलैंड मा आयोजित एक विशेष समारोह मा चोला काल के प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत ल वापस सौंपे गईस। ये कार्यक्रम मा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री घलो उपस्थित रहिन। ये ताम्र पट्टिका मन ल लेके मुला देश विदेश ले सरलग संदेशा मिलत हे। लोगन मन खुशी व्यक्त करत हे, गर्व व्यक्त करत हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में घलो एला लेके विशेष उत्साह है। संगवारी हो, ये ताम्र पट्टिका मन ला लेके लोगन में बने जिज्ञासा घलो है। यही पाए के आज मैं एखर ले जुड़े कुछ बात आप मन संग साझा करना चाहत हूँ। एमे 21 बड़ा और 3 छोटे ताम्र पट्टिका है। ये मुख्य रूप ले राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला के एक ठन वचन ला पूरा करे ले जुड़े है। एमे आने मंगलम गांव के एक बौद्ध बिहार ल दान दे के उल्लेख है। ये ताम्र पट्टिका मन मा चोला वंश के उपलब्धि के वर्णन घलो मिलते। एखर ले पता चलते कि चोला साम्राज्य के समुद्री शक्ति कतका जबर रहिस। दक्षिण पूर्व एशिया के देश मन संग इनखर संबंध के जानकारी घलो एमे मिलते। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति मा हम सबो मन ला बहुत गर्व है। संगवारी हो, हमर सरकार भारत के ऐसन अमूल्य धरोहर मन के संरक्षण खातिर सरलग प्रयास करत है। यही क्रम मा ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार मा घलो एक महत्वपूर्ण खोज होए है। यहाँ 3 ठन दुर्लभ ताम्र पट्टिका मिले है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासन काल ले जुड़े माने जाते। विशेषज्ञ मन मानते कि ये शिलालेख 6वां-7वां सदी के है, माने 1400-1500 बछर जुन्ना ये ताम्र पट्टिका मन प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाखा मा लिखाए है। एमे वो बखत के शासन व्यवस्था

ग्रंथ हर पीढ़ी मा कौतूहल जगाए हे, एला अन्वेषण बर प्रेरित करे हे अउ आज के युवा मन मा घलो एला लेके बने उत्साह दिखथे। आजकल आप मन घलो देखत होहू देश भर मा एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी ले लोकप्रिय होवत हे। बड़ा शहर ले छोटा कस्बा तक, स्कूल ले बगीचा तक इनखर गतिविधि देखे ला मिलथे। मुला बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलिस। इहां अवलोकन सत्र आयोजित करे जाथे। ये संस्था है ग्रामीण क्षेत्र मा एस्ट्रोनॉमी ला लोकप्रिय बनाए के मिशन घलो शुरू करे है। खगोल मंडल नाव के एक टीम है 30 घंटा के एक बहुते नवाचारी पाठ्यक्रम शुरू करे है। संगवारी हो, रात मा तारा मल्ल निहारना अपन आप मा अद्भुत अनुभव होते। एस्ट्रो केरला नाव के एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और कार्यशाला आयोजित करते। यहाँ युवा साथी मन टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स के उपयोग करना सीखते। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब है गीर के जंगल ले कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट आयोजित करे है। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था घलो एस्ट्रोनॉमी के सबले जुन्ना संस्थान मा एक है। यहाँ अवलोकन सुविधा के संगे संग किताब पुस्तकालय और टेलीस्कोप लाइब्रेरी के सुविधा घलो है। मैं आईसेक के घलो उल्लेख करना चाहूँ। ये एक विद्यार्थी मन द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है जिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब मनला आपस में जोड़ते। संगवारी हो, अपन शौक बर बखत निकालना और सरलग कुछ नवा सीखत रहना बहुते जरूरी है। मैं युवा मन ले आग्रह करूँ कि कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब ले खचित जुड़ें और ये छुट्टी मन मा कोनो तारा घरला घलो देखेला खचित जावें। संगवारी हो, मन की बात कार्यक्रम ला जेन लोगन मन टीवी में देखत हैं, मैं वो मन ले कहूँ एक वीडियो खचित देखाओ। ये वीडियो पाछू दिन बहुते चर्चा में रहिस। एमे कुछ लोगन मन बहुत धैर्य ले बहुत सावधानी ले एक गंगा डॉल्फिन ला बचाए की कोशिश करत हैं। आप मन ला ये जान के आश्चर्य हो ही, ये जम्मू प्रयास में करीबन 13 घंटा लगिस और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गईस। संगवारी हो, एमे बहुते बड़का भूमिका रहीस भारत के पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के। ये घटना उत्तर प्रदेश के है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गए रहीस। ऐसन बखत में नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बने ये एम्बुलेंस ओखर बर उम्मीद बन के पहुंचीस। फिर बहुते सावधानी ले ओला बाहर निकाले गईस, ओखर जांच करे गईस, ओखर इलाज करे गईस और ओखर बाद ओला सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दे गईस। एक रकम ले कहन त एक जिंदगी फिर अपन घर लहूट गईस। संगवारी हो, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एला एक चलत फिरत अस्पताल कस तैयार करेगे है। एमे डॉल्फिन ला सुरक्षित रखे के व्यवस्था है, ऑक्सीजन के सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। माने अगर कोनो डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी ले कट जाए त तुरते ओखर सहायता करे जा सकत है। संगवारी हो, जब हम गंगा डॉल्फिन ला बचाथन त हम खाली एक प्रजाति ला नहीं बचावन, हम गंगा के जैव विविधता ला बचाथन, नदी के पूरा जीवन तंत्र ला बचाथन और अपन अवैया पीढ़ी खातिर प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर घलो बचाथन। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, आप मन ले बहुत अकन लोगन के नदिया तरिया या कुआं के पानी ले जुड़े सुरता खचित हो ही। कोनो ला तरिया में तौरना याद हो ही, कोनो ला संगवारी मन संग तरिया के तीर में खेलना, कोनो ला वो माटी के सुगंध के सुरता होही। ननपन के ऐसन याद जिंदगी भर मन में बसे रही थे।

0: संगवारी हो। अइसने याद मन ल बचाए के एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला ले आघू म आए हे। बस्ती के आकाश गुप्ता अपन गांव के मनोरमा नदी ल देख के बहुत दुखी होवत रहिन। काहे कि जे नदी ल वो मन ननपन म साफ और जीवंत देखे रहिन, बखत के संग वो नदी म प्लास्टिक जमा होय लगिस, गंदगी बाढ़त चले जात रहिस। श्रीमान आकाश ह तय करिन कि शिकायत नहीं करही, एक नवा शुरुआत करही। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गईस। वो मन अपन संगवारी मन ल साथ लेन खाली जाल रहिस, रापा रहिस, झुहा रहिस औ सबले बड़का ताकत रहिस कुछ बदले के संकल्प। ये युवा मन नदिया मा उतरत रहिन, जल कुंभी निकालत रहिन, प्लास्टिक और कचरा बाहर लावत रहिन। कईयों बार एक दिन मा 50-60 किलो तक कचरा नदी ले निकाले गईस। धीरे धीरे मनोरमा नदी के वो हिस्सा फिर साफ दिखे लागिस। तीर तखार के लोगन मन के ध्यान घलो ये काम कोती गईस। लोगन मन मा स्वच्छता ला लेके जागरूकता बाढ़िस। संगवारी हो, ऐसने एक प्रेरक कहनी गोवा ले घलो आघू आए हे। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, फिर समाज भर काम करे के उनकर उछाह आज घलो वैसने हैं। उनला मड्डी तोलाब क्षेत्र मा पानी के समस्या बहुत परेशान करत रहिस। वो मन घलो समाधान खातिर काम शुरू करिन। बालकृष्ण जी ह पाइपलाइन बिछाए के काम मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन। एखर ले कईयों घर तक पानी पहुंचिस। जिन परिवार मन ल पानी खातिर रोज संघर्ष करना पड़त रहिस, उनखर बर ये बहुत बड़ा राहत बनिस। संगवारी हो, पाछू महीना मुला एक बहुते अच्छा अनुभव होइस। एखर संबंध मन की बात ले घलो जुड़े हे। इही पाए के आज मैं एखर चर्चा आप मन ले करना चाहत हूँ। तमिलनाडु के नागर कोइल मा मोर भेंट एक शिक्षक ले होइस। करीबन 3 दशक पहली घलो मैं वो मन ले मिले रहे हूँ। मैं बात करत हूँ गिरिजा अम्मा जी के। ये भेंट के दौरान कुछ युवा विद्यार्थी मन घलो उनखर संग रहिन। संगवारी हो, गिरिजा अम्मा जी करीबन 15 स्कूल चलाते। एमे चेन्नई के जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनखर देशभक्ति के भावना हर भारतवासी ल प्रेरित करने वाला है। वो मन मन की बात ले प्रेरणा लेके देश के अनेक सैनिक मन बर योगदान के संकल्प लिए हैं। एखर बर वो मन अपन सब्बो स्कूल के विद्यार्थी मन ल प्रेरित करिन। वो मन लैका मन ले कहिन कि वो मन वीर जवान मन बर हर दिन 1 रुपया योगदान करें। माने एक बछर मा हर विद्यार्थी कोती ले 365 रुपया जमा होइस। ये नान नान योगदान ले करीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा होइस। गिरिजा अम्मा जी हा ये पूरा राशि के चेक मुला सौपिन। वो मन ले गोटबात के दौरान मैं महसूस करें कि माँ भारती के प्रति उनखर समर्पण कत का गहिर है। पाछू बछर चेन्नई के पहली हिंदू विद्यालय है अपन 50 बछर पूरा करे है। देश के शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव ला आघू बढ़ाए मा ये स्कूल नेटवर्क के भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं एखर ले जुड़े सब्बो लोगन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ और वो विद्यार्थी मन के घलो विशेष सराहना करत हूँ जेन मन अपन वीर सैनिक मन खातिर योगदान दिए हैं। संगवारी हो, भारत के हर गांव मा हर शहर मा कुछ न कुछ ऐसन होवत है जेन हमन ल प्रेरणा देते। कईयों बार ये प्रयास मन के ज्यादा चर्चा नहीं होवे, फिर जब हम इन ल जानथन तो ये विश्वास औ मजबूत होते कि देश अपन लोगन मन के शक्ति ले आघू बढ़त है। मोर आप मन ले आग्रह है, अपन तीर तखार मा ऐसने प्रयास मन ल खचित देखाओ। जेन लोगन मन समाज खातिर अच्छा काम करत हैं वो मन ल चिन्हओ, उनखर सराहना करो, वो मन ले सीखओ और हो सके त खुद घलो कोनो अच्छा काम ले जुड़ाओ। अवैया महीना मन की बात में कुछ औ प्रेरक गाथा मन संग मैं फिर आप मन ले जुड़ू। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
7: अलिमदार ने 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। अब रुख कर लेते हैं एथलेटिक्स की ओर। भारत ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिनमें 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ चीन शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि जापान 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें संस्करण में रांची में आयोजित हुए फेडरेशन कप में 100 मीटर फ्री स्टाइल दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने भारत के दोनों एथलीटों से फोन पर बात भी की और उनके संघर्ष की कहानी सुनी।
8: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके दौड़ ले या खेल ले। जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
9: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
10: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी टीवी बंद कर दी, गई अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
9: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
10: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और आज हर इंडियन बोलता है इंडियन स्प्रिंट कर।
9: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है।
7: गुरिंदर वीर और अनिमेश ने शुभकामनाएं और प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अब रुख कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां निशानेबाजों ने कई पदकों पर निशाना साधा। म्यूनिख में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में मनु भाकर और सम्राट राणा ने रजत पदक जीता।
5: राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप के आखिरी दिन मनु भाकर और सम्राट राणा की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधा। भारतीय जोड़ी को चीन के विश्व नंबर एक और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन याओ क्यानसुन और हु काई ने 0.3 अंक से मात देकर स्वर्ण पदक जीता। भारत रजत पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते, जबकि चीन 4 स्वर्ण और 3 कांस्य के साथ पहले स्थान पर रहा। जर्मनी के म्यूनिख में मनु और सम्राट की शुरुआत धीमी रही। 5-5 शॉट की पहली सीरीज के बाद भारतीय जोड़ी ने कुल 100 का स्कोर किया और 4 टीमों के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। इसमें सम्राट ने 51 और मनु ने 49 का स्कोर किया। दूसरी सीरीज में मनु ने अपनी लय पकड़ते हुए 51.5 का शानदार स्कोर किया, जबकि सम्राट 49.9 के स्कोर की मदद से ये जोड़ी दूसरे स्थान पर पहुंच गई। तीसरी सीरीज के आखिर में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी के साथ अंकों का अंतर घटाकर सिर्फ 0.1 कर दिया। इसमें मनु ने 51.8 का बेहतरीन स्कोर किया, जबकि सम्राट ने भी 50.7 का एक और अच्छा स्कोर किया। अगली एलिमिनेशन सीरीज में सम्राट ने 31.2 का स्कोर किया, लेकिन मनु के 19वें और 20वें शॉट में चूकने से चीन की जोड़ी को वापसी करने का मौका मिल गया। मनु ने आखिरी सीरीज की शुरुआत 10.6 के स्कोर से की, लेकिन सम्राट सिर्फ 8.8 का स्कोर ही कर पाए, जिससे चीनी जोड़ी की बढ़त और बढ़ गई। याओ ने 23वें शॉट में खुद 8.7 का स्कोर किया, लेकिन हु काई ने 3 शॉट में 10 से ज्यादा का स्कोर करके इसकी भरपाई कर दी। इस बीच भारतीय जोड़ी बढ़त को सिर्फ 0.3 अंकों तक ही कम कर पाई, जिससे उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
7: अब बात कर लेते हैं शतरंज पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अपने हमवतन आर प्रज्ञानंदा को क्लासिकल मुकाबले में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए और खिताब की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा, जबकि महिला वर्ग में दिव्या देशमुख शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं मैग्नस कार्लसन को वेस्ली सो से हार का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला जेस्पर डी जोंग से जारी है, जबकि महिला सिंगल्स में मार्ता कोस्तियुक ने दिग्गज ईगा स्वायतेक को हरा दिया। वहीं प्रतियोगिता में उलटफेर का दौर जारी है। फ्रांस की डायने पेरी ने 6वीं वरीयता प्राप्त अमांदा अनिसिमोवा को 3 सेट तक चले मुकाबले में हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के 4थे राउंड में जगह बनाई। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बनाने के लिए इंपैक्ट प्लेयर नियम को खत्म करने के सुझाव दिए। दिग्गज बल्लेबाज सचिन ने पुरस्कार समारोह में कहा कि इससे खेल संतुलन सुदृढ़ होगा।
11: The impact player needs to go away. That is my personal opinion. I feel when T20 format, you just have to play 20 overs and then you are adding one more batter to that lineup, where bowlers are already being challenged. I find that imbalance. The second one, maybe a suggestion that the power play of 6 overs with field restrictions, only 2 fielders allowed outside the ring. Let the first 4 overs be batters power play with same field restrictions, and post that the remaining 2 power play overs should be determined by the fielding captain as and when he wants to take but those two consecutive overs will also get one fielder extra outside the ring at any stage of the game. So, you know, you are able to control the game better. And one bowler should be allowed to bowl five overs. Because you would invariably, the best bowler of the side is going to bowl.

0: that fifth over. Wouldn't you want to see that best bowler bowl more? Like the top batters are batting sometimes even 20 overs. Why shouldn't the best bowler be bowling 5 overs?
1: सचिन तेंदुलकर ने युवा वैभव सूर्यवंशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैभव ने लाइन एंड लेंथ पिक करके शानदार बल्लेबाजी की है।
0: It was magnificent. I mean, it's something truly special. And not just the ability to hit the ball, but what also fascinated me was the wrist work that he has. And that allows for any good batter to be able to play in all directions of the ground. You need good wrist work. And he's not slogging the ball. He's just picking the line and length earlier than the rest of the guys. And he's able to clear the rope comfortably.
1: कर लेते हैं स्क्वैश की ओर। भारत के अभय सिंह और वीर चोटरानी ब्रिटिश ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। वहीं रमित टंडन और अनाहत सिंह इस पीएसए डायमंड स्तर के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां फाइनल मुकाबला जारी है। गुजरात टाइटन्स ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। राहुल तेवतिया अभी क्रीज पर आए और वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
3: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
3: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
3: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
2: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
3: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
4: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर

0: पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
4: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
3: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
4: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

संदीप सिंह के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया शिवम ने। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं पपोन और श्रेय घोषाल की आवाजों में बॉबी जासूस फिल्म का गाना, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रही थी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अनुकुंज कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगुंज।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, छोड़ दे लगाना, छोड़ दे लगाना राधा, छोड़ दो।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी। सोच लो, सोच लो।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल,

0: बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थीं।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है कभी भारत की बदलती आवाज कभी भारत की बदलती सोच है कभी भारत का बदलता अंदाज प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है है प्रसार भारती भारत का बदलता आज
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: दर्शन कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
1: बोल कहीं बोल, यहां तो न बोल श्यामा।

संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण, जीवन के बाने में आने वाला मरण।

संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की।
1: रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु एर्रय्या एंड पार्टी accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri Asanapurapu Yerraya is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
2: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु एर्रय्या एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
1: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नु कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
2: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by Sri Asnapura Puyaraya in the Ravivasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Sri Eraya next presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Surajananda in Rag Keeravani, set to Misra Chaputal.

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when

0: votes last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः

हेलो टॉक स्टूडियो, अभी यहाँ घड़ी में 5:26 और 50, 51, 52, 53 सेकंड हुए हैं। हेलो टाइम ठीक है, अब आइए चलते हैं ट्रांसमिशन स्टूडियो।